हम आकाशवाणी उदयपुर रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 जून 2026 सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा की अब शुरुआत होती है।

0: ये FM रेडियो लेक सिटी है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। समाचारों के बाद जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई केंद्र से और कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले सुनेंगे वंदनवार चिंतन। 6:30 पर जरोखा, 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान, 6:45 का समय संगीत सरिता का रहेगा, 7 फूले बिस्तरे गीत और 7:30 हम है राही प्यार के। सुनते हैं समाचार
1: साथ में वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि

0: प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, चिंता के समान शरीर का नाश करने वाला और कुछ नहीं है, इसलिए जिसे भी ईश्वर में जरा भी विश्वास हो उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये संसार एक माया लोक है और इस लोक में आकर स्वयं प्रभु भी रचते हैं लीलाएं, स्वयं ही हरते हैं जीव के मन से माया मोह के बंधन और करते हैं बंधन मुक्त भी, किंतु उनकी माया का रस अनोखा है।

जरा सोचिए तो कौन होगा उस प्रभु से शक्तिशाली जिनके इशारे पर नाचती है ये दुनिया सारी, उस पर भोलापन ऐसा कि प्रसन्नता से दुनियावारी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुनेंगे। आज सुनेंगे 224वां भाग। 6:45 से संगीत सरिता के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा। दूसरी कड़ी आज सुनेंगे और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 6:45 से। 7 से भूले बिसरे गीत। 7:30 से हम हैं राही प्यार के। 8 से सुनिए समाचार प्रभात। 8:15 से कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष। लेखन मिलिंद सबनिश का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 8:30 से चित्रलोक और सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 से सुन सकते हैं पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश का पुनः प्रसारण। ग्यारह बजे से रंग तरंग। 12 से हिंदी में समाचार और 12:05 से सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। 1 का समय है सुरीला सफर कार्यक्रम का और 2 से पुनः प्रसारण होगा वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम का। आज सुनेंगे 33वीं कड़ी। 2

15 मिनट से दोपहर समाचार, 2:30 से आनंद लीजिए सदाबहार नकमे कार्यक्रम का। हेलो सहेली कार्यक्रम सुनेंगे 3 बजे से। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए कहानी ज्वालामुखी। कहानी का लेखन और वाचन किया है निवेदिता श्रीवास्तव निवी ने, संपादन काजल भदरगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। शाम 5 बजे से छाया गीत कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार। 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने और शाम 6:30 से झरोखा के अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। शाम 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे।

अंतर्गत सुनिए कल के मुख्य कार्यक्रम का विवरण। शाम 6:35 से संध्या रंजन और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक पंडित SL कंडारा और इस कड़ी की दूसरी कड़ी आप सुनेंगे। शाम 7:00 से जयमाला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। पुरातत्व के तत्व ये झलके सुन सकते हैं रात 8:00 से हवा महल में, लेखन नाजनीन का, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का।

रात 8:15 से चित्रलोक, 8:45 से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। 10 बजे से सुनिए छाया गीत। 10:30 से ढलती जाए रात। 11 बजे से कार्यक्रम रंग तरंग का पुनः प्रसारण।

आपको एक बार फिर से बता दें, वंदे मातरम एक जय घोष इस श्रृंखला की 33वीं कड़ी आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 से और दोपहर 2 बजे से। और ये कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं झरोखा के अंतर्गत, जिसमें आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण आपने सुना। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम श्री रामचरितमानस की 224वीं कड़ी सुनिए।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: सभी सुनने वालों का हृदय से स्वागत है और स्वागत है जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा साहब का।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: पंडित जी, पहली कड़ी में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दक्षिण भारत में वॉयलिन का आगमन हुआ, ये प्रचलित हुआ वाद्य, और धीरे धीरे ये उत्तर भारत की तरफ लोकप्रिय होने लगा। पहली बार उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के हाथ में ये वाद्य दिखाई दिया, आप बता रहे थे, इसके बारे में और अधिक जानना चाहेंगे कि और किन कलाकारों ने इस वाद्य को सीख करके इसे प्रचलित करने का, इसका प्रचार करने का प्रयास किया।
2: देखिए जयंत जी, वायलिन क्लासिकल म्यूजिक में और फिल्म म्यूजिक में
1: जी,
2: दोनों में बहुत प्रचलित हुआ। क्लासिकल म्यूजिक की बात करें अपन पहले, तो क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के बाद उनके शिष्यों में से पंडित वीजी जोग, गजानन राव जोशी जी जो महाराष्ट्र के
1: जी जी,
2: उन्होंने भी इस बाजे को बहुत अच्छे से देखा और संभाला और इस पे काम किया। एन राजम जी जो अभी वर्तमान में हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस बाजे पे अच्छा काम किया। दाता जी,
1: डीके दाता, हाँ,

0: ये सब लोग बजाते रहे, लेकिन जोग साहब का मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि जोग साहब ने इस बाजे को एक्सेप्टेबल बनाया, लार्जली
1: जी
0: वाइडली एक्सेप्टेबल ये बाजा बना उनके कंट्रीब्यूशन से। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था कि वो सोलो वायलिन तो बजाया ही उन्होंने बहुत, लेकिन गवैयों की संगत भी उन्होंने बहुत की। उनमें कई सारे बड़े गवैये जिनके साथ वो बैठ के उनकी संगत की और इसको एक्सेप्टेबल बनाया। गवैयों के अलावा उन्होंने कई सारी जुगलबंदी बजाई, जो जुगलबंदियाँ आज भी रिकॉर्ड्स में उपलब्ध हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, अपना पंडित रामनारायण जी के साथ, मेरे गुरुजी के साथ और भी कई लोगों के साथ। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन ये बहुत ज़्यादा रहा कि
1: बहुत बड़ा योगदान है।
0: योगदान रहा,
1: जी।
0: और उन्होंने इस बाजे का जितना अच्छा टोन प्रोड्यूस किया, एक खूबी जो उनकी, बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं इससे कि जितना अच्छा ध्वनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि,
1: जी
0: अंग्रेजी में कहते हैं टोन, टोनल क्वालिटी, उनके इंस्ट्रूमेंट में थी। वो किसी वायलिन वादक के इंस्ट्रूमेंट में इतनी अच्छी ध्वनि शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा अभी ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं है,
1: जी
0: तो लेकिन ये है कि ये सर्वमान्य सत्य है कि उन्होंने बहुत अच्छा टोन निकाला बाजे पे।
1: जी पंडित जी, यहाँ लगे हाथों एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये वाद्य पश्चिम से हमारे यहाँ आया है, तो पश्चिम में जिस तरह से ये इसका स्वरूप था, भारतीय शास्त्रीय संगीत में अपनाने के बाद में क्या इसमें कोई बदलाव किया गया? किसी ने कोशिश की कि इस भारत के संगीत के अनुरूप ये बजे? इसके लिए कुछ प्रयास हुए होंगे निश्चित रूप से।
0: जैन जी, ये थोड़ी सी दुखद स्टोरी है
1: जी
0: कि कुछ लोगों ने प्रयास किया और वो असफल रहे इस पे।
1: जी
0: अपने आप में ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है, परिपूर्ण वाद्य है ये, और जिस जिसने भी इसके साथ छेड़छाड़ की है
1: जी
0: वो बुरी तरह से असफल हुए हैं। कुछ लोगों ने इसमें तरब लगा दी और तरब लगा के बजाना शुरू किया तो वो ना तो वायलिन रहा ना सारंगी बन पाया। सारंगी का जो टोन है वो अलग टोन है, वायलिन का टोन अलग है, वो तो कोई
1: जी
0: तीसरी बात हो गई,
1: हाँ
0: विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। और वो फेल्यूर जो इन लोगों के हैं वो अपनी जगह पे ख़त्म हो गए। वह बाजा आज भी चार तार के सिवा नहीं बजता है।
1: जब वाद्य ही परिपूर्ण है तो उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं।
0: एग्जैक्टली।
1: जी।
0: और जोग साहब ने चार तार पांच तार के साथ ही बजाया इसको, एक तार उन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया था पर बजाया उन्होंने चार ही तार से ज्यादा।
1: आप पंडित जोग साहब के बारे में बता रहे थे।
0: जी, तो जोग साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इस बाजे को पॉपुलर किया। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो इतना एक्सेप्टेबल नहीं है ये जितना साउथ इंडिया में है।
1: जी
0: हर फंक्शन में, हर म्यूजिकल इवेंट में इस बाजे का उपयोग होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वायलिनिस्ट हुए हैं, राइट फ्रॉम चौड़ैया टू MS गोपाल कृष्णन और
1: लालगुड़ी जयरामन साहब
0: लालगुड़ी
1: हैं।
0: जयरामन।
1: जी
0: इन
1: जी
0: लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको पॉपुलराइज करने में। और भी लोग हैं,
1: समकालीन कलाकारों में एल सुब्रमण्यम बहुत
0: सुब्रमण्यम जी
1: अधिक
0: हैं। हाँ बिल्कुल
1: लोकप्रिय हैं।
0: हैं,
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: हैं। तो नॉर्थ इंडिया में जो सक्सेस मिली है वो इनकी जोग साहब के कंट्रीब्यूशन की वजह से।
2: पंडित वी जी जोग साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को उन्हीं का बजाया हुआ राग श्याम कल्याण सुनवाते हैं।
0: बिल्कुल, जरूर सुनवाई।

पंडित वीजी जोग का वायोलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण आप सुन रहे थे श्रोताओं। और आइए अब इसी राग पर आधारित एक गैर फिल्मी रचना आपको सुनवाते हैं, गायक स्वर ए हरिहरन का।

0: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब कुछ ही पलों के बाद। भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

रामी धोबन फिल्म के इस गीत के साथ ही याद किया फिल्म निर्माता और संगीतकार हीरेन बोस को उनके पुण्यतिथि पर, करते हैं उन्हें नमन। और रामी धोबन फिल्म का ये गीत आपने सुना हेमंत कुमार की आवाज़ में, राम मूर्ति ने इसे लिखा, हीरेन बोस का संगीत था। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। आह फिल्म के इस गीत में शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा।
2: आर पार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, भूले बिसरे गीत।

0: वज्रदंती।
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: हफ्ते का पांचवा दिन आज है शुक्रवार और आप सुनेंगे नमस्कार उदयपुर सुबह 8:30 बजे अपने मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी पर। आज होगा डिजिटल और फन फ्राइडे। दिन की शुरुआत करेंगे शहर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ, साथ ही जानकारी होगी T20 वर्ल्ड कप की और साथ समंदर पार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कौन सी टीम गोल दागकर इतिहास रच रही है और साथ साथ मस्ती होगी तो समझदारी भी ज़रूरी है, इसी के ऊपर जानेंगे। स्मार्ट लिविंग में हमारा आज का टॉपिक रहेगा स्मार्ट बजटिंग, कि जेब खाली किए बिना वीकेंड कैसे इंजॉय करना है, पैसे बचाने के धांसू सीक्रेट्स क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और आज फिल्मी फ्राइडे है तो इस हफ्ते सिनेमा घर या OTT पर कौन सी नई फिल्में वेब सीरीज धमाका कर रही हैं उसका लेखा जोखा भी होगा और साथ ही आपका शो है आपकी मर्जी भी होगी तो लिसनर्स कनेक्ट में शामिल होंगे आपके मैसेजेस। तो मुस्कुराइए और ट्यून इन रहिए रेडियो लेक सिटी पर।

0: बाराती फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में सुन रहे थे। तन्वीर नकवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: अफसाना फिल्म केस गीत में लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोल, हुस्नलाल भगतराम का संगीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: आंसू फिल्म के इस गीत में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे। कमर जलाल आबादी के बोल, पंडित हुसनलाल भगत राम का संगीत। इसके साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भूले बिसरी गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको, वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक।

0: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
3: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
6: यात्री तुम्हें नहीं, मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना।
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: आइए विविध भारती मुंबई से सुने हम है राही प्यार के।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे दाग फिल्म से गीत। साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

0: उम्र है
1: छोड़ो बहाना
0: ना ना ना।
2: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें जुगनू फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
4: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
3: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें छलिया फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी हाजिर होते हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: तीनों कॉलेज में
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन,
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
8: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
7: वो कहाँ है?
8: मिठाई।
9: RBI कहता है
10: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
12: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
12: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
13: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटर।

0: रुक जा बुड्ढू।
1: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
1: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
5: को आई
6: एम हियर। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
7: दिमाग चार्ज कर अपना।
8: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
7: देखा
6: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
8: अब क्या करोगे?
6: फ्री वाईफाई है ना।
7: बुद्धू सुधर जा।
8: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
6: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
8: RBI कहता है
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जंजीर फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, गुलशन बावरा के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।
1: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के।

राजा रानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं जीत फिल्म का ये गीत। सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में जीत फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। इसके साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: रेडियो लेक सिटी पर सुबह 9:30 बजे सुनना ना भूले प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। इसमें बात होगी डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल से। इनफर्टिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स संबंधित विषय पर आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर रेडियो लेक सिटी पर सुबह 9:30 बजे से। आइए सुने समाचार।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी।

0: अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री

0: मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर MQ खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत।

0: के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कदम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France

0: फासले होते नहीं बनाए जाते हैं, मीलों दूर रहकर भी रिश्ते निभाए जाते हैं। दिखावे से जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि कुछ रिश्ते भरोसे से निभाए जाते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो चलिए, आपकी खुशी को बरकरार रखने के लिए हम भी आ जाते हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर लेकर, जहां होता है ज्ञान और मनोरंजन का संगम। तो चलिए बताते हैं, आज आपके हम सफर होंगे। मैं आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ हैं
1: ज्योति।
0: कबूल कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो ज्योति, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल और फिल्मी फ्राइडे की। आज हमारे श्रोताओं को बताएंगे डे स्टार्ट में सारी सूचनाओं की। T20 विश्व कप देंगे अपडेट और बताएंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की अपडेट। स्मार्ट लिविंग में बताएंगे स्मार्ट बजटिंग और बजट के तरीके।
1: और आज फिल्मी फ्राइडे है, तो इस हफ्ते सिनेमाघर और OTT पर कौन सी नई फिल्में और वेब सीरीज धमाका कर रही हैं, उसका पूरा लेखा जोखा हम जानेंगे। और हम बात करेंगे सिनेमा का एक दमदार और संजीदा विषय पर, लैंड मोमेंट यानी कि भूमि आंदोलन पर बनी बेहतरीन फिल्मों की, जिन्होंने समाज को झकझोर कर रख दिया। और ये आपका शो है, तो आपकी मर्जी भी चलेगी ना। लिसनर्स कनेक्ट में शामिल कीजिए अपनी मज़ेदार मैसेजेस, हमें भेजिए आपकी बातें जो गूंजेंगी पूरे उदयपुर में प्रोग्राम लिसनर्स कनेक्ट के दरमियान। तो फिर देर किस बात की, मुस्कुराइए और ट्यून इन रहिए रेडियो लिक सिटी नमस्कार उदयपुर के साथ।

0: किसी को बुरे वक्त पर साथ देना ही जिंदगी का सबसे अच्छा काम होता है। तो ज्योति, आज एक अच्छा काम हम भी करते हैं,
1: बेशक
0: हमारे लिसनर्स को देते हैं लोकल अपडेट्स। मानसून पूर्व रख रखाव कार्य के चलते शुक्रवार को शहर के कई क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रानी जी की बावड़ी, कल्लड़वास ग्राम, पार्श्वनाथ वैली, दिवाली मगरी, केसरपुरा और अरिहंत विहार, और सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक ऋषभ नगर, गांधी नगर, एमपी कॉलोनी, खेड़ा सर्कल और सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वीआईपी कॉलोनी, लक्ष्मी नारायण नगर, सेठ जी के कुंडाल, बलीचा क्षेत्रों में बिजली बंद रहेगी। अल्पसंख्यक छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास उदयपुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला एवं कल्याण अधिकारी ने बताया कि कक्षा 9 से उच्च कक्षाओं, महाविद्यालयों, कोचिंग और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायों को छात्राओं के साथ SC, ST, OBC और MBC वर्ग की

0: यात्रा भी आवेदन कर सकती है। आवेदन 30 जून तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय नई कलेक्ट्रेट भवन में जमा किए जा सकेंगे। छात्रावास में शहर में बाहर की छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाएगा।
1: बिल्कुल परवीन। और एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर द्वारा आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी कि PMVBRY के राष्ट्रव्यापी लाभ वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम उदयपुर के उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रव्यापी लाइव कार्यक्रम के माध्यम से योजना के लाभार्थियों को लाभ वितरित करेंगे। ईपीएफओ का क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य श्रमिकों, नियोजकों और लाभार्थियों के बीच प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के उद्देश्यों और लाभों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये योजनाएं भारत सरकार के रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों और विभिन्न हितधारकों तक पहुंचाई जानी आवश्यक है। रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस कार्यक्रम में उदयपुर के सभी गणमान्य अतिथि, सांसद और शहर विधायक सहित सभी गणमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और साथ ही श्रोताओं को बता दें कि आज रेडियो लेक सिटी पर आप सुनेंगे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। उदयपुर विज्ञान आज उस मुकाम पर है जहां हर सूने आंगन में किलकारी गूंज सकती है, बस जरूरत है सही और हिम्मती कदम उठाने की। आज रेडियो लेक सिटी पर हेलो डॉक्टर में डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल होंगी हमारे साथ। उनसे बातचीत होगी पुरुष और स्त्री निसंतानता विषय पर। और संबंधित विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या फिर कोई जिज्ञासा रखते हैं तो हमें व्हाट्सएप करेंगे, आप कर सकेंगे प्रोग्राम के दौरान। और हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9462697568।
0: बिल्कुल ज्योति, शिवरंग उत्सव भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और कला के समन्वय को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से महाकाल मंदिर परिसर में 25 से 28 जून तक 4 दिवसीय बाल रचनात्मक कला उत्सव शिवरंग आयोजित किया जाएगा। सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री महाकालेश्वर की लहर कला महोत्सव समिति और आर्टिस्ट नॉट उदयपुर के साझे में होने वाले इस आयोजन में बच्चों को चित्रकला, हस्तकला और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और इसका उद्देश्य बच्चों में सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, कलात्मक अभिव्यक्ति और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति रुचि विकसित करना है। शिव के विविध स्वरूपों और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित यह उत्सव बाल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ उन्हें कला और संस्कृति से जोड़ने का माध्यम बनेगा।
1: और परवीन, मौसम की भी जानकारी अगर हम अपडेट दे रहे हैं तो ये भी लाजमी है कि हम मौसम की बात करें। तो गुरुवार को दिन भर हल्के बादल छाए रहे, इससे पहले बुधवार रात हुई बारिश के बाद तेज उमस और गर्मी से कल थोड़ी राहत रही। कुछ स्थानों पर खंड वर्षा हुई, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर का तापमान रहा अधिकतम 34.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20.7 डिग्री सेल्सियस। मौसम विभाग कहता है कि अगले दिनों में मौसम में परिवर्तन की स्थिति रह सकती है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण दक्षिणी राजस्थान के कई इलाकों में बादल सक्रिय हैं। इससे पहले राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बरसात हुई, तो बदलाव का दौर है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: गुनगुनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं विश्व के खेलों के महाकुंभ की। तो ये है फीफा वर्ल्ड कप 2026। कल के मैचेस की बात करते हैं परवीन, तो कल कई सारे मुकाबले हुए जिनमें इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच मुकाबला हुआ। पहला अगर उस मुकाबले की बात करें, ग्रुप एल में ये मुकाबला हुआ और इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने शानदार 2 गोल दागे और टीम का आक्रामक खेल इस जीत की वजह बना। और इसके साथ ही इंग्लैंड ने अपने इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, और इससे अगले मैच की बात करें ग्रुप एल में, तो घाना और पनामा के मैच हुआ। उन दोनों के मैच में घाना ने 1-0 से जीत दर्ज की है। और ये खास बात रही इस मैच की कि इसमें जो गोल हुआ ना, जो एक इकलौता गोल हुआ, वो भी 95 मिनट में किया गया था, तो सबसे देरी वाला गोल ये अभी तक गिना गया। और ग्रुप ए में मैच हुआ चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, जो 1-1 से ड्रॉ रहा। मैक्सिको सिटी में ग्रुप के में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को हरा दिया।
1: बिल्कुल, 20 जून 2026 को फीफा वर्ल्ड कप में कुल 5 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। चूंकि टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में हो रहा है, तो इसलिए भारतीय समय अनुसार कुछ मैच 20 जून की सुबह तड़के और कुछ मैच रात को शुरू होंगे। यूएसए बनाम ऑस्ट्रेलिया ग्रुप डी का मैच रहेगा, जो कि 12:30 बजे से शुरू होगा रात को। मोरक्को और स्कॉटलैंड के बीच ग्रुप सी से मैच खेला जाएगा, जो 3:30 बजे से शुरू होगा। ब्राज़ील वर्सेस हैती, जी हाँ, ये 6:00 बजे से शुरू होगा। तुर्की बनाम पराग्वे, ये वाला मैच जो है वो 8:30 बजे से शुरू होगा। ग्रुप डी से ये मैच खेला जाएगा।

0: नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन। जी हाँ, ग्रुप एफ का ये मैच है जो रात 10:30 से शुरू होगा।
1: और फुटबॉल से इतर अब हम बात करेंगे महिला T20 क्रिकेट की। तो महिला T20 वर्ल्ड कप की पिछली फाइनलिस्ट दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 से हरा दिया। पाकिस्तान के कप्तान की अर्धशतकीय पारी का उनका टोटल बना, लेकिन वर्ल्ड कप में पहली 50 बनाई एनरी डर्कसन ने और इस तरह से अफ्रीका को जीत दिला दी। तो ये मैच रहा कल महिला T20 क्रिकेट के दौरान हुआ। और इसी के साथ में
0: आज का जो मैच है और आज का मुकाबला हम कह सकते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस आयरलैंड के बीच खेला जाएगा रात 11 से।
1: और अब हॉकी की भी बात होनी जरूरी है, क्योंकि बड़ी खास खबर है ये कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने प्रो लीग में उलटफेर करते हुए वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से करारी शिकस्त दी है परवीन। तो वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जा रहे नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है और इस तरह लगातार तीसरी जीत के साथ भारत पूल ए में टॉप पर है और अब सेमीफाइनल में जगह बना चुका है।
0: बिल्कुल।

0: ₹10 लाख खर्च करने से पहले ₹1 लाख मैनेज करना सीखो, ₹1 लाख खर्च करने से पहले ₹10,000 मैनेज करना सीखो, ₹10,000 खर्च करने से पहले ₹1,000 मैनेज करना सीखो। ज़्यादा पैसा मतलब अमीरी नहीं, बल्कि जो पैसा है वो अच्छे काम पर खर्च करो, क्योंकि जो लोग कमाते हैं, खर्च करते हैं और बचाते भी हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसे लोग कमाने का, खर्च करने का और बचत करने का आनंद उठाते हैं। तो ज्योति हमारे लिसनर्स को बताते हैं स्मार्ट लिविंग में स्मार्ट बजटिंग और बचत कैसे करें।
1: बिल्कुल परवीन, देखिए आजकल हाल ये हुआ है कि हमारी जेब और मानसिक शांति दोनों का बजट किस ट्रेंड ने बिगाड़ दिया है, सोचिए तो, दिखावे की जिंदगी।
0: बिल्कुल।
1: अब मेरी फ्रेंड जा रही है यूरोप ट्रिप पर, तो अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, मुझे भी जाना है, या फिर उसके भाई ने तो नई कार ली है, मुझे भी तो लेनी है ना, मेरी कार कितनी पुरानी सी लग रही है, या फिर सोनी का आपने ये देखा है नया वाला कंगन कैसा लग रहा है, हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई, मुझे भी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: तो सवाल ये है कि क्या ये हमारी ज़रूरतें हैं, या फिर हम दूसरों को दिखाने की चाहत से कई सारे कर्ज ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का पूरा लिमिट इस्तेमाल कर देते हैं, EMI पर और EMI जोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि दिखाने के लिए ही सिर्फ ये सब कर रहे हैं, जबकि उनकी एक्चुअल ये सब की नीड नहीं होती, क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम भी ये फ़ोटो खिंचाएंगे, हम भी इस चीज़ को वायरल करेंगे, और फिर देखिए हमारे कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं, हमारे कितने लाइक्स मिलते हैं। खुशी का मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपनी ज़िम्मेदारी और अपने भविष्य की ज़रूरत को भूल जाएँ और महंगे गैजेट खरीदें, ब्रांडेड चीज़ें खरीदते रहें, चाहे आवश्यकता हो या ना हो, और हमारी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती हो या ना देती हो। हमें ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बनाना चाहिए, पर वो कर्ज और तनाव दे रही है तो ऐसी सुविधाओं को तो ना ही कहना चाहिए।
0: बिल्कुल ज्योति, बजट असल में आपकी आय और खर्चों पर आधारित एक खर्च योजना है। बजट बनाने से आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आप अपना पैसा कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं। इसके लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, और यह एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर सकते हैं। आपको क्या क्या करना है, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, अपने खर्चों पर नज़र रखनी है, अपनी आय की गणना करनी है, और अपने मासिक खर्चों की सूची बनानी है, और मेन बात जो है ज्योति इसमें बजट बनाने की विधि आपको चूज़ करनी है।
1: हाँ, अब इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला 50-30-20 का भी है, जो बहुत पॉपुलर है, कि जितनी आपकी कमाई है आप उसे एक बार पूरी कमाई किसी भी स्रोत से जो आपके पास कमाई आ रही है उस कमाई को लिखिए, उस कमाई का जो आवश्यक खर्च है, घर खर्च होता है, फीस होती है, किराया देना होता है, इन सब को एक लिस्ट बनाई, तो ये लिस्ट जो बनी उतना 50%, उसके अलावा 30% वो जो ज़िंदगी जीने के लिए, जैसे कि आप प्लान करते हैं मुझे ये शूज़ खरीदने हैं, या फिर मुझे अपने फ्रेंड के साथ कैफ़े में जाना है, वीकेंड पर पार्टी करनी है, लाइक दैट, कि आप ऐसी कोई चीज़ करना चाहें उसके लिए 30% जमा करके रखिए, प्लस जो लास्ट 20% है जिसे हम सबसे लास्ट में काउंट करते हैं खर्च हो जाने के बाद, उससे सबसे ऊपर रखिए। 20% हमेशा सेविंग में जाना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सा रूल ये भी कहता है कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 6 गुना आपके पास सेविंग रखी रहनी चाहिए, उसके बाद आप अगर खर्च करते हैं तो वो आपको तनाव नहीं देगा, वो आपका खर्च फिर भी वाजिब गिना जाएगा और ज़िंदगी जीने में आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन तनाव सर पर लेकर, क्योंकि जैसे परवीन हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं एक के साथ एक फ्री, हमें लेना भी तो है ये सब, लेकिन उन सब से अपने आप को बचाइए।
0: बिल्कुल, तो आपको करना है स्मार्ट बजटिंग और बचत।

0: नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और सवेरे के 9 बजने को है श्रोताओं। तो अब कुछ ही पलों में आपको लिए चलेंगे जयपुर अजमेर केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के संचालन के लिए प्रदेश भर में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश में सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान 25 से कम कर्मचारियों वाले लघु उद्यम हैं। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहली सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 जगहों पर होंगे।
2: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे

0: कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल पारदर्शी पानी की बोतल और प्रवेश पत्र रखने के लिए पारदर्शी प्लास्टिक पाउच ही ले जा सकते हैं। कलावा, पगड़ी या हिजाब जैसे धार्मिक प्रतीक और पूरी बाजू के कपड़े पहनने वाले अभ्यर्थियों को सघन जांच के लिए समय से पहले पहुंचना होगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भारी आभूषण और धातु की वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दूसरी ओर परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पेपर लीक जैसी किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए राज्य पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने प्रदेश भर में विशेष टीमें तैनात की हैं। ये टीमें कोटा, सीकर और जयपुर जैसे प्रमुख कोचिंग शहरों में शिक्षण संस्थानों, हॉस्टलों, PG और सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। पांचना बांध से सिंचाई जल के गतिरोध को सुलझाने के लिए प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर आज भरतपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक में सभी पक्षों से चर्चा कर विवाद का हल निकालने और आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त नलिनी कठौतिया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर सहित सवाई माधोपुर के किसान प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में किसानों ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार नहरों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से रखी। गौरतलब है कि करौली के किसान प्रतिनिधि महापंचायत में व्यस्त होने के कारण कल की बैठक में भाग नहीं ले पाए थे, इसलिए आज फिर से बैठक रखी गई है। प्रदेश के लूनी बांध का नाम अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखा जाएगा। जल संसाधन राज्य मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ब्यावर के आशापुरा माता धाम में आयोजित एक समारोह में ये घोषणा की। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन्मोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जीवन साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। इतिहास में वीरों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कुछ दिनों से जारी आंधी बारिश की गतिविधियों से तापमान में गिरावट आई है और हीट वेव से पूरी तरह राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। 41.5 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात के पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के वायुमंडल में बने नए सिस्टम से हवाओं की नमी में तेजी से बदलाव आया है। इससे आज राज्य के सभी संभागों में बारिश के आसार हैं। 15 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। विभाग के अनुसार राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं तेज हवा भी चल सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगह हल्की बरसात की संभावना है। इस बीच कल दोपहर बाद चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में मौसम अचानक बदला और तेज अंधड़ के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओले भी गिरे। 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए सुबह 6 बजे से राज्य के सभी जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और डॉ प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा सभी कैबिनेट और राज्य मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में आमजन के साथ योगाभ्यास करेंगे। आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी प्रभारी मंत्री और अधिकारी कल ही अपने निर्धारित जिला मुख्यालयों पर पहुंच जाएंगे। इस बीच योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। जगह जगह योग शिविरों के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर योगा चैंपियंस के साथ योग किया। इधर हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि आज शहर के विश्व प्रिय शांति पार्क में सामूहिक योगाभ्यास किया गया।
2: शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित जनों को प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम का

0: कपालभाति भ्रामरी वस्त्र का शीर्षासन, सर्वागसन, ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन एवं श्वासासन जैसी महत्वपूर्ण योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। प्रशिक्षकों ने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों का प्रकाश डालते हुए कहा कि नियमित योग अभ्यास से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और तनाव दूर होता है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए एनटीए ने गाइडलाइन जारी की। राज्य में परीक्षा के पारदर्शी संचालन के लिए कोचिंग शहरों में एसओजी की विशेष टीमें तैनात की जाएंगी। प्रदेश के सभी संभागों में आज आंधी और बारिश के आसार, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। और राज्य में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर व्यापक तैयारियां। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज योगासन चैंपियंस के साथ योग किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडिया व्यू 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। 9:10 हो रहे हैं और आप सभी का स्वागत कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। तो चलिए बात करते हैं, जिंदगी में मस्ती तो होनी ही चाहिए और वो हर दिन तो नहीं कर सकते, तो चलो आज ही कर लेते हैं थोड़ी मस्ती, क्योंकि आज है फिल्मी फ्राइडे। और फिल्मी फ्राइडे में हम लेकर आते हैं इस सप्ताह रिलीज होने वाली फिल्में और ओटीटी श्रृंखला। आज ही के दिन 19 जून को बॉक्स ऑफिस पर नई फिल्मों का धमाका होने वाला है। ज्योति, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम फिल्मों की बाढ़ आने वाली है। ये फिल्में आज ही के दिन दस्तक देगी। इसमें शाहिद कपूर, सामंथा, रुथ प्रभु, सूर्या, चंदू, सलीम कुमार समेत कई छोटी बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली है। ऑडियंस को खास इंतज़ार रहता है आज ही के दिन का, क्योंकि आज होने वाली है 20 भाषाओं से भी ज़्यादा फिल्में रिलीज़। बात करते हैं बॉलीवुड की। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 आ रही है। फिल्म को होमी अज्जानिया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म का ट्रेलर और गाने काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। कॉकटेल के पहले पार्ट को पसंद करने वाली ऑडियंस फिल्म का इंतज़ार कर रही है, तो आज उनके इंतज़ार को ख़त्म कर देंगे बॉलीवुड वाले, क्योंकि आज आएगी ये वाली मूवी बॉलन द बॉय से उम्मीदें। कॉकटेल 2 के बाद जिस बड़ी फिल्म की चर्चा हो रही है वो है मलयालम सिनेमा की पैन इंडिया फिल्म बॉलन द बॉय। मलयालम सिनेमा शानदार फिल्मों के लिए जाना जाता है और ऐसे में ऑडियंस की नज़र इस फिल्म की कहानी को जानने का इंतज़ार कर रही है, तो ये फिल्म भी आज ही आने वाली है। ज्योति,
3: तो फिर आप थिएटर में जाकर फिल्म देखना पसंद करते हैं या फिर घर के सोफे पर बैठकर आराम से सीरीज देखना चाहेंगे, तो ओटीटी पर भी इस हफ्ते सस्पेंस थ्रिलर से लेकर धमाकेदार ड्रामा सीरीज की नई खेप रिलीज हो रही है। रिमोट की बैटरी चेक कर लीजिए, क्योंकि आज ओटीटी पर आपके बिंज वॉच का पूरा इंतजाम हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं परवीन उस फिल्म की जिसका नाम सुनते ही दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं। ये है सस्पेंस फिल्म दृश्यम 3। जॉर्ज कुट्टी और उसकी फैमिली की कहानी वहीं से फिर से शुरू हो रही है जहां लगता था कि सब शांत हो गया है, पर बस पुलिस फिर से तैयार है और देखने वाली बात होगी कि जॉर्ज कुट्टी के पास इस बार कौन सा नया मास्टरमाइंड प्लान तैयार है। तो ये जानने के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आप दिल टूटने और फिर इंतजाम वो जो इंतकाम लिया जाता है ऐसी कहानियों के शौकीन हैं तो जियो हॉटस्टार पर आ रहा है टुकड़ा के मेरा प्यार का सीजन 2। पिछले सीजन का आपको क्लिप हैंगर याद है ना, तो इस बार राजनीति, सस्पेंस और बदले की आग और भयानक होने वाली है। और अगर बात है थोड़ी हंसी मजाक की, कुछ अलग देखना है, तो जियो हॉटस्टार पर तमिल फिल्म केनाता कानोम लग रही है। सूखे गांव की कहानी है जहां लोग कुआं खोद रहे हैं परवीन, पर कुएं में से निकल आती है डायनासोर की हड्डियां। और अगर आप हॉरर के दीवाने हैं तो मलयालम फिल्म गू भी आ रही है जो भूतहा और जादुई कहानी है। और ग्लोबल लवर के लिए नेटफ्लिक्स पर आ रही है एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल रोमकॉम, ये है वॉइस मेल्स फॉर इसाबेल। एक ऐसी लड़की की कहानी है परवीन इसमें जिसमें भेजे हुए वॉइस मैसेजेस गलती से किसी अजनबी के पास चले जाते हैं और वहाँ से शुरू होती है नई दास्तान। तो ये पूरा जुगाड़ हो गया इस वीकेंड का। अब हमें बताइए कि आप इनमें से कौन सी सीरीज देखेंगे, मूवी देखने जाएंगे। व्हाट्सएप कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9।

0: परवीन, जब भी प्यार मोहब्बत और गीत संगीत होता है ना तो हमारा दिल बहल जाता है, पर जब सिनेमा हमारी माटी, हमारे खेतों, हमारी जमीन को बचाने की जंग की बात करता है तो ऐसी फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं रह जाती, वो आंदोलन बन जाती है। अब हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिन्होंने जमीन की लड़ाई को बड़े पर्दे पर अमर कर दिया। भू आंदोलन से जुड़ी कुछ खास फिल्में, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई कुछ खास फिल्में बताइए।
1: बिल्कुल ज्योति, इन फिल्मों में शोषित वर्ग की जमीन हथियाने की कोशिशों और उनके खिलाफ हुए अत्याचारों के खिलाफ कानूनी और सामाजिक संघर्ष को सीधे तौर पर दिखाया गया, और उन फिल्मों में शामिल है दो बिगा जमीन। ये क्लासिक फिल्म है जो एक गरीब किसान यानी कि बलराज सहानी की कहानी को दर्शाती है, जिसकी पुश्तैनी जमीन को एक अमीर जमींदार कर्ज के बदले हड़पना चाहता है। अगली फिल्म की हम बात करें तो वो है मदर इंडिया। भारतीय सिनेमा की इस मील का पत्थर कहे जाने फिल्म में एक मजबूत महिला, जी हाँ, जिस अदाकारा को हम सभी आज भी याद करते हैं, नरगिस, इनके गांव के सूदखोरों और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ अपनी जमीन और इज्जत बचाते हुए दिखाया गया है। बात करें फिल्म काला की, रजनीकांत अभिनीत यह फिल्म मुंबई की झुग्गियों, मलिन बस्तियों की जमीन को हड़पने वाले राजनेताओं और माफियाओं के खिलाफ स्थानीय लोगों की जमीनी और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर केंद्रित है।
0: और इसी तरह पान सिंह तोमर फिल्म आई थी 2012 में। ये फिल्म इरफान खान के अभिनय से सजी भारतीय सेवा के एक सैनिक और एथलीट की सच्ची कहानी है, जो अपने गांव लौटने और अपने परिवार की जमीन पर कब्जा करने वाले स्थानीय भू माफिया की क्रूरता का सामना करने के बाद एक खूंखार विद्रोही बन जाता है। तो उदयपुर, जमीन और मिट्टी से जुड़ी इन फिल्मों में से आपकी

पसंदीदा फिल्म कौन सी है, क्या आपने ये फिल्में देखी हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर बताएं, क्योंकि अब कुछ ही पलों में होगा वक्त लिसनर्स कनेक्ट का, जहां हम पढ़ेंगे आपके मैसेजेस। सुनते रहिए अपना मनपसंद चैनल रेडियो लेक सिटी, आकाशवाणी उदयपुर।

0: तो गुनगुनाते हुए अब हम देखते हैं अपने व्हाट्सएप इनबॉक्स को, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए पहला मैसेज हम पढ़ते हैं, ये है सुशील यादव, रेनू यादव, हिरणमगरी सेक्टर 4 से। ये लिखते हैं कि जहाँ तक हम सोचते हैं बचत यानी सेविंग, तो अपने खर्चों के मद में से कुछ हद तक कटौती करके भी कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार गुणवत्तापूर्ण और विवेकपूर्ण परचेसिंग, ये भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, सबको बचत करना चाहिए, ये मस्ट है कि हम बचत कर रहे हैं और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी, जैसे कि कभी सुरक्षा जो हमें महसूस होती है वो इस बचत से होती है। चलिए कुछ और मैसेज हैं, तो ये हमारे पास संदेश है, सीता श्रीमाली हैं, लिखती हैं कि प्रणाम प्रवीण और ज्योति, आपका ये कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम कार्यक्रम सुन रहे होते हैं लेकिन मैसेज नहीं कर सकते। सीता श्रीमाली बेतला उदयपुर से। आप बिल्कुल सही

0: कर रही हैं पर आप हमारा प्रोग्राम सुनती हैं, इसके लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये कहते हैं कि थोड़ा सा वक्त और निकालिए और मैसेज भेजिए, हमें अच्छा लगता है और आपके भी मैसेज आपके नाम के साथ पढ़े जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगला मैसेज एक और पढ़ लूँ मैं परवीन?
1: बिल्कुल।
0: तो ये मैसेज है हमारे पास ओम प्रकाश हरीश तिवारी जी का। ये अपने इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं तो इन सजेशंस के लिए हम आपको बहुत सारा धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि इन्हें हम फॉलो करेंगे अगली बार से।
1: बिल्कुल ज्योति, और आगे मैं पढ़ूंगी मैसेज क्योंकि अब कमल सुहालका जी लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार गणी गणी खम्मा। उन्हें जो भी प्रोग्राम्स आज गुड फ्राइडे हमारा जो फ्राइडे फिल्मी फ्राइडे प्रोग्राम्स उन्होंने सुना उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और वो कह रहे हैं कि हम डेफिनेटली ये मूवीज़ देखने जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले हम साइकिल पर जाकर पुरानी अपनी भाषा में पिक्चर देखने जाया करते थे, ये भी काफ़ी अच्छी और रोचक बात उन्होंने लिखी है। उसके बाद विक्रम जी का मैसेज हमारी डिस्प्ले पर आया है, वो कहते हैं उन्होंने एक मूवी बताई है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस मूवी को भी शामिल करें। उसके बाद एक मैसेज आया है प्रेम पुरी, ये लिखते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं, इन्हें हमारे प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं और आज नमस्कार उदयपुर में जो भी सारे सेगमेंट्स हैं उन्हें काफ़ी पसंद आए हैं और फिल्मों के लिए वो भी यही कहते हैं कि हम भी डेफिनेटली फिल्में देखने जाएंगे।
0: तो बड़ी खुशी होती है ना इतने सारे मैसेजेस देख करके। और इसके अलावा हम श्रोताओं से ये भी कहेंगे कि आप अपने सुझाव भी हमें देते रहिए और कार्यक्रम में जिस तरह से आपकी भागीदारी होती है, भागीदारी बढ़ती है तो ये हमें प्रेरणा देती है कि हम और बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
1: प्रेमपुरी जो कहते हैं हमारा जो फेवरेट चैनल है वो FM रेडियो लेक सिटी है जिसे हम हर रोज़ सुनते हैं, हम उसके नियमित श्रोता हैं, इन्होंने हमें ये मैसेज किया। तो ज्योति अब देखो घड़ी भी हमें इशारा कर रही है कि नमस्कार उदयपुर का जो हमारा कार्यक्रम है इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने आज दी, हमारे श्रोता के मैसेजेस भी हमने लिए और हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की हमारे लिसनर से हम कनेक्ट हो सके, फिल्मी फ्राइडे के लिए हमने बात करी। तो अब आगे का क्या प्लान है?
0: बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगी कि रेडियो लेक सिटी पर 9:30 बजे सुनना ना भूलें। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, डॉक्टर मोनिका खंडेलवाल होंगी हमारे साथ और हमारी बातचीत का विषय रहेगा आज निसंतानता पुरुष और स्त्री में। तो इससे संबंधित विषय पर अगर आप सवाल करना चाहें तो हमें भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर सवाल। इसके व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 9462697568। प्रोग्राम संवेदनशील है पर रूढ़ियों से हटकर अगर आप हिम्मत करेंगे और सवाल रखेंगे तो जानकारी भी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी और निसंदेह फायदा तो होगा ही। रेडियो लेक सिटी पर हेलो डॉक्टर प्रोग्राम सुनना ना भूलें 9:30 बजे से।
1: बिल्कुल, हर मुश्किल तुम्हारे अंदर की ताकत का इम्तिहान लेने आती है, उसे डरने का मौका मत दो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आज का हमारा नमस्कार उदयपुर प्रोग्राम यहीं तक, फिर मिलने के वादे के साथ आज मैं थी आपकी दोस्त परवीन और मेरे साथ
0: ज्योति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.
1: Good morning, Lake City. 101.9 FM पर आपने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी. फ्राइडे मॉर्निंग है और कहेंगे सेहत की बातें होंगी. गुलजार में कलियों का चटकना भी दुआ है, आंगन में किसी नन्हे का हंसना भी दुआ है. माटी को कभी कोसना लाजमी तो नहीं है, मौसम का बदल जाना भी एक अदा है. माटी उपजाऊ होती है, बीज में भी जान होती है, पर कभी वक्त का हाल और कभी सेहत की उलझन दरमियाँ आ जाती है. जब बात संतान सुख की हो, इनफर्टिलिटी की हो, तो सारा बोझ समाज हमारा औरतों के आंचल पर डाल देता है. पर सच तो यह है कि सफ़र दो राहगीरों का है, जिसमें जिम्मेदारी जितनी महिला की है उतनी ही पुरुष की भी. तो अब जागरूकता के लिए हमारा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हेलो डॉक्टर, जिसमें आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ और आपसे बातचीत करने के लिए विनोद शर्मा.
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भट्टजी की बाड़ी उदयपुर.
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल बेड़वास उदयपुर.
2: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH
3: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं. एट भट्टजी की बाड़ी उदयपुर. कॉल 02943535000.
5: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार. श्रोताओं, आज डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ हैं और आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं. आज खास तौर से पुरुष और स्त्रियों में जो निसंतानता की जो स्थिति है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे. डॉक्टर मोनिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत.
6: बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी.
5: श्रोताओं, मैं आपको बता दूँ, ये लाइव प्रोग्राम है और इस लाइव प्रोग्राम से अगर आप कोई सवाल डॉक्टर मोनिका से पूछना चाहते हैं, न केवल निसंतानता पे बल्कि जो भी गायनिक इश्यूज हैं, इन पर आप किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं. जैसे PCOD आजकल कॉमन समस्या है, या कई तरह के इरेगुलर पीरियड्स हैं फीमेल्स में, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि कई बार अनआंसर्ड रह जाते हैं. तो ये लगभग एक घंटा है हमारे पास, जब डॉक्टर मोनिका आपके सवालों का जवाब दे सकती हैं. और सवाल पूछने का तरीका सीधा साधा है, व्हाट्सएप पे आप हमें सवाल भेजें. हमारा नंबर है 9462697568 9462697568.

0: 2-6-9-7-5-6-8। और इस कार्यक्रम को सुनने का जो एक परंपरागत तरीका है वो तो है ही, एफएम रेडियो सेट्स पर हम सुनते हैं। इसके अलावा अब आप इसको हमारे जो मोबाइल हैंडसेट्स हैं उन पर भी, एक हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, उस पर इस प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। न्यूज ऑन AIR ऐप है, ये पूरा एक वर्ड है, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR। उसमें FM लेक सिटी को आप सेलेक्ट करेंगे तो इस समय डॉक्टर मोनिका को आप अपने मोबाइल्स पर दुनिया के किसी भी कोने में सुन पाएंगे। नंबर में एक बार फिर से बता दूं, खास तौर से माताओं बहनों से उम्मीद है मुझे कि आज सवाल करेंगे आप, नहीं हिचकेंगे नहीं, 9462697568। डॉक्टर मोनिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू।
0: डॉक्टर मोनिका, इनफर्टिलिटी, दो तीन तरह के समाचार अब इस समय स्वास्थ्य जगत में फ्लोट हो रहे हैं। एक तो एक सर्वे आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें अब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्टेबिलिटी रेट से भी नीचे

0: 8। डॉक्टर मोनिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत।
1: थैंक यू
0: डॉक्टर मोनिका। इनफर्टिलिटी, दो तीन तरह के समाचार अब इस समय स्वास्थ्य जगत में फ्लोट हो रहे हैं। एक तो एक सर्वे आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें अब भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो स्टेबिलिटी रेट से भी नीचे जा रही है। TFR जिसको बोलते हैं, वो 2.1 पे स्टेबल होता है पर वीमेन। 2.1 ग्रोथ अगर हो रही है बच्चों की तो वो स्टेबल है, लेकिन अब एवरेज जो है 1.9 पे आ गया है। और हम क्योंकि बढ़े ही जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अब ये नेगेटिव ट्रेंड शुरू हुआ है तो एक अच्छी भी बात लग रही है, लेकिन साथ में इसके अपने डेमोग्राफिक चैलेंजेज हैं। और सेकंड, कुछ एक स्टेट्स तो ऐसे हैं जिनमें 1.5 तक चला गया, तेलंगाना जिसमें, उड़ीसा, कुछ एक स्टेट्स हैं जिनमें काफ़ी नीचे चला गया और वहाँ बहुत जल्दी जनसंख्या नेगेटिव साइड में जाएगी। एक तो ये चीज, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया है बायोलॉजिकल एंगल से जो होना ही था, फिर हम इनफर्टिलिटी पे भी आएंगे?
1: हाँ, स्टैटिस्टिक्स जो आपने बात की विनोद जी, नहीं, ये सामान्य प्रक्रिया तो नहीं है। अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो अभी फर्टिलिटी जो है वो हर तरफ डिक्लाइन हो रही है, जो आपने बोला TFR। अच्छा। तो फर्टिलिटी रेट जो है हर तरफ डिक्लाइन हो रही है, तो अभी
0: पूरी दुनिया में
1: तो ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की तरह हम इसको मान सकते हैं, या हम उस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड जो समस्या है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, उस तरह से इनफर्टिलिटी हो गया है। सो इट्स नो मोर अव जस्ट अ फिजिकल प्रॉब्लम, बट नाउ इट्स अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। एंड साइमल्टेनियसली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ वुमेन से जुड़ी हुई, या हम बात करें तो वाइफ से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये कपल की बात है। क्योंकि बीइंग फर्टिलिटी एक्सपर्ट मैं ये देख रही हूँ, मतलब देखते देखते मैंने ये चेंजेस देखे हैं अपने 20-25 साल के करियर में, कि अभी हमारे पास में मेल फर्टिलिटी के पेशेंट्स जो हैं, कपल्स जो हैं, वो संख्या ज्यादा हो गई है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। तो ये एक तरह से एक चौंकाने वाली चीज है शायद आम जनता के लिए, सुनने वालों के लिए, बट दिस इज द फैक्ट।
0: कितना, जैसे आउटडोर में अगर आपका ही मैं रेशो लूं, जो पेशेंट्स आप टोटल देखती हैं, क्या 50-50 के आसपास पहुंच गया?
1: अभी 60-70% में हम किसी न किसी फॉर्म में मेल पैरामीटर्स जो हैं, सीमन पैरामीटर्स जो हैं, उनको हम नेगेटिव तरह से अफेक्ट होते हुए देख रहे हैं, विच इज एक्चुअली अ शॉकिंग फैक्ट।
0: एक तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, हालांकि इनडायरेक्टली इससे जुड़ी हुई भी है इस बात से, कि विश्व भर में ये फिनोमिना है कि जनसंख्या वर्ल्ड वाइड ही अब डाउनफॉल डिक्लाइनिंग है।
1: हाँ, 1 in every 6 कपल,
0: और इनफर्टिलिटी एक कॉमन फिनोमिना है वर्ल्ड वाइड।
1: और हर 6 में से एक जोड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम में इनफर्टिलिटी या निसंतानता से ग्रसित हो रहा है। सच अ बिग नंबर।
0: और क्या भारत में कुछ देर से आया क्या ये, या दुनिया में के साथ साथ ही भारत में घुस गया है?
1: दुनिया के साथ साथ ही भारत में घुस गया है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। अभी हम देखें तो डिजीजेज जो हैं वो करीब करीब, अगर हम जेनेटिक्स को एक तरफ रख लें और लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, तो वो करीब करीब मोर और लेस सब जगह एक जैसी हो चुकी।
0: थोड़ी देर के लिए हम कपल्स पे ही डिस्कस करते हैं, बाद में मेल फीमेल पे भी आएंगे।
1: बिल्कुल।
0: ये जो इनफर्टिलिटी को प्रभावित करने वाले कारण हैं, क्योंकि हम सेकंड वर्ल्ड वार के बाद देख रहे हैं कि दुनिया में सब तरफ लाइफस्टाइल चेंजेज आए हैं, और भारत में तो स्वतंत्रता के बाद में या 1990 के बाद में एक सी चेंज हम देख रहे हैं, क्या ये कारण हैं जो आपको जेनेटिकली प्रभावित कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी तक बात पहुंच गई है, या एक सामान्य प्रक्रिया है ये?
1: नहीं, अगर हम थोड़ा और आगे आ जाएं, मतलब हम वहाँ से ना चलें कि जहाँ से हम स्वतंत्र हुए वहाँ से नहीं, ये पिछले 25-30 सालों में जो चेंजेस आए हैं, जिसमें आपके
0: ग्लोबलाइजेशन,
1: हाँ, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वर्क लाइफ बैलेंस है, स्ट्रेस या तनाव है, सब्सटेंस अब्यूज, एल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स का यूजेज है, मोबाइल यूजेज है एज सच।
0: अच्छा,
1: ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं। सिडेंटरी लाइफ स्टाइल का बहुत, जितना ज्यादा मशीन्स और गैजेट्स ने हमारे लाइफ को इजी बनाया है, तो वहीं कहीं उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जो बॉडी को तरह तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बेलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों को

0: अफेक्ट करता है और वो आपको इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम भी दे सकता है।
1: नहीं, एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिया बीच में, मोबाइल्स गैजेट्स
0: बिल्कुल
1: का इतना ज़्यादा इंटरफेयर हो गया है, तो ये तो एक अलग चीज़ है। भले ही कितना ही ठीक है हम कहें, लेकिन है तो एक शरीर का तो हिस्सा नहीं है ना। बायोलॉजिकली इसको कैसे मानेगी, कैसे डिटरमाइन कर रहा है आपकी हेल्थ को।
0: देखिए, अगर हम इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, आज आप बात करें तो जोमेटो स्विगी पे सब कुछ अवेलेबल है। मोबाइल मतलब ऐसे जो मोबाइल आपको नेगेटिव जो रेज दे रहा है वो तो एक बात है ही, कि जैसे मेल्स के लिए कहा जाता है कि वो अपने पॉकेट में जब मोबाइल को रखते हैं स्पेशली ट्राउजर्स में, तो उसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपके टेस्टिस पर,
1: टेस्टिस पर
0: आपके सेल्स पर। हाँ जी, वो फर्टिलिटी को, ये तो जो है
1: ये
0: वो
1: एक
0: डायरेक्ट
1: एलोपैथिक,
0: इम्पैक्ट
1: ये
0: है।
1: रिसर्च है, ये एक
0: यस,
1: एलोपैथिक डॉक्टर कह रहा
0: दिस
1: है।
0: इज एविडेंस बेस्ड, तो ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है।
1: मतलब आप जो आपकी था जो पैंट की जो जेब है उसके अंदर अगर आप मोबाइल रखते हैं
0: हाँ जी,
1: तो ये आपकी फर्टिलिटी को प्रभावित कर सकता है।
0: बिल्कुल कर सकता है। उससे आपने देखा
1: कोई
0: होगा
1: स्टडी है
0: जब,
1: क्या इसकी?
0: यस, बहुत सारी स्टडीज हैं, आप देखेंगे कि मोबाइल जो है वो पीछे से गर्म होता है ना, कंटिन्यूस यूज करने की वजह से एक हीट जनरेट वहां से होती रहती
1: कुछ
0: है।
1: रेडिएट भी होता ही होगा।
0: बिल्कुल, और हीट का डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट है स्पर्म के ऊपर, ये तो हमेशा से ही पता है, मतलब इसमें कोई कोई नया फैक्ट नहीं है।
1: चलो, वहां का टेम्परेचर जो है वो उसमें,
0: टेम्परेचर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज का तो डायरेक्ट इफेक्ट है। ये तो सालों से जो है वो प्रूवन चीज़ है कि भट्टियों के पास में काम करने वाले या इंडस्ट्रीज में जहाँ पर ज़्यादा हीट जनरेट होती है वहाँ पर काम करने वाले जो मेल्स हैं, नेचुरली उनके सीमन पैरामीटर्स जो हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगे।
1: क्योंकि उस एरिया का टेम्परेचर बढ़
0: टेम्परेचर,
1: जाएगा।
0: हाँ जी, ये बिल्कुल, ये तो प्रूवन है बहुत सालों से।
1: क्योंकि उनकी जो लोकेशन है टेस्टिस की, वो भी शायद टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही वहां पर सिचुएटेड है, और उसका फर्टिलिटी से काफी गहरा
0: डायरेक्टली
1: कनेक्शन है।
0: इम्पैक्ट है उसका, फर्टिलिटी से डायरेक्ट कनेक्शन है।
1: तो एक तरह से जो आप अपने आसपास कर रहे हैं, खान पान से भी कुछ संबंध है?
0: बहुत कनेक्शन है खान पान से, खान पान से है, जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं उससे है, उसमें जो टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है, हर तरफ से जो है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट है। अभी नेगेटिव अगर हम बात करें पूरे वातावरण की, खाने पीने की, लाइफस्टाइल की, जंक फूड की, हर चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट है।
1: हम जो सामान्य एक जो इम्प्रेशन लेके चलते हैं वो, और शायद सही भी है, कि एक फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे लास्ट में शायद भगवान हमसे छीनता है, चाहे भले ही कितना ही बीमार हो जाए आदमी। या अब इसके साथ ये ज़्यादा रिस्क जोन में आ गई है। ज़्यादातर मैंने देखा कि क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट भी फर्टिलिटी वाला जो पोर्शन है वो कई बार सेव करने में सफल होते हैं।
0: देखिए, ये दो अलग अलग चीज़ें, अगर हम मेडिकल फैक्ट्स पे बात करें तो इसका जस्ट ऑपोजिट ये है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जब आपके सीमन पैरामीटर्स चेक होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस से, आपके लुक से ये नहीं पता लगाया जा सकता, या किसी इलनेस के साथ में हमेशा फर्टिलिटी क्रोनिक इलनेस में बाद में अफेक्ट होगी, ऐसा भी नहीं है। आप नॉर्मल लुकिंग हेल्दी पर्सन हो सकते हैं लेकिन आपके सीमन पैरामीटर्स कॉम्प्रोमाइज हो
1: अच्छा,
0: सकते
1: कुछ जो लाइफस्टाइल डिजीज जो आजकल की कॉमन हो गई हैं, क्योंकि आप लाइफस्टाइल की बात कर रही हैं, डायबिटीज और इनफर्टिलिटी, क्या कोई कनेक्शन?
0: बिल्कुल कनेक्शन है।
1: किस तरह का, मेल फीमेल दोनों में बता दें थोड़ा थोड़ा।
0: मेल्स में ज़्यादा कनेक्शन है,
1: अच्छा,
0: इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेकर हर जगह डायबिटीज़ का रोल, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ आपके ब्लड में शुगर लेवल का ज़्यादा होना नहीं है, इट्स अ मल्टी सिस्टम डिसफंक्शन, तो उसमें आपकी बॉडी में जगह जगह, तो हमारी जो बॉडी की नर्व्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं, और नर्व्स के साथ में जो है वो मेल सेक्शुअल फंक्शन जो है वो एसोसिएटेड हैं, तो उस तरह से जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है डायबिटीज़ में कॉमन है। इसके अलावा भी एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब आपकी बॉडी की सेल्स पे होता है तो वो आपके
1: हमने
0: सेल्स
1: सुना
0: को,
1: जैसे इम्पोर्टेंसी पे भी कुछ, खैर वही बात है जो आप करें,
0: बिल्कुल
1: इम्पोर्टेंसी एक किस्म की आ सकती
0: आ सकती है डायबिटीज़ के साथ में, बट दैट इज
1: फीमेल्स
0: बेसिकली विद लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। ऐसा
1: अनकंट्रोल्ड।
0: नहीं है कि अभी आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ ही है और बिल्कुल अर्ली स्टेज में है, आपकी शुगर थोड़ी बहुत जो है वो आगे पीछे हो रही है, वो आप कई तरह से उसको मैनेज कर पाते हैं, उसका एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट फर्टिलिटी पे नहीं आता है। बट हाँ, जो काफ़ी लंबे समय से जो डायबिटीज़ चल रही है और जो बहुत अनकंट्रोल्ड वे में जा रही है, उसका असर इसके ऊपर हो सकता है।
1: और ब्लड प्रेशर, अब ये दूसरी एक कॉमन समस्या है, राइजिंग मतलब इंडिया में काफ़ी कॉमन है, क्या इनफर्टिलिटी से कनेक्शन हो सकता है इसका?
0: किसका
1: ब्लड प्रेशर, बीपी।
0: ब्लड प्रेशर का?
1: हाँ,

0: नहीं, ऐसा अगर हम डायरेक्ट बोलें तो नहीं, पर हाँ ब्लड प्रेशर भी जनरली अगर ओबेसिटी के साथ है, डायबिटीज़ के साथ है, कोई और एसोसिएटेड फैक्टर्स
1: होता
0: हैं
1: है
0: तो हो
1: अक्सर,
0: सकता है। अगर ओनली बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी अगर रेज्ड
1: तो
0: है तो उसके साथ,
1: इनफर्टिलिटी का
0: तो
1: ज्यादा
0: डायरेक्ट उसका कोई कनेक्शन नहीं है।
1: कार्डियक इश्यूज के साथ।
0: सेम थिंग विद कार्डियक इश्यूज। अगर दूसरे जिसको हम बोलते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से अगर आप पास
1: मैं
0: हो रहे
1: एक्चुअली
0: हैं।
1: मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये चीज़ें, आजकल कॉमनली ये 40+ के लोगों में पाई जा रही है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है सारी की सारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: थायराइड अगेन एक फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है,
0: दोनों में
1: मैं और
0: मेल,
1: हाइपर हाइपर दोनों तरह के उनमें कुछ है।
0: बिल्कुल दोनों में है, मेल्स में फीमेल्स में दोनों में थायराइड डिसऑर्डर्स के साथ में फर्टिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो सकती है।
1: थायराइड से
0: हाँ, स्पेशली हम बात कर रहे हैं अनकंट्रोल्ड डिजीजेस की, जहाँ पर मेडिकेशंस नहीं लिए जा रहे हैं, सालों साल इग्नोरेंस है वहाँ पर।
1: बहुत लंबे समय तक अगर है और मैनेज्ड है, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, TSH और T3 T4 मेरे जो पैरामीटर्स हैं वो ओके हैं, तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए?
0: नहीं, जनरली अगर मेडिकेशंस के साथ में अगर आपने उसको यूथायरॉयड रेंज में रखा हुआ है, मतलब आपने कंट्रोल रखा हुआ है TSH को, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आते हैं।
1: अच्छा, दूसरा एक सवाल आया बीच में, हालांकि ये है नहीं इनफर्टिलिटी का, लेकिन फिर भी जवाब दे देते हैं इनका।
0: हाँ जी।
1: ये करें कि हमारी बहू का 7वां महीना चल रहा है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? राजेश जी हैं, सोहागपुरा से हैं।
0: देखिए, अगर ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल मतलब सब कुछ अगर सारे पैरामीटर्स ठीक चल रहे हैं, रेगुलर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में चेकअप में हैं, तो अलग से बहुत कुछ ध्यान रखने का नहीं। और वैसे ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो इस पे अगर हम अलग से चर्चा करें, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स जो है वो बिल्कुल एक एक डिफरेंट सेगमेंट हो गया।
1: ठीक है। एक सवाल और है, ये कह रहे हैं कि 18 साल के आसपास की उम्र की बच्चियों को कैंसर की जो वैक्सीन लगाई जाती है, शायद उसकी बात कर रहे हैं बच्चेदानी के
0: HPV वैक्सीन की
1: HPV,
0: बात कर रहे हैं। हाँ
1: वो
0: जी।
1: कितनी असरदार है और कितनी बार लगती है? कुछ लोग कहते हैं कि इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं इसलिए नहीं लगानी चाहिए, आप जानकारी दें। कौशल्या टेलर, ऊंटवाल,
0: हाँ जी,
1: उदयपुर।
0: ये भी हमारे सेगमेंट से आज रिलेटेड नहीं है, बट ये अब कम्प्लीटली सेफ वैक्सीन है और 9 से 45 साल की उम्र तक ये जो है वो रिकमेंडेड है। प्रैक्टिकली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, जनरली इसके 3 डोजेज दिए जाते हैं, और अभी जो है वो फ्री वैक्सीनेशन भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हो
1: वापिस
0: रहा है।
1: इनफर्टिलिटी पे आते
0: हाँ
1: हैं,
0: जी।
1: एक कपल इनफर्टाइल है, ये आपके क्या पैरामीटर्स होते हैं कि साहब ये इनको तो दिक्कत है और इनको इलाज पे लेना पड़ेगा?
0: जहाँ तक हम पैरामीटर्स की और इवेल्युएशन की बात करें, तो फिर हम मेल और फीमेल को सेपरेट करते हैं।
1: जी,
0: जब मेल्स की बात आती है, तो जो सबसे सिंपल,
1: पहला तो आपका स्टेटमेंट ये है कि ये कपल प्रॉब्लम है।
0: ये कपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल है ना, तो सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी को ये फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये कपल प्रॉब्लम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ गायनेकोलॉजी आउटडोर में जाके और फीमेल को जो है वो चेकअप कराते रहें, ब्लड टेस्ट कराते रहें, मेडिसिंस देते रहें और इसमें सालों साल निकल
1: अच्छा,
0: जाएं।
1: ये गायनिक डोमेन है वैसे पूरा, या
0: ये
1: आपको?
0: पहले तो सिर्फ गायनेक डोमेन ही हुआ करता था, वही जो मैंने बात बोली कि सोसाइटी को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यहाँ पर मेल फैक्टर का उतना ही रोल है जितना कि फीमेल फैक्टर का। तो हम वापस इवेल्युएशन पे आ जाते हैं। तो मेल्स के लिए जो इवेल्युएशन करने का तरीका है वो सिमन एनालिसिस से होता है, जो कि एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, और कुछ इसमें पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं WHO की तरफ से जो रिकमेंडेड हैं, जिसमें सीमन में स्पर्म्स की का काउंट कितना है, उनकी संख्या कितनी है, फिर उसके बाद उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब उनकी शेप बनावट क्या है, मोटिलिटी कितनी है यानी कि उनकी चलने की जो क्षमता होती है मूवमेंट वो कैसा है, और फिर कोई दूसरे सेल्स उसके अंदर नहीं है, इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं देखा जा रहा है, फिर कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं। अगर हमको इनिशियल पैरामीटर्स में कहीं कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो फिर हम एडवांस इन्वेस्टिगेशंस, अभी आगे DFI, जिसमें कि हम DNA फ्रेगमेंटेशन जैसे टेस्ट भी करते हैं, कि अगर आपको लग रहा है कि इनिशियल सीमन पैरामीटर्स ठीक नहीं है, तो उसका DNA के लेवल पर यानी जेनेटिक मटेरियल जो है उसका वो कहीं एबनॉर्मल है क्या, तो वो वाले टेस्टिंग किए जाते हैं। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, तो फीमेल्स में इवेल्युएशन के लिए आप सबसे पहले सोनोग्राफी, जो सबसे सिंपल तरीका होता है देखने का यूट्रस और ओवरीज को, उसमें हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि ओवरीज में अंडों की संख्या कितनी है, यानी कि ओवेरियन रिजर्व कितना है।
1: अच्छा,
0: वो ओवेरियन रिजर्व देखने के लिए हम सोनोग्राफी का सपोर्ट लेते हैं या फिर हम

0: में AMH नाम से, एंटी मुलेरियन हार्मोन नाम से एक टेस्ट होता है, वो हम करते हैं। और फिर फेलोपियन ट्यूब्स को जांचने के तरीके हैं, कुछ और ब्लड टेस्ट
1: उनकी बनावट देखते हैं।
0: उनकी बनावट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो ओपन है कि नहीं। फेलोपियन ट्यूब्स नसें जिसको आम जनता बोलती है, कि वो ओपन है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसी के अंदर बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब्स में। वहां फर्टिलाइजेशन होके दोनों सेल्स जो है वो वहां मिलके मिलती हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर वो जो एम्ब्रियो है वो चलकर वापस यूट्रस में आता है। तो फेलोपियन ट्यूब्स का इंटैक्ट और पेटेंट होना, खुला होना बहुत जरूरी है।
1: कई जो एक सामान्य आप तक बात पहुंचती ही होगी, जो डिस्कोर्स है पब्लिक में, ये मानते हैं लोग कि अगर सेक्सुअल प्लेजर है, दोनों को मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कपल को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। ये कितना सही है? क्या फर्टिलिटी के लिए प्लेजर, जो सेक्सुअल प्लेजर है, ये महत्वपूर्ण है? और महत्वपूर्ण है तो क्या फर्टिलिटी के एंगल से ये सोल पैरामीटर हो सकता है क्या?
0: नहीं, देखिए बिल्कुल अलग अलग चीजें,
1: मेल और फीमेल दोनों की बात,
0: बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक जो प्लेजर है उसका कनेक्शन आपके ब्रेन के उस पार्ट से है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल करता है, तो ये वहां से कनेक्शन है। फर्टिलिटी इज ऑल टूगेदर अ डिफरेंट थिंग। प्लेजर नहीं भी है तो भी फर्टिलिटी हो सकती है, प्लेजर है तो भी फर्टिलिटी नहीं हो सकती है, दोनों ही चीजें ट्रू है।
1: अच्छा, एक सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि अंजलि हैं, ये फतेहपुरा निवासी हैं, कह रही कि मेरी उम्र 29 वर्ष है, वर्किंग हूँ,
0: हाँ जी,
1: अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या रही है, क्या अगले 4-5 साल में मेरे एग क्षीण होने की संभावना है, कम होने की संभावना है, और अगर ऐसा है तो क्या IVF सक्सेसफुल है? अब ये काफी आगे तक की सोच रही हैं और आशंकित हैं, थोड़ा पीसीओडी की जो समस्या हो रही है।
0: तो अंजलि देखिए, अभी आप सिर्फ 29 इयर्स के हैं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी के सिनेरियो में कॉमन है 30 के बाद में शादी होना। प्रैक्टिकली सभी फीमेल्स जो हैं वो एजुकेशन की तरफ, करियर की तरफ इंक्लाइंड हैं, जो बहुत अच्छी बात है। PCO के केसेस में जनरली इरेगुलर पीरियड्स और आपके बॉडी रिलेटेड वेट गेन और दूसरे हार्मोनल इम्पैक्ट जैसे एक्ने, पिंपल्स, ये सब देखे जाते हैं। अभी हर केस जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग है। आपके केस में जैसे आपने बताया कि पहले ऐसी हिस्ट्री रही है, मतलब है कि अभी आपका शायद हार्मोन प्रोफाइल बेटर है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसी 3-4 साल में एकदम से कोई बहुत बड़ी समस्या आ जानी चाहिए। लेकिन अगर प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग कस्टमाइज ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका PCO का हिस्ट्री है तो आपको IVF की जरूरत पड़ जाए।
1: PCOD पे अलग से एक प्रोग्राम हो सकता है पूरा, लेकिन
0: बिल्कुल हो सकता है जरूर।
1: PCOD इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो है,
0: बिल्कुल है, बिकॉज PCOD
1: रिस्क बढ़ जाता है क्या?
0: हाँ, PCOD जो है वो दैट इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोनल डिसऑर्डर इन फीमेल्स, बहुत यंग एज से जो है वो। अभी पहले इसका नाम PCOD था, फिर उसको थोड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम में PCOS किया गया, और अभी रिसेंटली इसका नेम जो है वो चेंज होके PMOS हो गया है। सो इट इज नो मोर अ कंडीशन विच इज जस्ट कन्फाइंड टू योर ओवरीज, बट एक्चुअली इट इज अ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम।
1: PMOS
0: पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम,
1: एंडोक्राइन एक अलग वर्ड जोड़ दिया।
0: हाँ, तो अब उसमें पैनक्रियाज, एड्रिनल, आपकी बॉडी के जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो ग्रंथियां, वो ग्लैंड्स भी जो हैं अब इसमें, मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में हो गया है। तो अब ये सिर्फ एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं कंसिडर होता।
1: इसको ग्रो होते देखा है मेरे ख्याल से, पहले इतना ज्यादा नहीं था।
0: इतना ज्यादा पहले नहीं था, दोनों चीजें थी, पहले इतना ज्यादा नहीं भी था, पहले इतना डायग्नोसिस भी नहीं था। और एक तीसरी चीज और जो अभी हम देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में, ओवर डायग्नोसिस भी है, क्योंकि सेल्फ डायग्नोसिस बहुत है, लोग गूगल और ChatGPT पढ़कर अपना डायग्नोसिस खुद कर लेते हैं,
1: जैसे इरेगुलर पीरियड्स में और PCOD है
0: एक्चुअली। तो बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो खुद अपना डायग्नोसिस कर लेती है आजकल अपने, तो वो कई बार ओवर डायग्नोसिस भी है।
1: खैर, लेकिन क्या फ्यूचर में इनको इन्फर्टिलिटी के इश्यूज आने के चांस होते हैं?
0: बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल।
1: क्या इस तरह के जो PCOD के पेशेंट्स, हमने सुना है कि ये लोग डायबिटिक होने के चांस भी रहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है ये?
0: हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने विनोद जी। PMOS के साथ में ओबेसिटी, लॉन्ग टर्म PMOS है तो डायबिटीज, इनफर्टिलिटी,

0: उसके साथ में अगर प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ और बहुत लॉन्ग टर्म पीसीओ इसके साथ में कैंसर के चांसेस भी होते हैं,
1: बहुत लंबी अनमैनेज्ड रह जाए तो।
0: हाँ जी, बहुत लंबी, क्योंकि कंटीन्यूअस इसमें जो वो है एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म, खास करके पीसीओएस जहां पर इनफर्टिलिटी है तो वहां पर एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस जो
1: लेकिन
0: है वो
1: एक
0: लॉन्ग
1: अच्छी
0: टर्म
1: बात
0: में
1: इसके साथ ये है कि काफी हद तक बिना दवाओं के ये ठीक हो जाती, मैनेज हो जाती है।
0: इसको हम बोलें दवाओं का तो ठीक है, लेकिन लाइफ स्टाइल को करेक्ट
1: हाँ,
0: करना,
1: वही।
0: वेट मैनेजमेंट करना, डाइट मैनेज करना, वो सब बेसिकली इसके जो है वो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं। फिर कुछ दवाएं हैं जो बहुत सिंपल सिंपल दवाएं हैं जिसमें कोई हार्मोन्स नहीं है, उनसे भी मैनेज हो जाती है। और फिर जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ अलग अलग मेडिकेशंस हैं इसके लिए। जहाँ लॉन्ग टर्म इनफर्टिलिटी है पीसीओ के साथ में और नॉर्मल रूटीन मेडिसिन से ओव्यूलेशन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पीसीओ में देखिए मेन प्रॉब्लम जो होता है वो ओव्यूलेशन का होता है। ओव्यूलेशन किसी भी एक लेडी में, फीमेल में, जो नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है फिक्स टाइम पे मिड ऑफ द मंथ में, तो वो यहाँ पर या तो डिलेड होता है या ओव्यूलेशन होता ही नहीं है
1: तो ये एक कंडीशन है, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफी हद तक इससे मैनेज कर सकते हैं चीजों
0: काफ़ी
1: को।
0: हद तक, मतलब हाँ दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट्स, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से पीसीओ करेक्ट हो जाए, थोड़ा मेडिसिन
1: आप
0: का
1: तो ये बताओ,
0: सपोर्ट।
1: टेंशन वाली बात है क्या?
0: टेंशन वाली बात तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस
1: अगर
0: बहुत
1: डॉक्टर के पास जाएं तो मैं तो टेंशन कम करने के लिए बार बार कह रहा हूं कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई
0: तो डॉक्टर
1: करें।
0: हमेशा ऐसा चुने जो मेडिसिन से पहले आपका टेंशन और स्ट्रेस कम कर
1: चलिए, गाना भी सुन लें।
0: सके। ज़रूर।

0: मस्तिष्क से जुड़े हर इलाज के लिए पहली सोच GBH,
1: क्योंकि GBH अमेरिकन है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज तापड़िया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भरजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।
2: हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर मोनिका शर्मा मौजूद हैं। आप स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और इस नाते आज हम खास तौर से जो मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी है, निसंतानता की जो स्थिति है, इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिका, हमने जहाँ पे चीज़ छोड़ी थी कि मेल्स में जैसे आपने कहा कि सीमेन एनालिसिस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज है, एक नील सीमेन जो बिल्कुल भी नहीं है, नील शुक्राणु वाली स्थिति भी बनती है, और भी कुछ इस तरह की जांचें हैं जैसे हार्मोन अल्ट्रासाउंड, ये कौन कौन सी जांचें हैं, इनके बारे में भी थोड़ा बता दें।
3: ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिया है विनोद जी, नील स्पर्म, एजोस्पर्मिया हम इसको मेडिकल कंडीशन को बोलते हैं
2: जी।
3: बहुत इम्पॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा, एक तरह का जो इसको हम बोलें कि स्ट्रेस और मेंटल इमोशनल ट्रॉमा जो है वो ये डायग्नोसिस सुनने के बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि एजोस्पर्मिया कई तरह का होता है, मतलब बेसिकली ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो दो तरह का होता है, और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। या अगर हम फर्टिलिटी की बात करें तो फर्टिलिटी अचीव की जा सकती है एजोस्पर्मिया के साथ में, क्योंकि मेनली एजोस्पर्मिया जो होता है उसमें ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर स्पर्म बनते नहीं हैं, उसमें बेसिकली जो सिंपल शब्दों में समझें तो नलियों में रुकावट है। तो स्पर्म जो अंदर बनता है बॉडी के अंदर वो बाहर नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से नील स्पर्म है। तो इसके लिए हम अंदर नीडेड कुछ पहले टेस्ट होते हैं जिससे हम ये इवैल्यूएट कर लेते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है हम IVF के साथ में टीजा नाम के प्रोसीजर से करते हैं, जिसमें हम अंदर टेस्टिस में बहुत पतली छोटी सी निडल डाल के लोकल एनेस्थीजिया में ये प्रोसीजर किया जाता है, और हम वो निडल के जरिए एक तरह का बायोप्सी समझ लें, सिंपल समझें तो उसमें हम स्पर्म्स को बाहर निकाल लेते हैं, और वो स्पर्म से हम IVF ट्रीटमेंट करके और कपल को जो है उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड दे सकते हैं। बहुत कॉमन प्रोसीजर है, हम रेगुलरली इसको कर रहे हैं अपने सेंटर।
2: एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा लेकिन
3: एक तरह से स्पर्म का एक्सट्रैक्शन हम अंदर से कर रहे हैं।
2: ये तो क्या पिनाइल वैसे ही होता है रास्ते से या कहां से करते हैं?
3: नहीं,
2: ये अलग से
3: नहीं, ये स्क्रोटम से होता है।
2: अच्छा,
3: स्क्रोटम से होता है, किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है।
2: लेप्रो प्रोसीजर है? लेप्रोस्कोपी?
3: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में जैसे एक बायोप्सी ली जाती है, बिल्कुल उतना सिंपल प्रोसीजर है ये।
2: तो आप
3: 5 मिनट में ये किया जाता है और आप अंदर से स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब जब IVF के लिए हम पेशेंट को लेते हैं तो हमारे हाथ में एग्स ऑलरेडी रेडी हैं, तो ये स्पर्म हम एक्सट्रैक्ट करके तुरंत उन एग्स को जो है इन स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो कई पेशेंट्स, कई कपल्स इसके जरिए जो है वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं हजारों, और हमारे सेंटर पर भी हम काफ़ी, इवन ट्विन्स भी हम बॉर्न कर चुके हैं। तो इसमें बायोलॉजिकली आपका चाइल्ड होता है, आपको कोई डोनर सीमन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एजोस्पर्मिया का डायग्नोसिस इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, वो परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स जिसमें बॉडी में स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, चाहे बर्थ से या और किसी रीज़न, कोई ट्रॉमा हुआ है और किसी तरह का कोई इलनेस या डिजीज।
2: ऐसे कितने लोग होते हैं टोटल आपके पास जो पेशेंट, काफ़ी होते हैं?
3: हाँ, इस हाँ फर्टिलिटी सेंटर है तो नेचुरली हम ये पेशेंट्स कपल्स ज़्यादा देखते हैं। एक आम गायनिक क्लिनिक में नहीं पहुंचेंगे ये पेशेंट, जनरली या तो फर्टिलिटी सेंटर पे अप्रोच करते हैं या फिर यूरोसर्जन्स को अप्रोच करते हैं।
2: जेनेटिक कनेक्शन होता है?
3: हाँ बिल्कुल, हो सकता है। कोई कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर
2: इनफर्टिलिटी इटसेल्फ तो जेनेटिक नहीं हो सकती,
3: कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस में हो सकती है, जहाँ पर एजोस्पर्मिया अगर किसी जेनेटिक रीजन से है, जहाँ क्रोमोसोमल के लेवल पे डिफेक्ट है।
2: अगर जेनेटिक एजोस्पर्मिया जैसा आप बता रही है तो पेरेंटल साइड से या दोनों तरफ से कहीं से भी हो सकता है क्या?
3: आप बात करना चाह रहे हैं कि किसी में, अगर किसी में

0: जब आप पैदा हुए हैं, इट मींस कि आपके पेरेंट्स कैपेबल थे, फर्टाइल थे।
1: वो हाँ, देखिए दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है जेनेटिक, आप जो बात कर रहे हैं उसको हम हेरिडिटरी सेगमेंट में रखते हैं, तो दोनों अलग अलग मेडिकल चीज़ें हैं। तो आपके पेरेंट्स के साथ में इसका कनेक्शन नहीं है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है।
0: अच्छा, एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। हालांकि करें कि मैं पीरियड 8 डे तक रहते हैं, 8 दिनों तक रहते हैं, शॉर्ट में इनको भी बता दें, आठ आठ
1: हाँ
0: दिनों तक लंबा है अवधि, 4 दिन काफ़ी होते हैं।
1: हाँ 4 से 5 दिन पीरियड्स नॉर्मल हैं। अगर 8 दिन तक पीरियड्स हैं और वो फ्लो ज़्यादा है, या अगर स्पॉटिंग के फॉर्म में भी हैं, तो एक बार आप ज़रूर कंसल्ट करके अपना इवेल्युएशन करवाएं। सोनोग्राफी और बड़े सिंपल सिंपल टूल्स हैं देखने के लिए, फीमेल गायनिक प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करने के लिए। तो क्या उसका रीज़न क्या है, ये एक सिम्टम है, पीरियड का लंबा होना एज अ सिम्टम, उसके पीछे डिजीज़ क्या है वो पहले जानना ज़रूरी है। वो डायग्नोसिस आपका होते ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, कोई बहुत
0: और
1: घबराने वाली
0: कई
1: बात
0: बार
1: नहीं।
0: एज, या हो सकता है मेनोपॉजल स्टेज में हो आप,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल,
0: कुछ
1: हार्मोनल
0: कई,
1: इम्बेलेंस जो है वो
0: या
1: जब
0: कोई
1: पीरियड स्टार्ट होते हैं तभी भी थोड़ा हार्मोनल इम्बेलेंस रहता है, जब
0: विड्रोल में भी
1: जब
0: रहता है।
1: खत्म हो रहे होते हैं तभी भी होता है, मेनार्के से लेके मेनोपॉज तक कभी भी
0: कई
1: ये प्रॉब्लम हो
0: बार
1: सकती
0: इस
1: है।
0: तरह की जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे थायराइड है या दूसरे जो हैं, इनसे भी आपके पीरियड्स पे इम्पैक्ट आता है।
1: बिल्कुल, थायराइड की वजह से हो सकता है। जनरली जो थायरोड टॉक्सिकोसिस यानी हाइपर थायरोडिज्म है, वहाँ पर हैवी पीरियड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
0: अगर मैनेज्ड नहीं है
1: हाँ
0: तो,
1: जी, मैनेज नहीं है तो।
0: और
1: और हाइपोथायरोडिज्म जो कॉमन ज़्यादा है, वहाँ पर जनरली हैवी पीरियड्स नहीं होके थोड़ा स्कैंटी पीरियड यानी कम फ्लो होने
0: कम
1: का
0: होंगे,
1: प्रॉब्लम होता है।
0: लेकिन अगर मैनेज्ड है तो कोई
1: हाँ, कोई भी
0: दिक्कत।
1: हार्मोनल डिसऑर्डर अगर मैनेज्ड है तो उसके दूसरे नेगेटिव इम्पैक्ट कम होते हैं।
0: और पुरुषों की और भी कोई जांच है क्या, या ये जांचों से लगभग कंक्लूड हो जाती हैं चीज़ें?
1: नहीं, सीमन पैरामीटर्स देखने के बाद में, जैसे हमने एजोस्पर्मिया की बात की, तो उसके बाद में हम मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, FSH, इस तरह के कुछ हार्मोन टेस्ट देखते हैं। उनका स्क्रोटल कलर डॉपलर जो सोनोग्राफी का एक तरीका है, वो उनमें देखा जाता है। और FSH और टेस्टोस्टेरोन का इवेल्युएशन करके हम ये पता लगाते हैं कि ये प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियोर है, यानी कि अंदर स्पर्म बन ही नहीं रहे हैं, टेस्टिस के लेवल पर ही कोई प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया बोलते हैं।
0: फीमेल्स में कौन कौन सी जांचें आप करवाती हैं?
1: फीमेल्स में
0: और
1: जैसे हमने बात की कि सोनोग्राफी सबसे सिंपल और बहुत इफेक्टिव टूल है, जिससे हम यूट्रस को इन जनरल देख पाते हैं, ओवरीज में ओवरिन रिजर्व कितना है, नंबर ऑफ एग्स कैसे हैं, PCO वगैरह तो नहीं है, वो
0: उसका
1: रूल आउट
0: काउंट
1: कर
0: आ
1: सकते
0: जाता है
1: हैं।
0: क्या रिजर्व का,
1: हाँ
0: या
1: बिल्कुल, स्पेसिफिकली जो Day 2 और Day 3 ऑफ पीरियड्स पे हम जब सोनोग्राफी करके ये इवेल्युएशन करते हैं, तो ये काफ़ी एक्यूरेसी के साथ में हमको पता चलता है कि अंदर फॉलिकल का नंबर कितना है, हम
0: अच्छा,
1: एग्जैक्टली दोनों ओवरीज में काउंट कर पाते हैं। एक्चुअली ये बहुत बेसिक टेस्ट है हमारे लिए, इनफर्टिलिटी या IVF सेंटर पर फॉलिकल के काउंट के साथ ही हमारे IVF के सारे इंजेक्शन की डोजेज जो है वो डिसाइड होती है।
0: ठीक है।
1: इसके अलावा जो हार्मोन इवेल्युएशन है, थायराइड है, प्रोलेक्टिन हार्मोन है, ये टेस्ट हमको जनरली करने रहते हैं। AMH जैसे मैंने बताया बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। फिर फेलोपियन ट्यूब की टेस्टिंग है जो HSG किस से होती थी पहले के टाइम में, अभी भी करवाते हैं, दैट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड। एक्सरे से किया जाता है बट उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो अभी हम इसको रूटीन में जो है वो सोनोग्राफी के साथ में भी कर सकते हैं। और फिर अगर हमको कोई दिक्कत लग रही है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो लैप्रोस्कोपी इसके लिए डेफिनेटिव इन्वेस्टिगेशन होता है जांचने के लिए फेलोपियन ट्यूब्स को।
0: अब थोड़ा ट्रीटमेंट पार्ट पे आते हैं, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: एक और चीज़ जो ट्रीटमेंट पार्ट से पहले डिस्कस करनी है, रिस्क आपने काफ़ी हद तक बताए, लेकिन फिर भी मुझे लगता कुछ और चीज़ें बच गई हैं। लाइफस्टाइल के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेल फीमेल्स को ध्यान रखनी चाहिए, रिस्क जो इनफर्टिलिटी बढ़ाते हैं,
1: हाँ देखिए
0: टोबैको,
1: बिल्कुल,
0: अल्कोहल?
1: सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे मैंने बोला, अल्कोहल, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, खास करके मेल इनफर्टिलिटी पे स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। स्पर्म जो है वो डायरेक्टली डैमेज होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ में, स्मोक टॉपिक को जैसे आपने बोला, केमिकल एक्सपोजर के साथ में, है ना, वही सेम चीज़ जो है वो फीमेल्स में भी है।
0: प्रोफेशन का भी कुछ है क्या इससे रिलेशन, जैसे बहुत से लोगों की एक्सेसिव सीटिंग है?
1: प्रोफेशन का जिसको हम ऑक्यूपेशनल हैजार्ड एक चीज़
0: हाँ
1: बोलते हैं, कि आपके ऑक्यूपेशन में अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे आपने बोला एक्सेसिव सिटिंग है, अगर आपका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, हीट एक्सपोजर ज़्यादा है खास करके मेल्स के केसेस में, तो ये सब सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि आप लॉन्ग टाइम बैठे
0: नहीं,
1: हुए
0: जैसे
1: हैं।
0: जैसे टेलरिंग का काम है, या सुनार

0: का जो काम होता है करने वाला, या जिसकी बहुत ज़्यादा सीटिंग है, लंबे टाइम तक वो बैठे रहते हैं।
1: नहीं देखिए, सिटिंग का ऐसा डायरेक्ट जस्ट कोई ऐसा
0: अच्छा,
1: मैकेनिकल
0: टेम्परेचर का जरूर है,
1: टेम्परेचर का ज्यादा है। हाँ,
0: क्योंकि वहां पे कई बार इस तरह के कामों में टेम्परेचर के सामने भी हाई रेज टेम्परेचर
1: रेगुलरली, अगर हाई टेम्परेचर है जैसा हमने डिस्कस किया, हीट एक्सपोजर है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है।
0: और फीमेल्स में
1: फीमेल्स में जो, जैसे हमने बात की पीसीओ के बारे में, तो जो हार्मोनल इम्बेलेंस वाली प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे इनफर्टिलिटी कॉज करेंगी। सिम्टम्स के नाम पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं अगर आपका वेट गेन होता जा रहा है। और एक फर्टिलिटी पे जनरल एक चीज़ हम और डिस्कस करें कि किसी भी कपल को अगर अनप्रोटेक्टेड वे में वो रिलेशनशिप में है एक साल तक लगातार, और फिर उनको अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसको हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं। अगर एक साल में आपको बेबी कंसीव नहीं होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो फिर आपको इसके लिए ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए अपने एक्सपर्ट के पास में कि रीज़न क्या है इसका इनफर्टिलिटी का।
0: स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है इनफर्टिलिटी में? स्ट्रेस का भी रोल है?
1: स्ट्रेस का रोल बिल्कुल वही हार्मोनल इम्बेलेंस के साथ ही है जो हम कंटिन्यूसली अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों में एक जो है, जो अभी हम डिस्कस अभी नहीं हमने किया है, वो है एज, लेट मैरिज। एज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, ज्यादा फीमेल्स में, और मेल्स में भी है बट फीमेल्स में ज्यादा है।
0: मैं आपको अगर कानून बनाने का हक दे दिया जाए,
1: हाँ जी,
0: तो किस एज में शादी कर लेनी चाहिए लड़का और लड़की को? एलोपैथी के हिसाब से बोलिए आप, बाकी सब छोड़ देते हैं।
1: देखिए 25 की एज अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उस समय उनकी फर्टिलिटी जो है वो पीक पर होती है, तो इसलिए सूनर द बेटर। बट एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट है कि आप करियर ओरिएंटेड हैं,
0: वो सब छोड़
1: है ना, वो सारी चीजें हैं। तो अभी लेट मैरिज बहुत कॉमन है, तो लेट मैरिज की वजह से बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि एज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। मतलब यहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट मैं आपसे शेयर करती हूँ सबसे, जो मैं रूटीन में ओपीडी में भी बताती हूँ सबको, किसी भी फीमेल की बॉडी में एग्स जो हैं वो बचपन से, जब से वो बॉर्न हुई है तब से वो नंबर फिक्स होता है।
0: अच्छा,
1: नए एग्स नहीं बनते हैं।
0: जब वो पैदा होती है तभी,
1: जब वो पैदा होती है तभी से
0: इंस्टॉल हो जाता है।
1: बिल्कुल, तो वो नए एग्स नहीं बनते हैं बल्कि आपके अंदर जो स्टोर्ड एग्स हैं, तो जैसे जैसे आपकी एजिंग हो रही है वैसे वैसे उन एग्स की भी एजिंग हो रही है। तो एग्स की एजिंग होने की वजह से एग के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो है, वो समय के साथ में धीरे धीरे एजिंग की वजह से आप समझें कि वो खराब होता जा रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज होता जा रहा है
0: उसकी
1: क्वालिटी। क्रोमोसोमल अगर हम मेडिकल सेगमेंट में बात करें तो क्रोमोसोमल लेवल पर जो है वहाँ पर चेंजेस होने लगते हैं। इसके लिए 35 साल की उम्र के बाद में अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए जाती है तो उसके इम्पैक्ट जो है वो जगह जगह देखे जा सकते हैं। फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, मिसकैरेजेस ज़्यादा होंगे, इनफैक्ट बच्चे के अंदर एबनॉर्मलिटी होने के चांसेस भी होते हैं। कुछ सिंड्रोम्स हैं जो मदर की बढ़ती हुई एज के साथ में एसोसिएटेड हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत सिग्निफिकेंट इसका इम्पैक्ट है आने वाले पूरे जनरेशन, हाँ जी, एज का। सो एज इज अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, नॉट ओनली फॉर फर्टिलिटी बट फॉर मिसकैरेजेस एंड फॉर एनिमल।
0: एक चीज और जो नोटिस की है कि इस एज के आसपास लाइफस्टाइल डिजीज भी आजकल सरफेस होने लग गई हैं फीमेल्स में, खासतौर से थायराइड हार्मोन का।
1: लाइफस्टाइल डिजीजेस तो देखिए बिल्कुल बढ़ ही रही है, एज
0: के आसपास रिपोर्ट होती
1: है, बिल्कुल होने लगी है, एज कम होने लगी है उसकी, चाहे वो कार्डियक डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस रिलेटेड और भी जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं। इसके अलावा हम गायनेकोलॉजी की बात करें तो फाइब्रॉइड्स, एडिनोमायोसिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज के साथ में देखी जाती हैं। बहुत यंग एज में जनरली नहीं देखते हैं, प्रिवेलेंस जो है वो एज के साथ में बढ़ता जाता है। तो ये सारे फैक्टर भी जो है वो अफेक्ट करेंगे, कॉम्प्लिकेट करेंगे आपकी फर्टिलिटी जर्नी को।
0: और मेल फर्टिलिटी का भी क्या एज से रिलेशन?
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल है, लेकिन वो थोड़ा लेट करके है, उतना जल्दी नहीं जितना फीमेल में। मतलब हम 10 ईयर्स प्लस मान सकते हैं उसको, कि जो चीज़ हम यहाँ 25 अगर पीक हम फर्टिलिटी बोलते हैं तो मेल्स में वो 35 है। तो एज का डायरेक्ट आपको ये भी मैं यहाँ पे शेयर करूँ कि अभी इसके ऊपर ARTI एक्ट है 2021 के बाद में, ARTI IVF के ऊपर कानून बना हुआ है और उसमें एज को डिफाइन किया हुआ है। तो 50 साल जो है वो किसी भी महिला की मैक्सिमम उम्र है जहाँ पर वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा सकती है, और मेल्स के लिए एज 55 ईयर्स रखी हुई है।
0: अच्छा,
1: हाँ जी, उसके बाद में वो IVF ट्रीटमेंट या ARTI ट्रीटमेंट, IVF या IUI ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं।
0: 55 मेल की और फीमेल का
1: 50 ईयर्स।
0: तो 50 में तो मान लीजिए कोई मेनोपॉजल स्टेज में चली गई तो भी आप उनको
1: ये मैंने मैक्सिमम एज की बात की। मेनोपॉज तो देखिए 40, 42, 45, कभी कभी किसी कंडीशन

0: में प्रीमेच्योर
1: तो मेनोपॉज वो लोग भी सोच सकते हैं,
0: बिल्कुल सोच सकते हैं। वो रूटीन में हम आईवीएफ करते हैं उन पेशेंट्स में, उसमें हमको हार्मोन सपोर्ट, क्योंकि वो हार्मोन बॉडी में जो कम हो गया है उस इस्ट्रोजन हार्मोन, तो वो हमको सप्लीमेंट करके एचआरटी की फॉर्म में, और फिर हमको यूट्रस को, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को हमको प्रिपेयर करना होता
1: है। आप ये कह रही हैं कि मेनोपॉज बिल्कुल भी समस्या नहीं है,
0: बिल्कुल भी नहीं है। मेनोपॉज से ज्यादा समस्या अभी एज की ज्यादा है। अच्छा। मेनोपॉज के बाद में तो बिल्कुल प्रेगनेंसी पॉसिबल है आईवीएफ के थ्रू।
1: बहुत से लोग घर पे ये कंक्लूड कर लेते हैं कि साहब मेनोपॉज हो गया, अब तो बच्चा हो गया नहीं कैसे भी।
0: हाँ, ये एक मिसपरसेप्शन है, मिथ नहीं बोलूंगी मैं, बट हाँ अभी जनरल परसेप्शन सोसाइटी का ये है, काफी लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, खास करके रूरल पॉपुलेशन को नहीं पता होता है। वो समझते हैं कि पीरियड्स बंद हो गए मतलब अब फर्टिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर है कि वो एआरटी के थ्रू होगी, आईवीएफ के थ्रू होगी, नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं है।
1: उसकी कुछ स्ट्रेटेजी आप जो पीरियड्स वाली जो महिलाएं हैं उनसे अलग तरह से करना पड़ता है?
0: हाँ, वही जो मैं भी डिस्कस कर रही थी कि उसमें हमको यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है उसको हमको आर्टिफिशियली हार्मोन देके और डेवलप करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है।
1: अच्छा, एक सवाल है, सुबोध नागदा है भुवाणा उदयपुर से, करें कि निसंतानता के कारण जो कपल कई वर्षों से माता पिता नहीं बन पाते लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया जाता है और वो सफल हो जाते हैं।
0: हाँ जी।
1: सवाल ये बनता है कि आपसे कि आईवीएफ में ऐसा क्या चमत्कार होता है कि ये ट्रीटमेंट लेते ही समाधान हो जाता है? क्या इस प्रकार हुए बच्चे बायोलॉजिकल माता पिता या पिता के नहीं होते? ये भी एक कंसेप्ट है,
0: बिल्कुल बड़ा
1: और ये चिंता है। अभी गुड़गांव से एक न्यूज भी चल रही थी,
0: बिल्कुल चल रही है जी।
1: साधारण शब्दों में कहा जाए तो आईवीएफ सेंटर किसी अन्य डोनर का स्पर्म इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसी न्यूज कई बार, ये वाजिब सवाल है।
0: बिल्कुल वाजिब है, जैसा मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा लीगल प्रोसीजर है। अब इसमें आप कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, तो जहां पर इंडिकेटेड है यानी कि किसी रीजन से, जैसे हमने बात की एजोस्पर्मिया है, स्पर्म अवेलेबल ही नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो वहां पर आपकी कंसेंट के साथ में, इस पूरे लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आपके लिए डोनर स्पर्म जो है लिया जाता है। सेम थिंग फॉर फीमेल्स, अगर किसी भी रीजन से एग अवेलेबल नहीं है या एग की क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है एज या किसी और फैक्टर, एंडोमेट्रियोसिस या किसी डिजीज की वजह से, तो वहां पर प्रॉपर कंसेंट के साथ में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ में ओसाइट डोनर हम लेते हैं, यानी कि एग डोनर हम लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ऑफकोर्स वो एनोनिमस होता है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच में पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है जो सेंटर करके देता है। इसके लिए डोनर के लिए अलग से एआरटी बैंक होना चाहिए, एआरटी बैंक, जैसे हमारे पास में भी एआरटी बैंक है लाइसेंस के साथ में, तो हम ये डोनर की का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं।
1: कितना परसेंट केसेस जैसे होते हैं आपके टोटल एक्सपीरियंस कितना कहता है कि जिनमें आपको डोनर लेना पड़ता है?
0: देखिए, ये सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, आप किस तरह से डिसीजन करते हैं उस पे करता है।
1: मैं वैसे फिजिकल कंडीशन जानना चाह रहा हूँ।
0: फिजिकल कंडीशंस देखिए वो वाली बात है,
1: रेयर है या
0: नहीं? नहीं, बिल्कुल बहुत कॉमन है, क्योंकि जनरली आईवीएफ सेंटर तक कपल्स पहुंचते ही तभी है जब तक वो बहुत सालों तक ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, एज ज्यादा हो चुकी होती है, आप समझ रहे हैं, हर तरफ से जब हार जाते हैं तब वो आईवीएफ सेंटर, जबकि आपको जैसे ही पता चले कि आपका जो आपकी डिजीज़ है उसमें कुछ ऐसा इंडिकेशन बनता है कि आपको आईवीएफ करना है, तो सूनर द बेटर, आप जितना जल्दी आईवीएफ करेंगे उतने जल्दी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। पर क्योंकि एक अभी भी एक कॉमन परसेप्शन है कि ये लास्ट में किया जाने वाला ट्रीटमेंट है, तो लोग इसलिए सेंटर तक आते ही लेट हैं जब तक कुछ बचता नहीं, ओवरीज खाली हो चुकी होती हैं, एग्स अंदर अवेलेबल होते नहीं है, इनफ इंजेक्शंस और मेडिकेशंस पहले दिए जा चुके होते हैं।
1: तो आपके पास जो भी पेशेंट आता है, अगर मान लो चांस है, तो उसको विदाउट आईवीएफ भी आप ट्राई करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल करते हैं ना, बहुत छोटे छोटे मेडिकेशंस के साथ में, सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग, ओवुलेशन मॉनिटरिंग करके हम नेचुरल कंसेप्शन भी करवाते हैं, फिर एक आईयूआई जैसा प्रोसीजर होता है, अगर नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, मेडिसिन के सपोर्ट से भी, तो फिर आईयूआई जैसी एक छोटी प्रक्रिया है, वो भी एक एआरटी का, इसका लॉ का पार्टी है।
1: आईयूआई में आप डायरेक्ट जो है,
0: आईयूआई में हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, हाँ, सीमन को प्रोसेस करके प्रिपेयर करके लैब में, और हम यूट्रस के अंदर उसको एक छोटे कैथेटर से एक नली के जरिए अंदर प्लेस कर देते हैं।
1: जो लैब में होता है वो काम डायरेक्ट यूट्रस में,
0: यहाँ सारा काम जो है वो बॉडी में हो रहा है, जैसे रूटीन में बॉडी में होता है, नॉर्मल
1: नियर टू नेचुरल कंसेप्शन,
0: नियर टू नेचुरल कंसेप्शन है, 15-18% इसका सक्सेस रेट होता है। लेकिन अभी तक जो कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उससे ये एक स्टेप आगे है,
1: 15-18%
0: इसकी सक्सेस रेट कम है, इसकी सक्सेस रेट कम है, क्योंकि हमने जो बात की कि बॉडी के अंदर ही सारा प्रोसीजर बाकी का हो रहा है, हम सिर्फ जो है कुछ

0: कंडीशंस हैं जैसे कि सीमन फैक्टर्स जहां पर
1: एक्चुअल प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? तो IVF से थोड़ा IUI डिफरेंट है, कितना
0: बिल्कुल डिफरेंट है? यहाँ पर जनरली जहां पर सीमन में डिसऑर्डर्स हैं, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, वहां पर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन का एक प्रोसेस देते हैं, लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो कुछ अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स हैं वो ऊपर उसमें आ जाएंगे और उसको हम जो है अंदर यूट्रस के अंदर रख देंगे। तो ये एक सिंपल छोटा प्रोसीजर, बाकी पूरा फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन सब बॉडी के अंदर जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, ओव्यूलेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ वैसा ही है जैसा नेचुरल कंसेप्शन।
1: और IVF में सक्सेस रेट कितनी होती है?
0: IVF की सक्सेस रेट जो है, देखिए अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो करीब करीब 55-60% उसकी सक्सेस रेट है। फिर वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है कि आपकी लैब क्वालिटी कैसी है, आपका स्किल कैसा है, क्या एक्सपीरियंस आपका है, तो उसके बेसिस पर जो है वो सक्सेस रेट 75-80% तक भी अचीव की जाती है। जैसा कि हम अपने सेंटर पे कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें, आपने एग भी बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिए, आपने स्पर्म भी ले लिया, आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हुए फर्टिलाइजेशन करवाया, फिर आपने एम्ब्रियो कल्चर किया, एम्ब्रियो ग्रो किया, और उसमें से जो बेस्ट एम्ब्रियो वो आपने सेलेक्ट किया अंदर बॉडी में रखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑप्टिमाइज करके आप सक्सेस रेट को इम्प्रूव करते हो। तो जो सवाल था कि ऐसा चमत्कार, चमत्कार नहीं है, साइंस है, इट्स अ प्योर साइंस।
1: क्योंकि वो आपके हाथ में इंटरवीन करने के लिए काफी कुछ होता है,
0: काफी चीजें होती हैं बिल्कुल, और बहुत, और रिप्रोडक्टिव साइंस जो है वो मतलब बहुत डायनेमिक है। आप देखिए रेगुलरली एडवांसमेंट इसमें हो रहे हैं, कैसे और सक्सेस को ऑप्टिमाइज करें उसके ऊपर लगातार काम चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें ट्विंस होने के चांस ज्यादा होते हैं? कारण
0: बिल्कुल इसलिए क्योंकि हम जब इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब हम जब ट्रांसफर देते हैं तो हम जनरली दो एम्ब्रियो ट्रांसफर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को, कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हम अपने सेंटर पर सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बहुत कॉमनली करते हैं। अगर हमको लगता है कि एम्ब्रियो क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हम एक सिंगल एम्ब्रियो ही अंदर यूट्रस में प्लेस करते हैं। बट हाँ, अगर कपल चाहें, ऑप्ट करना चाहें ट्विंस के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है कि ट्विंस नहीं होना चाहिए, बाकी वो उनकी चॉइस होती है। तो ऑफकोर्स ट्विंस के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं।
1: और क्या क्या इस तरह के जैसे ट्रीटमेंट के जो ऑप्शंस हैं? एक तो IVF आपने बताया और IUI बताया, इसके अलावा भी कुछ?
0: लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी का काफ़ी रोल है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में, जहां कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है, तो वो दोनों चीज़ करते हैं हम। उसमें डायग्नोसिस भी एस्टेब्लिश होता है, मतलब जाँच भी होती है, साथ साथ में ट्रीटमेंट भी होते हैं। फिर बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कि अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड अंदर रखा हुआ है, जहां पर प्रेगनेंसी आ रही है वहीं पर फाइब्रॉइड रखे हुए हैं, अगर PCO जैसी प्रॉब्लम है जो रूटीन मेडिसिंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेजेस हैं, ये सारी चीजें हम लैप्रोस्कोपी से हैंडल करते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में उसका ट्रीटमेंट करने से नेचुरली कंसीव होने के चांसेस होते हैं ऑपरेशन के बाद में। और हिस्ट्रोस्कोपी जिसमें हम यूट्रस के अंदर दूरबीन ले जाकर वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम है, रसौली है, पॉलिप है, कोई जन्मजात विकृति है, जैसे यूट्रस दो भागों में बटा हुआ है, सेप्टम है, तो वो सब हिस्ट्रोस्कोपी से ऑपरेट करके ठीक कर सकते हैं।
1: अच्छा, दूसरा एक ये, अगर मैं राजस्थान या उदयपुर स्पेसिफिक आपसे बात करूं, यहाँ का सोशल ऑर्डर थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ किस तरह के अनुभव रहे हैं आपके? खासतौर से एक स्टिग्मा है लोगों में इसको लेकर, बहुत जल्दी लोग आप तक नहीं पहुँचते, तो ये कुछ इश्यूज हैं क्या?
0: देखिए, एजुकेशन और अवेयरनेस के साथ में सिनेरियो तो बहुत चेंज हुआ है, और इसमें मीडिया का, रेडियो का, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अभी पब्लिक को एक जनरल अवेयरनेस है, और वो जो टैबू था कि इनफर्टिलिटी के नाम का टैबू है, खास करके मेल इनफर्टिलिटी, डॉक्टर के पास में नहीं जाना है, वो तो टूटा है, वो हर जगह टूटा है, और उदयपुर इज़ नो एक्सेप्शन। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि
1: रूरल एरियाज में
0: बिल्कुल आते हैं, रूरल एरियाज में मैं शेयर करूंगी कि इंस्टाग्राम देख के, फेसबुक देख के रूरल एरिया के लोग, आपको उनके अपेयरेंस से एक बार को ये नहीं लगेगा कि ये सोशल मीडिया रेगुलर यूजर्स हैं, लेकिन वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, एजुकेशन कंटेंट सुन रहे होते हैं, और फिर वो आपको अप्रोच करते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी
1: मतलब पॉजिटिव साइन है,
0: वेरी पॉजिटिव थिंग।
1: और किस तरह की प्रॉब्लम्स जब आप तक पहुंच जाता आदमी, उसके बाद भी कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर करना चाहें एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से?
0: हाँ, देखिए सोशल कुछ फैक्टर्स तो रहेंगे ही, जैसे एक्सेप्टेंस बहुत इजीली नहीं होता, आप अपनी डिजीज को, जैसे आपको कोई ऐसा डायग्नोसिस सुनने को मिला है जो आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि आपको उससे रिलेटेड कोई सिम्टम नहीं थे अदर देन इनफर्टिलिटी, तो आप बहुत ईजी अपने डायग्नोसिस को कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते। काउंसलिंग का बहुत रोल है, वही जो मैंने कहा कि डॉक्टर आप वो चुने जो

0: आपको सिर्फ दवाई ना दे बल्कि आपके स्ट्रेस को दूर कर सके, आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके, आपकी लाइफ स्टाइल को ऑप्टिमाइज कर सके, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए ट्रीटमेंट की. इट इज़ नॉट ओनली द प्रेस्क्रिप्शन विच मेक्स अ डिफरेंस. तो डॉक्टर के साथ में बात करके, कम्युनिकेशन से, काउंसलिंग से, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो हल संभव है, मैं ऐसा मानती हूँ.
1: ये इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं,
0: हाँ जी,
1: ये सब जगह घुस रहे हैं. आपने शुरू में भी कहा था मोबाइल्स हैं या दूसरे जो चीज़ें, सोशल मीडिया है.
0: हाँ जी,
1: इससे कुछ निजात पाने का कोई तरीका आप उनको बताती? मुझे तो कहीं भी ये सक्सेस होता लग नहीं रहा. क्या डॉक्टर्स का
0: नहीं,
1: कहना मान
0: हम
1: लेते हैं?
0: बिल्कुल बताते हैं पेशेंट्स को. देखिए, हर पेशेंट, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है. मैंने अपने 25 साल के अभी तक के उसमें यही देखा है, करियर स्पैन में, हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है, हर फर्टिलिटी जर्नी डिफरेंट है. तो अगर आप सोशल मीडिया या चैट जीपीटी या गूगल के ज़रिए अगर आप अपने सिम्टम्स को सर्च करते हैं, तो वो आपको बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन देता है, जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन देता है. वो कभी भी इंडिविजुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देगा आपके अकॉर्डिंग. तो हम पेशेंट को हमेशा एक तो ये चीज़ समझाते हैं कि हर केस अलग है, इसको ज़्यादा गूगल ना करें, चैट जीपीटी ना करें. दूसरी चीज़ ये है कि मेडिकल साइंस बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स है. आप देखेंगे कि हर जगह कहीं ना कहीं कैंसर का नाम भी आ जाता
1: आ
0: है,
1: ही जाता है.
0: लेकिन अगर हम उसको बात करें मेडिकल के एविडेंस के साथ में, फैक्ट्स के साथ में और प्रिवेलेंस के साथ में, तो हम उसको जनरली लास्ट में रखते हैं. हम शुरू करते हैं छोटे छोटी चीज़ों से, हार्मोन इम्बैलेंस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, लाइफ स्टाइल रिलेटेड इश्यूज़, लास्ट में कहीं जाकर बिल्कुल रेयर परसेंटेज में आपको मेलिग्नेंसी या कैंसर मिलेगा.
1: बहुत कम मिलता
0: बहुत
1: है
0: कम
1: एक्चुअली,
0: मिलता
1: लेकिन
0: है,
1: वो
0: बहुत.
1: होता है सबसे ऊपर.
0: पर जब नहीं, वो क्योंकि जब आप गूगल या चैट जीपीटी करेंगे तो आपका ब्रेन, मतलब नेगेटिव का
1: पकड़ेगा
0: जो है
1: उसको.
0: वो, हाँ, जल्दी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ता है.
1: मैंने
0: तो
1: जब
0: आप उसको उल्टा पढ़ना शुरू करते हैं. जनरेशन उसको, अभी की जो करंट जनरेशन है, वो उसको वहां से पढ़ना शुरू करती है. सबसे पहले वो कैंसर पढ़ेंगे. जैसे मैंने बताया कि पीएमएस में बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ी रिस्क होती है एंडोमेट्रियल कैंसर की. तो वो शुरुआत वहां से करेंगे, फिर वो पैनिक करेंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे, एंड देन इट बिकम्स अ विशियस साइकिल. सेम फॉर इनफर्टिलिटी. वो पहले ही सोच लेंगे कि कुछ तो मेजर होने वाला है मेरी बॉडी में, एग खत्म है, स्पर्म खत्म है, एंड लाइफ इज कमिंग टू द एंड. मतलब सब कुछ वो खत्म है वाले माइंडसेट से
1: एज भी
0: आते
1: तो
0: हैं.
1: ऐसी होती है ना,
0: बिल्कुल, एज
1: एज
0: ऐसी होती है. एंड देन मेडिकल साइंस इज इट्स वास्ट. आप देखिए ना, इतने सारे सब स्पेशलिटीज कैसे डेवलप हो गए. अभी गायनेकोलॉजी पूरा अलग था, लेकिन पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, साइंस, इनफर्टिलिटी पूरा सेपरेट कैसे हो गया? क्योंकि नेचुरली इतना कंटेंट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि डॉक्टर्स को और एक्सपर्ट को हर पेशेंट के लिए, कपल के लिए, खास करके चैलेंजिंग केसेस में आपको इतने एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. तो जनरल पब्लिक के लिए तो बहुत
1: एक
0: डिफिकल्ट है समझ
1: नॉर्मल
0: पाना.
1: मैं एक आइडिया लेना चाहता हूँ कि महीने में मान लीजिए 100 पेशेंट मोनिका शर्मा के पास आते हैं,
0: जी
1: डॉक्टर मोनिका के पास, तो उनमें कितने लोग खुश होके जाते हैं? मैं विज्ञापन नहीं कर रहा और ना ही मैं सिर्फ डॉक्टर मोनिका की बात कर रहा हूँ. एक जो IVF एक्सपर्ट है, उसके पास 100 लोगों में से कितने लोग बाद में सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं?
0: देखिए, मैं खुद तो
1: सक्सेस रेट जानना चाह रहा हूँ
0: देखिए,
1: एक्चुअली.
0: सक्सेस रेट
1: और नॉट ओनली
0: अगर हम,
1: IVF
0: हाँ
1: बल्कि
0: जी,
1: मैं
0: इन
1: जो
0: जनरल,
1: मल्टीपल मल्टीप्रोंग्ड जो आपकी एक अप्रोच होती है उसमें.
0: तो अगर मैं खुद ना बोलूँ तो गूगल रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हैं इस बारे में, जहाँ पर पेशेंट्स खुद अपनी सक्सेस स्टोरीज़ और सेटिस्फेक्शन स्टोरीज़ बताते हैं. बट येस, बाय गॉड्स ग्रेस, ये जो है, ये वाला जो रिवॉर्ड जो है, वो मुझे बार बार देखने को मिलता है, मुझे मिलता है, जो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है. काउंसलिंग के साथ में, कम्युनिकेशन के साथ में, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट जो है वो भी काफ़ी अच्छा है.
1: और
0: तो
1: उदयपुर, कई लोगों की ये भी होता है कि नहीं, हम तो अहमदाबाद कराएंगे या फलां जगह जाएंगे, वहाँ अच्छे हैं. तो उदयपुर क्या IVF ट्रीटमेंट के हिसाब से
0: देखिए,
1: अच्छा
0: उदयपुर तो
1: डेस्टिनेशन है?
0: IVF के लिए हब है,
1: मेरे ख्याल से तो हब है.
0: बिल्कुल, इट इज़ एस्टेब्लिश्ड हब. अब तो इसमें कहीं कोई सेकंड थॉट क्वेश्चन है ही नहीं. बहुत सारे दूसरे स्टेट्स हैं, वहाँ से पेशेंट जो हैं वो उदयपुर आते हैं. आपने अहमदाबाद की बात की, तो हमने तो हमारे सेंटर पर अहमदाबाद के पेशेंट्स का भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट किया है, उनको बेबी देकर भेजा है. और मेडिकल साइंस की बात करें तो जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है वो सब जगह सेम है ग्लोबली. फिर उसमें अहमदाबाद या अमेरिका कुछ मैटर नहीं करता. सो अगर आपका डॉक्टर नॉलेजेबल है, एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, और अगर उनकी सक्सेस रेट अच्छी है, तो मेरे ख्याल से कोई सेकेंड थाट होता नहीं है पेशेंट्स के माइंड में भी.
1: एक या दो चीज़ जो कपल्स से आप शेयर करना चाहें?
0: मैं कपल्स से शेयर

0: करना चाहूँ
1: लास्ट, क्योंकि कंक्लूड करना है।
0: बिल्कुल, कंक्लूजन यही है कि अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हेजिटेशन से बचें कि एक बार डॉक्टर के पास में चले गए तो फिर उसके बाद में हमेशा के लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी या ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इस परसेप्शन से अपने आप को बचाएं, अर्ली डायग्नोसिस के साथ में, कम मेडिकेशंस के साथ में आपको जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ये श्योर है
1: डॉक्टर मोनिका। और एक इसका बड़ा, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब धीरे धीरे करके निसंतानता की समस्या लगभग कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, बहुत कम ऐसे कपल्स हैं।
0: निसंतानता तो देखिए, मैंने जो शुरू में बात की थी कि लगातार बढ़ रही है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और ये बढ़ने वाली है।
1: जो आपके पास अप्रोच करता है या मतलब एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास,
0: किसी भी मेडिकल एक्सपर्ट
1: के पास जब जाता है,
0: हाँ जी,
1: तो उससे ये समस्या काफी हद तक मैनेज हो रही है।
0: हाँ, इसको मैं ऐसे बोलूं कि मेडिकल साइंस अभी इतनी एडवांस्ड है कि हर तरह के डिजीज और डायग्नोसिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है।
1: ये अलग बात है कि ग्लोबल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव साइड में है और इन्फर्टिलिटी ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के लिए एक चैलेंज है।
0: हाँ, बट अब वो वाला सीन नहीं है कि कोई कपललेस है, कोई निसंतान है तो वो पूरी जिंदगी उसके साथ में रहने वाला है, उस दुख, उस तकलीफ के साथ में, मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा के साथ में। अभी मेडिकल साइंस उतनी डेवलप्ड है कि हम आपको हेल्प, सपोर्ट, गाइड कर सकते हैं।
1: डॉक्टर मोनिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी समय मिला तो PCOS और इरेगुलर पीरियड्स, दो सवाल आए उन पर बात करेंगे।
0: हम अलग अलग एक एक टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं सीरीज में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू सो मच।
2: उदयपुर, उम्मीद के दिए को बुझने ना देना कभी, वक्त की गर्दिश से डरना ना कभी, खिलेंगी कलियां और बहकेगा आंचल भी, सब्र के दामन को हाथ से छूटने ना देना कभी। हमारी आज की विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर मोनिका शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने बड़ी संजीदगी, सरलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस संवेदनशील विषय पर रोशनी डाली और कई दिलों के डर को दूर कर दिया। आपसे बातचीत की विनोद शर्मा ने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं का जिन्होंने सवाल भेजे। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए और सुनते रहिए मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लेक सिटी, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे GBH जनरल एंड कैंसर हॉस्पिटल भेड़वा उदयपुर।
4: स्ट्रोक में टाइम का बड़ा महत्व है, इसीलिए स्ट्रोक की सिचुएशन में भरोसा है GBH,
5: जो है स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पंकज टापरिया और न्यूरोसर्जन डॉक्टर SR चौधरी की सेवाएं। एट भट्टजी की बाड़ी उदयपुर, कॉल 02943535000।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: को आई एम
5: हियर। दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
4: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
4: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना।
4: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: तरों से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
9: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली OG कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी, 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लिक सिटी 101.9 FM बैंड पर। उदयपुर मौसम का मिजाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और अब वीकेंड भी नज़दीक है, तो कुछ हिट गानों की बात करेंगे। वो गाने जो हमेशा से हमें पसंद रहे हैं, या फिर अगर नए ट्रैक सुनते हैं तो भी हमें ये गाने पसंद आते हैं। कुछ म्यूज़िकल हिट्स आपके लिए अब शेयर करेंगे। प्रोग्राम का नाम हिट परेड।
0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की

सलीम अब्दुल्ला का गाया ये इमोशनल ट्रैक सैयारा मूवी से आप सुन रहे थे और अब सुनवा रहे हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। इस फिल्म का ये गाना राघव चैतन्य और साथियों की आवाज़ें।

रेडियो लेक सिटी पर ये प्रोग्राम है हिट परेड। हम अगला गाना सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें 10:45 से 11 बजे तक आप भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें, जो गाने आप सुनना चाहते हैं। आज शुक्रवार को सुबह 10:45 से 11 बजे तक भेजी जाने वाली फरमाइशों में से सेलेक्टेड गीत जो इस दौरान हम बजा पाएंगे वो ज़रूर प्ले करेंगे 11 बजे जिस प्रोग्राम में, उसका नाम है लिसनर्स चॉइस।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
2: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का बीज

0: जन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: दादी कौन सा प्लांट है?
3: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
4: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
4: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
4: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
5: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
6: तीनों कॉलेज में
7: डोंट वरी,
6: फीस तो देखो।
8: क्या हाल है, क्या हुआ?
7: फीस की टेंशन,
8: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
9: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
10: RBI कहता है
1: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये है आपका मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो लिग सिटी 101.9 FM बैंड पर, और अब वक्त है आपके चहेते प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस का। शायर ने क्या खूब कहा है ना कि तेरी आवाज़ में जो रस है वो साजों में कहाँ, ये जो धड़कन की सदा है वो गज़लों में कहाँ, तू जो चाहे तो बदल जाए ये महफिल का समा, तेरे कहने में जो बात है वो लफ्ज़ों में कहाँ। तो ये शो है आपके उन खूबसूरत गीतों का जो व्हाट्सएप मैसेजेस के ज़रिए आपकी फरमाइश हम तक पहुँची है। आपकी पसंद, आपके गाने पूरे उदयपुर को सुनवाएंगे इस पूरे घंटे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

तो हाथी मेरे साथी फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसकी फरमाइश हमें भेजी सलार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन और उनके साथ उनके पूरे परिवार के नाम हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद करते हैं दिनेश्वर।

करुणा वर्मा, और हम नाम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों की भी। आपकी फरमाइश इस गाने के लिए जो हमने लिया है फिल्म एक बार मुस्करा दो से।

निर्माता निर्देशक सोमू मुखर्जी की जयंती है आज, और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए ये गाना पसंद किया अब्बासी परिवार ने, और इन्हीं के साथ नाम शामिल कर रहे हैं लुधियाना पंजाब के श्रोताओं के भी। आप हैं विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश पुरी, नीलम पुरी, रामा पुरी, पाली पुरी, सुनील पाठक, वीके पुरी और इनके साथ इनका पूरा परिवार है। और नाम शामिल कर रहे हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का के भी नाम शामिल हो गए हैं। और मीनाक्षी शर्मा, प्रदीप शर्मा हैं चिंतामणि की घाटी से, अपने हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना सुनना चाहा है, हमने इसी फिल्म का एक गाना आपको भी सुनवाया भी है। और अगला हम नाम गाना शामिल कर रहे हैं अब राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना है, और इसके लिए हमें फरमाइश मिली है विनोद सालवी, अनीता सालवी, पीयूष सालवी, शालू सालवी, लक्षिता सालवी, सुथारवाड़ा उदयपुर के श्रोता हैं आप सब।

लता मंगेशकर का गाया ये खूबसूरत सा गाना हमारे श्रोताओं की पसंद पर। और इसी के साथ हम नाम शामिल कर रहे हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा के भी। और इसी गाने के साथ कुछ और नाम शामिल हो रहे हैं, ये हैं श्याम सुंदेशा, शोभा सुंदेशा, प्रशांत, प्रेरणा सुंदेशा, गांधीपुरा बालोतरा शहर राजस्थान के श्रोता हैं। अगले गाने की ओर बढ़ेंगे, खुदगर्ज फिल्म का गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। इसके लिए फरमाइश भेजी है वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी ने। जगदीश चौक से नाम जुड़ रहे हैं सीमा वारी, नहर सिंह वारी के। वारियों की घाटी से भावना रावत, नितिन रावत जगदीश चौक से हैं। उमा वारी, साक्षी वारी, आयुर्वेदिक चौराहे से अशोक चौहान, मंजू चौहान, उषा चौहान। पनिहारी वारियों की घाटी से दीपक रावत, किरण रावत, नक्ष रावत हैं। और वारियों की घाटी से श्रोता हैं हरीश रावत, मीना रावत, एसएन रावत। भोपालवाड़ी से रवि भाई, सत्तू भाई, दिलीप खत्री। बापू बाजार से चेतना रावत, साक्षी रावत। और वारियों की घाटी से हैं गुनगुन -गुन।

सभी दोस्तों को समर्पित करते हुए ये गाना हमारे श्रोता की पसंद पर हम सब सुन रहे हैं। और इसी गाने के साथ कुछ और नाम शामिल करते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, और श्रोता हैं तुलसी मस्कीन और इनका पूरा परिवार। ये साथ में श्रोता हैं दिल्ली के, हमारे ये श्रोता हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, और चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदान खुराना। साथ में हम नाम शामिल करेंगे धन्वंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, प्रीति सिंह।

ऋषभ सिंह और प्यारी गुड़िया वेदा सिंह के भी नाम शामिल कर रहे हैं। और अगला गाने की ओर अब हम बढ़ें तो ये गाना है भीगी पलके फिल्म से, जिसके लिए हमें रिक्वेस्ट की है विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश व्यास, विनीत व्यास, पूनम व्यास, आप सभी ने आशीर्वाद नगर यूनिवर्सिटी रोड से।

इस खूबसूरत से रोमांटिक गाने के बाद हम नाम शामिल कर रहे हैं कुछ और श्रोताओं के। ये हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का, और इसी गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती ऊषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय की भी। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवाएंगे मोहरा फिल्म से, इसे हमने लिया है और इसकी पसंद की है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने।

सदाबहार गानों वाला ये प्रोग्राम है लिसनर्स चॉइस, जिसमें हमारे श्रोताओं की पसंद बज रही है और सुन रहा है पूरा उदयपुर। अगला गाना हम बजाएंगे धरती फिल्म से, जिसकी फरमाइश मिली है हमें भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की। और इसी के साथ नाम शामिल हो रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के हमारे श्रोताओं के, और आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े के नाम भी हमने शामिल किए हैं। आप जवाहर नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं। चलिए अब गाना सुनते हैं धरती फिल्म से।

भोपालपुरा से शुभांगी वर्मा का मैसेज है कि आज पुराने दिनों की याद आ रही थी और पुराने गाने भी ताज़ा हो चुके हो उठे हैं जहन में। तो चलिए, शायद ये गाना आपको पसंद आया होगा। अगले गाने का रुख करते हैं। गाना आपको सुनवाएंगे जय चित्तौड़, फिल्म का नाम है, और इसके लिए फरमाइश हमें भेजिए तरुणा झमक पूर्बिया, सोहन देवी पूर्बिया, पूर्व पूर्बिया, लक्ष्मी लक्षराज पूर्बिया, हाथी बोल के हमारे इन श्रोताओं ने।

हिंद व सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो लेक सिटी पर लिसनर्स चॉइस, जिसमें आपकी पसंद हम बजाते हैं और पसंद सुनता है पूरा उदयपुर। चलिए अगला गाना कौन सा है ये आपको बताएं। यह है अवतार फिल्म से और इसके लिए फरमाइश हमें भेजी है उदयलाल, कौशल्या, रिया, खुशी, तेजस, कुलदीप, सुनीता उंटवाल ने उदयपुर से।

हिरण मगरी से भारती का संदेश आया है कि सुबह की भागदौड़ के बाद अब जब रेडियो ऑन किया तो ये गाना सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा, इतनी भागदौड़ के बाद सुकून पहुंच गया। बहुत शुक्रिया, आपका नाम गाने में शामिल हो चुका है और आप सुन रहे हैं लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम, जिसमें आप ही की पसंद के गाने सुनवाए जाते हैं। अगला गाना सुनवाएंगे, उससे पहले कुछ और श्रोताओं के नाम इस गाने में शामिल कर लें। ये हैं अद्वेश शर्मा और इनके साथ में है पूरा परिवार इनका। ये है बक्सर बिहार से अशोक शर्मा, रोहित शर्मा, सनम शर्मा, ब्रजेश शर्मा, हीरालाल शर्मा, मुकेश शर्मा, दिलमणि शर्मा और श्री कृष्ण शर्मा। वडिंगखेड़ा पंजाब के हमारे श्रोता हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और श्रोता हैं अडार नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। दूसरे श्रोताओं के नाम जो हम शामिल कर रहे हैं, लेवाई छत्तीसगढ़ से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी और उज्जवल दास मानिकपुरी। कुछ और श्रोताओं के नाम हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और श्रोताओं के नाम मस्किन परिवार, जिनके नाम हम शामिल कर चुके हैं, और अशोका श्याम को अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, ये है छत्तीसगढ़ के श्रोता। चलिए अब अगले गाने की ओर रुख करेंगे, जब भी बैठ है फिल्म का नाम, और इसके लिए हमें फरमाइश भेजिए हिरण मगरी सेक्टर 4 से सुशील यादव, रेणु यादव, मोहित यादव, कार्तिक यादव, शानू यादव, नमिता यादव और संजू यादव ने।

और आइए कुछ और श्रोताओं के नाम इस गाने में शामिल कर लिए जाएं। ये हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल, भारती बघेल, आप हैं छत्तीसगढ़ के श्रोता, और श्रोता है ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगावाला चौक गोरिया जालंधर के श्रोता हैं, और हम और श्रोताओं के नाम शामिल करते हैं। ये सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से है, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। चलिए अगला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, और इस गाने को पसंद किया है पश्चिम बंगाल कोलकाता से विक्रम ने, और ये है गुलामी फिल्म का गाना। हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा के नाम भी हैं साथ में।

मार्क्स। चलिए अगला गाना अब आपको सुनवा रहे हैं, और इस गाने को पसंद किया है पश्चिम बंगाल कोलकाता से विक्रम ने, और ये है गुलामी फिल्म का गाना। हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना शर्मा, काजल शर्मा के नाम भी हैं साथ में।

जिंदगी की भागा दौड़ के बीच जब मन थकने लगे तो अपनी पसंद का एक गाना जरूर सुन लेना चाहिए, रूह को सुकून मिल जाता है। चलिए इसी गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं श्री कृष्ण आर्ट दिवाली से ख्याली लाल कुमावत, सुप्रिया कुमावत, रजत कुमावत और नन्ने टप्पू के भी, और नाम शामिल करेंगे हम ये हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आप नेपा नगर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं। चलिए अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, चश्मे बदूर है फिल्म का नाम और इसके लिए फरमाइश भेजी है मिस्टर एंड मिसेस बचपन बजाज नगर उदयपुर से हैं, मनीष टेलर बाबूलाल धाबाई सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर से, अशोक आनंद मीनू नैनानी प्रभात नगर सेक्टर 5 से, राजकुमारी और विपिन गोस्वामी चंदनवारी प्रेमनगर से, दुष्यंत और जिज्ञासा हैं बजाज नगर उदयपुर से।

रेट्रो क्लासिक गाना आपने सुना लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं के नाम जो हम इस गाने के साथ साझा कर रहे हैं, आप हैं उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, मऊ से मोना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, और इन्हीं के साथ इनका पूरा परिवार भी है। अगले गाना जो आपको सुनवाएंगे वो हम उसके लिए फरमाइश भेजी है खेरादीवाड़ा चौक से श्रवण कुमार सुरेश कुमार ने। कूली नंबर वन फिल्म का ये गाना है और जेठ की दोपहरी का एहसास बयां करता है ये गाना।

रेडियो लेक सिटी पर यह है वीकली प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस, जिसमें हम आपकी पसंद के गाने सुनते हैं और पूरा शहर सुनता है। चलिए गानों में हम नाम भी शामिल करते चलें। तो ये नाम है बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान के। और नाम शामिल हो रहे हैं नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी के नाम शामिल हो गए हैं। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहे मलिक और उससे पहले वाले श्रोता मजनू का टीला से श्रोता थे हमारे। और ये है नाहटा परिवार, विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा और राहुल शर्मा, अक्षय शर्मा, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वशीता, भंवर वशीता, गौतम वशीता और इनका पूरा परिवार। और इसी गाने के साथ नाम शामिल हो रहे हैं धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड के, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू के भी। ये हैं हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। जोड़ा परिवार है कृष्णा पार्क दिल्ली से, सीटी दीवाना, सुखविंदर सिंह जोड़ा। और नाम शामिल हो रहे हैं रामचंद्र टेलर, लीला देवी, कल्पेश, पिंकी, बनस्वी, चैतन्य और कार्तिकीय के भी। आप सभी की मिली जुली फरमाइश है अगले इन कुछ जितने वक्त बचा है इस प्रोग्राम का उसके दौरान आप सुन पाएंगे। आन मिलो सजना फिल्म का गाना आपने पसंद किया है और इसके लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए। नाम हम शामिल कर देते हैं, ये हैं भरत जायसवाल, सोनी गरसिया, गांव मंडवा, डूंगरपुर के श्रोता, आपका भी गाना शामिल होने जा रहा है। ये हिमालय की गोद में फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। रंगास्वामी परिवार है बड़गांव से और ये हैं शिवदास रंगास्वामी, श्रीमती द्रौपदी रंगास्वामी, साधना रंगास्वामी, पूजा रंगास्वामी, भानु प्रताप दास रंगास्वामी, महिमा रंगास्वामी, भास्कर रंगास्वामी, चित्रांशी रंगास्वामी, शांति भाभी जी, कमला भाभी जी, भगवान दास जी रंगास्वामी और पूरा खुबानी परिवार है। अगले श्रोताओं के नाम शामिल हो रहे हैं अशोक साधवानी, देवीलाल चौधरी, मोहन चौधरी, किशन जी, हितेश गौरव, कपिल खिलानी, भरत तेली, आबिद खान पठान और इनके पूरा मित्रगण हैं, इनके यातायात सलाहकार संघ उदयपुर के श्रोता हैं। और एमबी कॉलेज कुमारों का भट्टा से मांगीलाल पूर्बिया, पुष्पा रानी पूर्बिया, मोती चौटा करजाली हाउस से माधवलाल सिल्लीगर, कुम्हारों का भट्टा से प्रजापति जौनी भाई कुल्लड़ वाले। अजनबी फिल्म का ये गाना हम सुनवा रहे हैं श्रीनाथ मार्ग खेरादीवाड़ा से, सत्यनारायण कुरील, पुष्पलता कुरील, मिताली मिनाली और रोहन कुरील की पसंद पर।

चलिए प्रोग्राम में कुछ और श्रोताओं के नाम भी शामिल कर लिए जाएं। ये हैं चेतक सर्कल से मुकेश जीनगर, रेनू जीनगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से अजय जीनगर, प्रिंस जीनगर, कुलदीप, सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर के श्रोता हैं, और श्रोता हैं रामचंद्र पवार, तुलसीराम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया, ये हैं उदयपुर के श्रोता, और पटेल नगर मालोद से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, और श्रोता हैं ये रहमान कॉलोनी उदयपुर से मोहम्मद इदरीस, रुखसाना बानो, मुस्तफ़ा रज़ा, और श्रोता इनके साथ हैं अब्दुल समाद, फिरदौस बानो, मोहम्मद राजा, और इनका पूरा परिवार आपके नाम हमने शामिल किए, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और पूरा डागला परिवार है हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हैं, और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा हैं, मिथिल नाचानी, प्रगति नाचानी, विनीत नाचानी, भारती नाचानी, रमेश नाचानी, प्रताप महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता आपके नाम भी शामिल हुए हैं, तुलसीराम, गीता, डॉक्टर मनीषा, भुवनेश और पूरा खत्री परिवार कलटवास सांची ग्रुप, और नाम शामिल कर रहे हैं नीरज, दुवेश, प्रेम शंकर, दिव्यांश, खारल कॉलोनी, फतेहपुरा उदयपुर के श्रोताओं के भी, नागा नगरी से अब्दुल भाई, बाबू भाई, टिंकू भाई, सोनू भाई, सैफन भाई के नाम भी शामिल हो गए हैं, किशन सोलंकी, कविता सोलंकी, हेमंत सोनी, ज्योति सोनी, कार्तिक, आनंद विहार, टेकरी उदयपुर के श्रोताओं के नाम भी शामिल हो गए हैं।

क्या बात है उदयपुर, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के अलग अलग पन्ने खुल रहे हों। कहीं मोहब्बत की खुशबू बिखर रही है तो कहीं गुजरा हुआ वक्त और उसकी कोई अधूरी याद सामने आ रही है। चलिए नाम शामिल कर लिए जाएं, किशन सोलंकी, कविता सोलंकी, हेमंत सोनी और ज्योति सोनी, कार्तिक, आनंद विहार, टेकरी, उदयपुर के श्रोताओं के नाम शामिल हो गए। रोशन लाल सालवी, राजकुमारी सालवी, ललित सालवी, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश, हितविक सालवी और पूरा सालवी परिवार मीरा कॉलेज उदयपुर से। और ये हैं, कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए और अच्छा प्रोग्राम लगता है इन्हें। सुरेंद्र सोलंकी हैं, भावना प्रदीप हर

हर्ष, रानू, पार्थ और पूरा सोलंकी परिवार सेक्टर 11 से है। इंतजार कीजिए कुछ और गाना, जितना ये बजता है और उसके बाद अगला गाना बजेगा, तो उम्मीद करते हैं वो आपको पसंद ज़रूर आएगा। नाम शामिल हो रहे हैं किंजू कुमावत, शौर्य, कार्तिक, दादाजी, दादी जी, हिरण मगनी सेक्टर 5 उदय पार्क से है, शशांक कुमावत, कार्तिक, मोहित, पल्लू, यूवी कुमावत सेक्टर 5 से, शिवलाल कुमावत, छगन देवी, राजकुमार, मोहित, चारभुजा मंदिर खेरादीवाड़ा से, विनोद जी कुमावत, नीलम कुमावत, गजेंद्र जी कुमावत, जया कुमावत, कुशल जी, कोमल कुमावत हिरण मगनी सेक्टर 5 से, लाल सिंह कुमावत, मीना कुमावत, मोहित, मीनाक्षी, कोमल खिरादीवाड़ा, रंगीला चौक, भैरू चौक से, और कैलाश मार्ग से है कमल सोनी, मोहन कसारा, शेर सिंह राजपूत, जवाहर नगर उदयपुर से बाबूबाई, भारती देवी हैं, श्वेता सोहालका और पूरा सोहालका परिवार है, और साथ में ये नाम शामिल हो रहे हैं मुस्तफ़ा कॉलोनी सलुम्बर से रजिया बानो, इनाया टेलर, अक्सा, इकरा, मोहम्मद सलीम शाह के, और ये श्रोता हैं महावीर जैन चित्तौड़ा, शांति नगर सेक्टर 5 से हैं घनश्याम लाल बडारिया, नानी बडारिया, नंदनी, पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया के भी, यवतमाल महाराष्ट्र से हैं संतोष खड़ से और विनोद खड़ से, और ये श्रोता हैं अशोक जी, सुशील जी, जब्बार जी, श्याम जी, हरिओम जी, बंवर जी, दिनेश मकवाना और पूरे सीनियर सिटीजन, इनका ये गुलाबबाग से हैं और उदयपुर से बहुत शुक्रिया, और ये श्रोता हैं अमृत सेन और इनका पूरा परिवार, रामचंद्र टेलर, सत्यनारायण मंडोबरा, शांतिलाल चौबीसा और मित्र मंडल है भिंडर जिला उदयपुर से, अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब इनके साथ, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, और अब अगले गाने की ओर बढ़ेंगे जो है कार्यक्रम का आखिरी गाना, और साथ में नाम भी शामिल करते चलेंगे। आन मिलो सजना है फिल्म का नाम, और नाम है पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा के भी।

नामों का इंतजार कर रहे श्रोताओं के लिए कुछ नाम हैं। शक्तिनगर उदयपुर से संतोष खतुरिया, कामिया खतुरिया, विकास खतुरिया, भानु खतुरिया, हिताक्ष खतुरिया, सिंधी कॉलोनी डूंगरपुर से निकिता खतुरिया, कशिश हसीजा, दीपक हसीजा, मीर हसीजा, कियू कुड़ी जोधपुर से रवीना खतुरिया, स्वरा चांदवानी, भरत चांदवानी, कियू चांदवानी और जय सालवी संतोष खतुरिया, यज्ञ सालवी दूतलय उदयपुर से।

खूबसूरत से गाने के साथ ही आज के सफर को विराम देंगे। ये था प्रोग्राम लिसनर्स चॉइस, जो आप सभी की पसंद से सजा, और इसे सुरीले गाने हमने सुने। इसी के साथ आपका प्यार और साथ हमेशा यूं ही बनाए रखिएगा। अभी वक्त चलने का, चलते हैं उदयपुर, फिर मिलेंगे।

0: लिसनर्स चॉइस, ये कार्यक्रम अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद से हम जुड़ जाएंगे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से।
1: चार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है।

0: भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट औनरिहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रूपये की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रूपये तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहिज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादों की महफिल सजाई है महेंद्र कपूर की आवाज से। पहला गीत हम सुनते हैं अमराज फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत से सजा हुआ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज दो सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये 3 चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल में लेते हैं छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यादों की महफिल में। आज हमने सजाई है यादों की महफिल महेंद्र कपूर की आवाज के साथ। तो आइए सुनते हैं किस्मत फिल्म का यह गीत, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे गीत फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी इसके गीतकार हैं, कल्याण जी आनंद जी संगीतकार।

0: गीतकार हसन कमाल के बोलों के साथ, संगीतकार रवि के संगीत के साथ सलमा आगा और महेंद्र कपूर की आवाज़ को हम सुन रहे थे निकाह फिल्म के इस गीत में।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल।

आके मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, कि मैं मौत से, कि मैं मौत से

लुधियानवी के बोल और एन दत्ते के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जो कि लिया गया है नवरंग फिल्म से। भरत व्यास के बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत और आवाजें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: गलियां। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस संदेश के पहले हम सुन रहे थे गीत धूल का फूल फिल्म से महेंद्र कपूर लता मंगेशकर की आवाज में साहिल।

0: ¡Vamos, Gini!
1: देख चंद्रमा आता है, रात आती है, कहीं तेरी मेरी बात भी आती न।

0: हम सुन रहे थे गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अनजान के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने याद किया महेंद्र कपूर को उनकी आवाज़ के साथ।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सुरीला सफर तय कर रहा है एक बढ़िया मजबूत सी बात को और बड़े प्यारे से जज्बात को, और इन्हीं बात और जज्बात के बीच में बात आती है कि सुरीला सफर में हम जो इबारत देते हैं, आज इबारत कौन सी है? तो आज की इबारत है कि वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है। वो सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कनें लिखता है, एक गीतकार अपनी कलम से जिंदगियां लिखता है। और अब आपको क्या करना है, देखना है, सोचना है, बताएं और अपने पसंदीदा गीतकार के बारे में सोचें और लिखें अवश्य ही, और उनका कौन सा गीत सुनना आपको पसंद है ये भी अगर आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आज की इस इबारत भरे सुरीला सफ़र में हमने जो इबारत दी उस पर बहुत सारे विचार आए हैं, और प्रत्येक विचार अपने आप में उम्दा है, सटीक है, सत्य है, और उनमें से कुछ विचार जो हैं वो हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की प्रश्नवाची इबारत स्वयं ही संपूर्ण उत्तरित है। गीतकार, कवि, शायर और नगमा निगार वो हस्तियां हैं जो अपनी भावनाओं को शाब्दिक रूप से रचनात्मक और सृजनात्मक आवेश की सृष्टि कर रचनाओं और पाठकों का दिल के दिल में घर कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं आज की संपूर्ण इबारत ही दिल की धड़कन ही लिखती है। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि गीतकार केवल शब्द नहीं लिखता, वह अपने भाव, अनुभव, संवेदनाओं को गीतों में पिरोकर लोगों के दिलों तक पहुंचाता है। गीतकार के लिखे गीत कभी प्रेम का संदेश देते हैं, कभी जीवन की सीख, कभी उम्मीद, कभी प्रेरणा का सहारा बनते हैं। वो अपनी कलम से ऐसी दुनिया रचता है जिसमें हर श्रोता अपने मन की कहानी खोज लेता है। इसलिए गाने केवल मनोरंजन के नहीं, हमारे जीवन की धड़कनों के संगीत भी होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे एक श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों की वो जो विधाएं हैं उनको बड़े अच्छे से सजा दिया है। लिखते हैं रोमानी गीत, हसरत जयपुरी, शकील बदायनी, साहिर जी, ये आप बताइएगा ये सही लिख रहे हैं नहीं। दार्शनिक जीवन दर्शन, शैलेंद्र गुलजार, आनंद बख्शी, प्रगतिशील विचारधारा, कैफे आजमी, देशभक्ति, कवि प्रदीप, गोपालदास, नीरज, प्रेम धवन, सुगम और विविध, मजरूह सुल्तानपुरी, राजेंद्र कृष्ण, भक्ति, पंडित नरेंद्र शर्मा, भरत व्यास, पंडित इंद्र जी, बिल्कुल बहुत सारे इन्होंने बातें लिखी हैं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में जितने भी गीतकार, शायर और कवि हैं सब अपनी जगह महान थे, सब किसी एक को पसंद करना कठिन है, और ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने लिखा है कि कठिन है। हमारे श्रोता लिखते हैं बोलती फिल्में आने के बाद फिल्मों में गीतों का प्रचलन शुरू हुआ और धीरे धीरे यही गीत फिल्मों की कामयाबी की गारंटी बनने लगे। गीतकार और संगीतकारों की मांग बढ़ने लगी, फिर गीतकार कवियों शायरों के सामने चुनौती आने लगी। कोई एक लक्ष्मण रेखा के अंदर उनको रहना पड़ा, गीत कहानी सिचुएशन के हिसाब से गीत लिखने पड़े, और गीतकारों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक से बढ़कर एक गीत लिखकर मिसाल पेश की है। गीतकार शब्द कागज पर नहीं उतरते, वे सीधे दिल में उतर जाते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। उनकी रचनाएं सुनकर लगता है जैसे वे हमारे अनकहे एहसासों को आवाज दे रहे हों। अच्छा गीतकार सिर्फ गीत नहीं लिखता, वह यादें, भावनाएं, रिश्तों की खुशबू में पिरो देता है। ये बात बड़े अच्छे से वह लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं एक प्यारी सी बात कहेंगे कि गीतकार वह दीपक है जो शब्दों की लौ से भावनाओं का संसार रोशन कर देता है। क्या बात है, कितना बढ़िया लिखा है ना। और इस बढ़िया सी सोच को, इस बढ़िया से विचार को पढ़ने के साथ ही हम आपको गीत सौंपने वाले हैं। और पहला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं, उस गीत में पूरा जो गीत है उस गीत में कोई एक पंक्ति होगी जो आपको जाकर दिल में चुभती होगी या दिल को सुकून देती होगी। तो बताइएगा वो पंक्ति कौन सी है, वो लिखकर हमें भेजिएगा, और उसके साथ ही इस गीत के संगीतकार का नाम भी बता देंगे तो अच्छा लगेगा। तो बताइए इस गीत की कौन सी पंक्ति आपको अच्छी लगती है, साथ ही संगीतकार का नाम भी।

अपनी तो आंख एक है, उसकी है हजार। ये कौन चित्रकार है, ये गीत हम सुन रहे थे बूंद जो बन गए मोती फिल्म से मुकेश की आवाज में। गीतकार भरत व्यास ने इसे लिखा है और सतीश भाटिया ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये खूबसूरत से नगमे जो लिख जाते हैं या जिनने अपनी धड़कनों को शायद पिरो दिया है शब्दों के माध्यम से, कितना खूबसूरत है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बहुत से भी हमने पूछा था कि आपकी पसंदीदा पंक्तियाँ कौन सी हैं, तो हमारे श्रोता लिखता है ध्वजा से हैं खड़े हुए ये वृक्ष देवदार के। आहा कितनी बढ़िया है ना। हमारे श्रोताओं ने कवि की कल्पना का चमत्कार, यह उम्दा लाइन जहन में आती है। जी बिल्कुल। हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये कौन चित्रकार है, ये कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंख एक है उसकी हजार है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने बताया कि जितेंद्र पर फिल्माया गया कवि प्रदीप की यह बेहतरीन रचना है और संगीत सतीश भाटिया का। हमारे श्रोता ने पसंदीदा पंक्तियों में तो पूरा ही लिख दिया, तपसियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियाँ, ये सर्प सी घुमेर दार घेर दार घाटियाँ, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए रुकश देवदार के, गाड़ी चाहिए गुलाब की बगीचे ये बाहर की, ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है। जी बिल्कुल। कणकण से झांकती तुम्हें छवि विराट की, अपनी तो आंखें उसकी हजार हैं। जी ये पंक्ति बहुत

खूबसूरत हैं जो सबको पसंद आ रही हैं। हमारे श्रोताओं ने, अच्छा आप हमारी हवाइन गिटार के बारे में बता रहे हैं जो हमने शुरुआती जो फिलर बजाया था उसके बारे में आप बात करें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि इसकी हर पंक्ति पसंद है। जी बिल्कुल, हमें भी हमारे श्रोता ने बताया कि बहुत खूबसूरत गीत है और प्रकृति का बड़ा प्यारा सा चित्रण है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, बेहद खूबसूरत पंक्ति है। जी बिल्कुल, हम कोई एक शब्द को पकड़ सकते नहीं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, गीतकार का लिखने का तरीका अलग अलग होता है, या कहते हैं कि गीतकार अपने मूड के हिसाब से लिखते हैं। उनकी लिखनी से मोती टपकते हैं जो हमारे हृदय को छू लेते हैं। कितना खूबसूरत गीत हमने सुना है। अब इस गीत के बाद अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनके प्रिय गीतकार जो हैं वो साहिर लुधियानवी हैं। मिर्ज़ा गालिब अगर जिंदा होते तो साहिर की शायरी सुनकर वाह वाह कह उठते, ऐसा उनका कहना है। और चोट खाया प्रेमी हो, सभी तरह के गीत लिखे उन्होंने, जिंदगी भर साथ निभाने वाला, बहुत बहुत प्यारे प्यारे गीतों के बारे में उन्होंने कहा है। और उसके बाद हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्मी दुनिया के सभी गीतकारों ने अपने खास अंदाज में बेमिसाल गीत दिए हैं, उनमें से एक चुनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, हमें भी बहुत मुश्किल है। अब 1957 में आई फिल्म साधना में मर्द को जन्म देने वाले गीत के लिए उन्होंने बहुत प्यारा गीत दिया कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। ये गीत सुनकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये गीतकार अपनी कलम से क्या खूबसूरती से उस बात को, उस भावना को निकाल देते हैं जिसे कहना शायद शब्दों में कठिन पड़ जाए, शायद गद्य में कठिन पड़ जाए, पर पद्य में बड़े प्यार से लिख देते हैं। हमारे श्रोता ने बताया कि जो इनके गीतों के बारे में जब वो बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, सिर्फ 3 शब्दों में लंबी बात है और शब्दों का चित्रण निरूपण विश्व को रचने वाले रचनाकार की प्रतिभा का बहुत बड़े तरीके से हम आकलन करेंगे। और गीत रचना किसी संगीत धुन और भावनाओं का गहरा पुल है और अनुभवों को छू लेती है। और सच बात है, गीतकार शब्द नहीं लिखते, हमारे श्रोता लिखते हैं, वे शब्दों के जादूगर होते हैं जो चंद शब्दों में पूरी दास्तान पिरो देते हैं। हमारी खुशियां, आंसू, यादें, सब कुछ अनमोल म्यूजिकल बैकग्राउंड बना देते हैं। आमजन कहीं कह नहीं पाते वो बातें गीतकार, कवि और शायर अपने शब्दों में कह देते हैं। सही बात है। और इन्होंने तो, एक और हमारे श्रोता ने तो बहुत सारे गीतकारों के नाम भी लिखे हैं और हम उन सब गीतकारों की उस कलम को प्रणाम करते हैं कि क्या बढ़िया लिखा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वह सोच रही हैं कि अब वह लिखना बंद कर देंगी, यानी सिर्फ सुनेंगी। ऐसा मत कीजिए, लिखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं, बाकी समय जो आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं वो शायद उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वह आपकी ही कलात्मकता को बढ़ा रहा है, ऐसा हमें लगता है। तो आप ज़रूर पहुँचाइए अपनी अनुभूतियाँ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि व्याकरण शब्दावली ही नहीं, रचयिता के व्यक्तिगत अनुभव, अनुभूतियाँ, भावनाओं, जीवन का सार होता है। गीतकार जिंदगी लिखा करते हैं, शब्द नहीं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। इन्हीं गीतकारों को याद करते हुए अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बस मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगला गीत जो हम आपको सौंप रहे हैं वो साहिर लुधियानवी की कलम से है। और आपको साहिर लुधियानवी का कोई शेर, कोई कविता, कोई बोल इस गीत से हो या ना हो चलेगा। कोई भी शेर अगर पसंद आता है तो आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक सुनिए ये बहुत प्यारा सा गीत जो कि लिया है कभी कभी फिल्म से। बस इसके गायक का नाम बता दीजिएगा और बताइए साहिर लुधियानवी की कोई शेर, शायरी या कोई कविता।

0: फिल्म कभी कभी से यह गीत हम सुन रहे थे, साहिल लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत और गाया मुकेश ने। और यही प्रश्न तो हमने आपसे पूछा था और इसके साथ हमने एक प्रश्न और पूछा था। हमने कहा था कि साहिल लुधियानवी की कौन सी पंक्ति है जो आपके दिल को छूती है। कभी कहीं और पढ़ी होगी आपने तो आपने लिखकर भेजी है कि अपनी तबीयतों का कोई गम नहीं मुझे, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। आह क्या बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मशरूफ जमाना क्यों वक्त अपना बर्बाद करिए, दिल लाइन दिल को छू जाती। जी बिल्कुल, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। जी बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि साहिर की एक लाइन उन्हें पसंद है, जो बात तुझमें है तेरी तस्वीर में नहीं। जी, कल और आएंगी नगमाए खिलती कलियां, चुनने वाले मुझसे बेहतर, कहने वाले तुमसे बेहतर, सुनने वाले। ये लाइन हमारी श्रोताओं को पसंद है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैंने कक्षा 9वीं में देखा था इस फिल्म को और नौजवान दिल उस समय शायरी सुनकर धड़क गया था। सही बातें, होता है ऐसा। और हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। ऐसे करके हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी अपनी पसंद के शेर हम तक पहुंचाए हैं जो उन्हें पसंद हैं। इसके साथ ही और भी कई सारे आए हैं, उन्हें बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, संसार की हाई शर पर बस इतना फंसाना है कि धुंध से आना है। बहुत सही बात आपने लिखी, बहुत बढ़िया शेर आप लिख रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें जो लिखी हैं इन सब गीतों और रचनाकारों के लिए, वो लिखते हैं कि गीत आम इंसान के जीवन के अनुभव छिपे होते हैं, अपनी कल्पना अनुभव से रचनाएं करते हैं और खुद की कहानी जिंदगी का कोई हिस्सा नजर आता है। सही बात है। आज की इबारत पंक्तियों का भावार्थ बहुत गहरा महत्वपूर्ण है। कवि गीतकार संवेदनशीलता उसकी कलम की ताकत रेखांकित करता है। वे सिर्फ शब्द नहीं दिल की धड़कने लिखता है। यह दर्शाती है कि एक सच्चा गीतकार कागज पर केवल शब्दों का जाल नहीं बुनता, बल्कि जज्बात, उसकी धड़कने, प्यार, दर्द और उम्मीदों को पन्नों पर उतारता है। इतनी अच्छी बातें चल रही हैं तो हम सोचते हैं एक संदेश एक और गीतकार का आपको सुनवा दिया जाए। सुनिए ये गीतकार क्या कहने के लिए आने वाले हैं अपने विविध भारती पर।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था। एक

0: गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर और ये सुरीला सफर चल रहा है गीतकारों की कलम के साथ। हमारे श्रोताओं ने बहुत सही लिखा है, वो लिखते हैं कि गीतकार कैसे पसंद करते हैं। हमारे लिए तो सभी गीतकार पसंद हैं, हर कोई दिल में रहता है, अनुभूति करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। और हमारे श्रोता ने कहा कि वो आज गुलजार, इतना कठिन है उनको चुनना, लेकिन फिर भी वो गुलजार को चुनेंगी और उसके साथ उन्होंने अपने पसंद का गीत भी दिया है। ऐसे ही हमारे कई सारे श्रोताओं ने गुलजार को पसंद किया है। और साथ ही हम बात कर रहे थे साहिल लुधियानवी के बारे में, तो उनके लिए भी कुछ उनके लिखे हुए कुछ नगमे कुछ शेर हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। किसी ने तो लिख दिया कि साहिल लुधियानवी की एक लाइन नहीं बल्कि हर बात उन्हें अच्छी लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत सारी बातों के बीच एक बहुत प्यारा शेर आया कि हज़ार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, हज़ार वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनी बड़ी बात कही है ना। और इसके साथ हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें साहिल के लिए लिखी हैं। वो लिखते हैं कि उनका अभी ना जाओ छोड़कर उन्हें पसंद है और ये गीत सभी को पसंद है। हालांकि बहुत असाधारण भावनाएं लिखते हैं और ये एक शायर नहीं, ऐसे कई लोग लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपनी तबाहियों का मुझे कोई गम नहीं, तुमने किसी के साथ मोहब्बत निभा तो दी। ये शेर शायद मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बता दीजिए ये गीतकार कौन है और इन गीतकार को कितने पुरस्कार मिले हैं। कुछ नहीं बताना, इतना ही बताना है इस गीतकार का नाम और इनको मिले हुए पुरस्कारों के बारे में।
4: नहीं नहीं,

हम सुन रहे थे मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, और ये सपने सच में गीतकार हमारे लिए चुनते ही है ना, जाने कहाँ से अपनी कलम में इतनी ताकत लाते हैं और बहुत सुंदर से शब्दों को चुनकर हमारे लिए एक बकिया सजा देते हैं। हमारे श्रोता कहते हैं कि सभी गीतकार उन्हें पसंद है, हर किसी की अलग कला होती है, उनके द्वारा उनके ही मन मस्तिष्क में सुंदर विचारों को कविता का भाव देने की लेखनी से पन्ने पर रची जाती है। पता नहीं कितना समय लगता होगा उन्हें एक रचना पूरी करने में, इसका अनुमान हम साधारण लोग नहीं लगा सकते। जी बिल्कुल सही बात है, गीतकार फिल्मों में विचार संवाहक कह सकते हैं। कई बार फिल्मों के नाम स्टारकास्ट से फिल्म की कथा वस्तु की कल्पना नहीं की जा सकती, परंतु गीतों से उसके बोलों से फिल्मों के विषय के बारे में पता चल जाता है। बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात सच है कि जो गीतकार है ना, वो गीतकार पूरी फिल्म का जायजा करा देते हैं, बता देते हैं कि कहाँ फिल्म है, कहाँ कौन सा बदलाव हो रहा है, और कई बार तो फिल्म के नाम के गीत भी लिख देते हैं। और एक और बड़ी बात है कि छंदबद्ध करना, यानी उन्हें हिंदी व्याकरण का भी, या जिस भाषा में वो गीत लिख रहे हैं उस भाषा की व्याकरण का भी इतना ज्ञान होता है कि वो उसे छंदबद्ध कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मीटर में बिठा सकते हैं। तो ये बढ़िया बात होती है गीतकारों की। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये जो गीतकार हैं इनका नाम बता दीजिए और इनकी उपलब्धियाँ बता दीजिए, तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये जो फिल्म है ये आनंद फिल्म से है जो हम आपको बता रहे हैं, मुकेश ने गाया, सलील चौधरी ने संगीतबद्ध किया, और हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये गीत गुलजार ने लिखा है। बिल्कुल सही बताया आपने, और आपने बताया कि गुलजार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, रजनीकंदा के लिए राष्ट्रीय नेशनल पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ये हमारे श्रोताओं ने अलग अलग जगह पर लिखे हैं और वो सब मिलाकर मैं आपको बताते जा रही हूँ। हमारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें ग्रेमी अवार्ड मिला है, और उसके साथ ही उन्हें साथ में नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, 22 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं, 5 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले हैं। हमारे श्रोताओं ने कितना ज्ञान है आपको, कितनी सारी चीज़ें आप बता देते हैं, और ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनके नाम पर है। इतने सारे अवार्ड्स के साथ में हमारे उनके लिखे गीतों को वहाँ तक पहुँचाना, विश्व स्तर तक पहुँचाना, वह भी बड़ी बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सच है कोई एक दो गीतकार में सफ़र सुहाना कहाँ होगा, योगेश जी, माया गोविंद, सावन कुमार जी, जाने कितने सारे गीत हैं, रोते हुए को हंसाने वाले निदा फाजली जी, और पूरी हीर राजा पद्यबद्ध करने वाले कैफी आजमी जी, सच बात है कितना, कितने सारे लोगों को हम लेकर आएंगे, पर प्रयास करेंगे जितना अधिक ले सकें। चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ जल्दी से, और ये जो गीत है ये बहुत खूबसूरत सा है, और इस गीत को आपको सुनना है, और इस गीत को सुनने के साथ बताना है कि ये गीतकार कौन है, है ना, और गीतकार के साथ संगीतकार कौन है, और इनका

लिखा कोई भी वाक्य या कोई भी पद अगर आपको पसंद आया है, कोई कविता या इसी गीत से कहीं से कुछ भी, तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ये गीतकार गोपाल दास नीरज है। तो गोपाल दास नीरज की किसी भी रचना को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, और ये गीत सुनिए, बताइए इसके संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे कन्यादान फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नीरज के बोल, गोपाल दास नीरज के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, तो आपने बताया शंकर जयकिशन इसके संगीतकार हैं। बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। इसके साथ हमने कहा था कि आप बताइएगा कि आपको कौन सा क्या पसंद है गोपाल दास नीरज की कलम का, तो हमारे श्रोताओं ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। रचनाकार के हृदय में विषय वस्तु के अनुरूप शब्द ही वैसे स्फुटित होते हैं जिन्हें वो कागज पर तुरंत

तो केरना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा ही उनका स्वाभाविक स्वभाव हुआ करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता ने लिखा कारवां गुजर गया उन्हें बड़ा पसंद है और उसके तो बहुत सारे बोल भी उन्होंने लिखे हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपालदास नीरज की कलम से जो उन्हें शेर पसंद है, अब तो मजहब से कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। बहुत बढ़िया, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, ये हमारे श्रोता बताते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं गोपालदास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद हैं, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपालदास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा

गोपालदास नीरज के लिखे गीत बहुत पसंद हैं, शर्मीली और प्रेम पुजारी के गीत जी हमको भी बड़े पसंद हैं। उसके साथ ही हमारे गोपालदास नीरज के लिए लिखते हैं कि साहित्यकार फिल्मी फिर फिल्मी गीतकार हैं, कविताएं और साहित्य के साथ वो चले हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता में जो एक बहुत बढ़िया सा शेर, बहुत बढ़िया सी पंक्तियाँ आई थी गोपालदास नीरज के बारे में, हमारे श्रोता लिखते हैं कि गोपालदास नीरज में को मेरे पापा को सबसे के सबसे पसंदीदा कवि हैं, उनके कई कवि सम्मेलनों की रिकॉर्डिंग भी उनके पास में है। जी बिल्कुल, गुलजार के बारे में हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि गुलजार ने एक नायाब तरीके से गाना लिखा है जो अपने आप में संगीत का अनूठा गीत बन गया है, जिसमें दो अंतरे में एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, इस गीत के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन पहले और दूसरे अंतरे में सिर्फ शब्दों की जगह भूतकाल और वर्तमान काल का प्रयोग का प्यार को उभारा गया है, और वो गीत है वो शाम कुछ अजीब थी। बिल्कुल सही बात है, ये बढ़िया बात आपने, बढ़िया जानकारी आपने दी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्वप्न झरे फूल से गीत शुभे चूल से, जी वही कारवां गुजर गया गीत सबको बड़ा पसंद है। ये जो गीत है इन सब गीतों के साथ में एक बढ़िया सा शेर आया है कि गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, गीत अनमन है गजल चुप है रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। बहुत बढ़िया, ऐसी बढ़िया बातें आप अपने यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तक भेज रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिछड़ने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को। बिल्कुल सही बात है, कुछ बातें कटु सत्य होती हैं जो गीतों में हमें ऐसा लगता है कि बड़ी रोमानियत भरी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। जी कभी कभी ये बढ़िया बात लिख देते हैं। साहिल लुधियाने की पंक्तियां लिखते हैं, तुम मुझे भूल भी जाओ ये हक है तुमको, ये उनकी पंक्तियों के बारे में लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार कविता पाठ करने के लिए आए थे गोपालदास नीरज, मम्मी वहाँ पर स्टूडेंट यानी शिष्या थी, और इतनी ज़बरदस्त फ़ैन हुई कि उन्होंने मुझे झरे फूल का गाना सुनाया और रेडियो पर ये उन्हें बड़ा पसंद आया था। यही बात है कि माता पिता अपने बच्चों में संस्कार देते हैं, और वही संस्कार शायद आज आपको विविध भारती के साथ में जोड़कर रखे हुए हैं। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, और वो प्रश्न है कि गीतकार परकाया में प्रवेश कर उनके भावों को लिखते हैं, परकाया यानी किसी और व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके गीतों को लिखते हैं, वरना स्त्री के मनोभावों को वो कैसे लिख सकते हैं। प्रश्न बहुत बड़ा है, सच बात है। अगर पुरुष गीतकारों को देखा जाए तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, उसके साथ ही अगर महिलाओं को देखा जाए तो रानी मलिक ने भी चुरा के दिल मेरा कुरिया चली ये गीत पुरुष के लिए लिखा है, कैसे लिखते होंगे ज़रा विचार करते हैं। तब तक सुनते हैं ये अगला गीत जो बड़ा सुंदर सा है, दोस्ती फिल्म से है ना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल हैं, पर इस सब के साथ में आप बताइएगा मजरूर सुल्तानपुरी की कौन सी रचना है जो आपको मजबूर कर देती है बस पर बस ही उनको सुनने के लिए या उनको समझने के लिए, ज़रूर से बताइएगा। तब तक सुनते हैं ये वाला गीत।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत। हम आपको बता चुके हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। और आपसे हमने पूछा था कि बताइए मजरू के बारे में जो आपके दिल में दिल कहता है या आपकी कलम कहती है। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वे एवरग्रीन रहे। उन्होंने केएल सहगल के ज़माने से शाहजहां 1946 से लिखना शुरू किया। नौशाद, एसडी वर्मन, ओपी नैयर से होते हुए आरडी वर्मन, आनंद मिले, जतिन ललित, कयामत से कयामत तक जो जीता वही सिकंदर के तौर तक सक्रिय रहे। इस दरमियान शायद ही कोई संगीतकार होंगे जिनके लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे। 5 दशकों से ज़्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी शायरी को कभी बूढ़ा नहीं होने दिया। कितनी बढ़िया, कितनी उम्दा बात आपने साहिल लुधियानवी के बारे में कही है। तो चलिए अब हम मजरू सुल्तानपुरी के बारे में कही है और अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कहा था कि मजरू की कुछ रचनाओं को या किसी भी रचना को जो आप पसंद करते हैं हमारे साथ साझा करें। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि अच्छा पहले लिख चुके हैं ये कि मजरू सुल्तानपुरी उनके पसंदीदा शायर और गीतकार हैं। उनकी सबसे बड़ी बात है कि लिखने के लिए उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। जेल में भी रहना पड़ा और उनका गीत लिखा, तुम जाओ कहीं तुमको अख्तियार, हम जाएं कहाँ सजना, उनका पसंदीदा गीत है। बिल्कुल हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो नीरज गोपालदास नीरज के 2 बार कवि सम्मेलन सुन चुके हैं। एक बार कवि सम्मेलन तो सुबह 4 बजे तक बैठा रहा, नीरज लगभग 2:30 बजे माइक संभालने गए और 4 कब बज गए पता नहीं पड़ा। 1986-91 में गोरखपुर कचहरी क्लब मैदान में महाराणा प्रताप शिक्षा

के बुलावे पर वो आए थे। मसरूर सुल्तानपुरी कुंदन लाल सहगर के से लेकर सोनू निगम जी तक, सोनू निगम तक 5 पीढ़ियों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं और सभी सुने हैं उन्होंने। बहुत बढ़िया बात है। दोस्ती फिल्म के लिए वो लिखते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जवां जवां हमारी ना समझा यहाँ कोई मजरूह, हम अजनबी की तरह अपने ही वतन में रहे। क्या बढ़िया बात लिखी है, क्या बढ़िया शेर कहा है। मजरूह के लिए वो लिखते हैं कि गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल की बात बड़े प्यार से कर रहा हो, ना बनावट है, बस है अपनापन। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इतने सारे बातों को हम अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम आपको अगला गीत दे दे रहे हैं जल्दी से। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, रहे ना रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सवा मांगे माफा में। बिल्कुल सही, बहुत प्यारा सा गीत आपने बताया, लेकिन अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं। बताइए इसके गायक कौन है और गीतकार कौन है। हालांकि मैं गीतकार के बारे में पहले ही पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि गीतकार, पसंदीदा गीतकार आनंद बख्शी हैं, उनकी रचनाएं पसंद हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जटिल और भारी भरकम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बोलचाल की भाषा में गीत लिखते हैं और इनके कई सारे गीत इन्हें पसंद है जिनके बारे में इन्होंने बताया है। और वह कहते हैं बख्शी की, आनंद बख्शी की अद्भुत प्रतिभा को सलाम किए बगैर रहा नहीं जाता। बिल्कुल सही बात है। अगला गीत सुनिए, बताइए इसके गायक कलाकार कौन है, जल्दी से बताइएगा। और अगर इनकी कोई रचना पसंद है तो साझा कीजिएगा, स्वागत है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा प्यारा सा, जिसे लिया था फिल्म जो कि है फिल्म बालिका वधू से। और हमने आपसे पूछा था कि इसके गायक कलाकार कौन है। हालांकि इसके गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीतकार राहुल देव बर्मन है। और हमने आपसे इसके गायक कलाकार के बारे में पूछा और आपने सही उत्तर दिया, अमित कुमार। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हमारे पास बहुत सारे बहुत मीठे संदेश आए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में पैदा हुए आनंद बख्शी की हालात से कभी समझौता नहीं किया। बंदूक में कलम को देखा, शेरो शायरी के फन को जिंदा रखा। बंदूक में कलम को देखने का मतलब है वो एक सैनिक थे और उसके बाद शायरी की दुनिया में आए और 30 मार्च 2002 को दुनिया से अलविदा कह गए। आज भी उनके बेशकीमती नगमे हमारे जबां पर हैं। देखिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, रविंद्र जैन, संतोष आनंद, इंदीवर पंडित, नरेंद्र शर्मा, जावेद अख्तर, कैफी आजमी, डीएन मधोक, शकील बदायूनी, समीर अंजान, निशात कामिल, मनोज मुंतजिर, प्रसून जोशी, कौसर मुनीर, हुसैन हैरी, हसन कमाल, जानिसार अख्तर, रमेश शास्त्री, पुरुषोत्तम, पंकज, केदार शर्मा, वर्मा मलिक, अभिलाष, गौहर कानपुरी, रवि कुमार, बरामंकी, अमिताभ भट्टाचार्य, स्वानंद किरकिरे, रानी मलिक और जाने कितने सारे अभी गीतकार हैं जिनको आज हमने नहीं लिया है। परंतु क्या है कि अब जो है वो है, समक्ष है। तो आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफ़र का अंतिम गीत मैं खुद भी चुनाव नहीं कर पा रही हूँ कि आपको कौन सा सुनवाया जाए, पर ये वाला जो गीत है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। तो उसके पहले ये बड़ा खूबसूरत सा नगमा है जिसकी एक पंक्ति, एक छोटी सी पंक्ति को आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चलते हैं इस अगले जो आज का अंतिम गीत है उसकी तरफ, क्योंकि इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे हैं।

गीत आप समझ ही गए होंगे कौन सा है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं और दिल को हृदय को छूने वाले गीत हैं, कभी और किसी दिन सुनाएंगे। पर आज का, आज की शाम का यह अंतिम गीत जिसे लिखा है गुलजार ने और सदमा फिल्म से है, सुरेश वाडकर की आवाज़ में, इलैयाराजा का संगीत है। आइए सुनते हैं इस गीत को, आज्ञा दीजिए। शायद आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो, खुशियाँ आई हों तो बहुत सारी बधाई, आपका जीवन मंगलमय हो।

गीतकार शैलेंद्र की उस रचना को उधार के रूप में रखते हुए मैं कभी और आपको जरूर सुनाऊंगी। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सुरीला सफर से। कार्यक्रम सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनेस, हिंदी अनुवाद किया है जयंत पात्रीकर ने, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 33वीं कड़ी।

बारिसाल की घटना का अंग्रेजी हुकूमत पर बहुत दूरगामी परिणाम हुआ। निहत्थे लोगों पर इस प्रकार निर्ममता से लाठीचार्ज किए जाने की ये पहली घटना थी। उसके बाद ऐसी ही अनेक छोटी मोटी घटनाएं होती रहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश राज सत्ता पर शैतान शाही की मुहर लगा दी। इन सब का परिणाम ये हुआ कि बारिसाल अधिवेशन के एक

महीने बाद 14 मई 1906 को फुलर को वंदे मातरम शब्दों पर से और गीत पर लगी पाबंदी हटाने की घोषणा करनी पड़ी। ये समाचार मिलते ही बारिसाल अधिवेशन के शिल्पकार अश्विनी कुमार दत्त के नेतृत्व में 10,000 से भी अधिक जनसमुदाय ने बारिसाल शहर में एक विशाल जुलूस निकाला। सब लोग गा रहे थे, बोलो सिंहो नादेर जय जय राबे वंदे मातरम, उठुक भवे शुनुक सबे मंत्र गंभीरतम जय जय वंदे मातरम।

0: चलो सिंह स्वर में गाते हैं जय जय वंदे मातरम। संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो यह मंत्र वंदे मातरम। इस धीर गंभीर वातावरण में हम पुनः पुनः उच्चार करें जय जय वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: बारिसाल की जनता ने फिर एक बार सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आमंत्रित किया। जिस भूमि पर आपको अपमानित किया गया उस भूमि को आप स्वयं आकर अपने चरण कमलों से पावन करें, ऐसी विनती अश्विनी कुमार दत्त ने सुरेंद्रनाथ जी को की। फिर एक बार बारिसाल की सड़कों पर लगभग 50,000 लोगों का समूह एकत्रित हुआ। वंदे मातरम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जय, ऐसी घोषणाएं गूंजने लगी। बीएम हॉल में मोताहर हुसैन की अध्यक्षता में हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के सत्कार समारोह में गीत गाया गया।

अर्थात लाठी के क्रूर घाव झेलने वाली बारिसाल की भूमि आज पुण्यवान हो गई है और वंदे मातरम गाते हुए वो माँ का जयगान कर रही है।

इस सभा पर फुलर ने कोई रोक नहीं लगाई। हालांकि हल्का सा विरोध करने का प्रयास जरूर किया गया, परंतु इस महीने भर में बारिसाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जो जनक्षोभ पूरे भारत में उमड़ कर आया, उससे फुलर मन ही मन घबराया हुआ था।

0: बारिसाल की घटना की समूचे देश के समाचार पत्रों में कड़े शब्दों में आलोचना की गई। सरकार के समर्थक कहे जाने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया इस अखबार में 28 अप्रैल 1906 को लिखा गया,
1: बारिसाल की इस घटना से राष्ट्रीय स्वाधीनता की जंग पर दूरगामी परिणाम हुए हैं। पुलिस के अत्याचार ने न केवल बंगाल को बल्कि पूरी दुनिया को ही जगा दिया है।
0: बारिसाल की घटना के पांचवे दिन अमृत बाजार पत्रिका में अंग्रेजों को चेतावनी दी गई।
1: बारिसाल की घटना की यदि पुनरावृत्ति हुई तो लोग प्राणों की परवाह किए बिना प्रतिकार करेंगे।
0: द बंगाली, इस अंग्रेजी पत्रिका ने लिखा,
1: लोगों के धैर्य की भी एक सीमा होती है। पश्चिम बंगाल की जनता को पीटने के लिए उठी यह लाठी किसी दिन सरकार के ही माथे पर टूट पड़ेगी।
0: क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्थान अरविंद घोष के क्रांतिकारी भाई बारिंद्र कुमार घोष ने युगांतर में स्पष्ट रूप से लिख दिया,
1: इस अत्याचारी घटना के विरुद्ध भारत की 30 करोड़ जनता के हाथ बल का सामना बल से ही करने के लिए ऊपर उठने चाहिए।
0: वार्ता ने लिखा,
1: शस्त्र का उत्तर शस्त्र से ही दिया जाना चाहिए। पकड़े जाने पर

0: एक छोटा सा कीट भी डंक मारता है तो फिर हम इस देश के वासी कब तक अपना संयम बनाए रख सकते हैं। स्वदेशी आंदोलन अब एक नए मोड़ पर आ गया है। हम सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि मनुष्य रूपी राक्षस यानी अत्याचार करने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सजा देकर उनका घमंड नहीं तोड़ा गया तो एक दिन ऐसी आग भड़केगी कि उसे बुझाने के लिए हजारों लोगों का खून बहाना पड़ेगा।
1: छह को बंगाली इस समाचार पत्र ने लिखा,
0: 10,000 से भी ज्यादा हिंदू मुसलमानों ने बड़ा जुलूस निकाला। इस जुलूस में अल्लाह अकबर और वंदे मातरम दोनों घोषणाओं का जयघोष चल रहा था।

0: फुल्लर के अधीन होकर ढाका के नवाब ने इस बारिसाल मामले में सरकार की मदद की थी। नवाब के दादा अब्दुल गनी हिंदू मुस्लिम भेद नहीं मानते थे। दादा की ख्याति भूलकर नवाब ने सरकार की मदद की। बाद में अंग्रेजों द्वारा उनकी लाचारी का फायदा उठाने पर वे जागे। उसके बाद फिर कभी स्वतंत्रता संग्राम के विरुद्ध ब्रिटिश राजसत्ता का साथ नहीं दिया। ढाका के नवाब का अपवाद छोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन बारिसाल के निमित्त एक बार फिर अंग्रेजों को हुए। मौलवी लियाकत हुसैन बंगाल के एक सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बंग भंग के निर्णय से उन्हें भी धक्का लगा था। रविंद्रनाथ के राखी बंधन के आह्वान का जवाब देते हुए वे भी इस उत्सव में शामिल हुए। अपने हर कार्यक्रम में वंदे मातरम ये गीत वे श्रद्धा से गाते थे।
1: बारिसाल की घटना के कारण अंग्रेजों की बची खुची छवि भी धूल में मिल गई। कई जुल्मी आदेश अंग्रेजों को वापस लेने पड़े। मीठी मीठी बातें करके सरकार स्थिति संभालने का प्रयास करने लगी। बारिसाल प्रकरण ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा का विषय बना। वंदे मातरम पर पाबंदी लगाने से ही उस आंदोलन को और अधिक धार मिली और इस पाबंदी के हुक्म से सरकार का ही अधिक नुकसान हुआ। इसका एहसास भारत मंत्री मॉर्ले और वॉइसराय मिंटो को हुआ और फिर एक बार मॉर्ले मिंटो सुधारों के रूप में सुधार का लालच आगे किया गया। पर ऐसे दांव पेचों से कोई भी बदलाव नहीं होने वाला था।
0: वंदे मातरम का प्रभाव पूरे भारत में फैला हुआ था। वंदे मातरम की चिंगारी ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर ही दी थी। अब संविधाएं भी पढ़ने लगी थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलगुरु रह चुके आशुतोष मुखर्जी ने फुलर के खिलाफ वायसराय से शिकायत की। उससे नाराज होकर फुलर ने लॉर्ड मिंटो को अपना इस्तीफा भेज दिया और वो 3 अगस्त 1906 को मंजूर भी हो गया। कर्जन के बाद कर्जन का वरदहस्त प्राप्त अत्यंत अहंकारी अधिकारी फुल्लर का भी इस्तीफा मिलने के कारण आंदोलनकारियों का बल और बढ़ गया।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघुरूपक श्रृंखला की ये थी 33वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय।

0: वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग दिया किरण बंग और समृद्धि नाइक ने, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन के सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मैक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में

0: स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसिलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम

0: के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुँच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी

0: भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत रहा हो।
1: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे वचन फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल और रविशंकर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत सीमा फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो

0: कलाकार शकील आजमी।
1: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत को, जो कि है फिल्म बरादरी से तलत महमूद की आवाज़ है। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: श्री 420 फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम सदाबहार नगमे में सुनते हैं अगला गीत परिवार फिल्म से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और सलिल चौधरी का है संगीत।
1: दत्त मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर नीरत करत उठ हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन दिग्ना।

ओडनिया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झड़न सच सग सगन का किट झट किट सग सगन का जी सगन नदा ताधा किट सग सगन का ताधा सगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे या थे

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
3: परेशान हूं मैं।
2: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन न्यूट्रिशन एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के

0: चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत भाई भाई फिल्म से, ये गीता दत्त की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। और सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप सबका मंगल हो। प्रणाम, नमस्कार।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारतीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है हेलो सहेली, कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: इंतजार, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का, किसी बात का हो या फिर किसी घटना के होने का इंतजार हो, इंतजार थोड़ा मुश्किल काम है ना? तो चलिए इस मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं हमारी और आपकी बातचीत से। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो सहेली में। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त चंचल वर्मा का नमस्कार और झटपट हमें कॉल लगाइए। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज उठी है और हम बात करते हैं आज कॉल करने वाली हमारी पहली सहेली से। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली, बताइए कौन बात कर रही है इस समय हमसे?
1: मैं शबाना बोल रही हूँ।

0: खाना जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: उमरी खदाना
0: उमरी खदाना।
1: जी।
0: अच्छा बताइए, क्या करती हैं आप?
1: एक टाइम तो मैं कुछ नहीं कर रही, दुकान पे बैठी, इधर कोने की दुकान पर रखी।
0: तो ये आपकी खुद की दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की?
1: हाँ जी, अपनी खुद की है।
0: अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या क्या काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर?
1: मैं तो सिर्फ बेचती हूँ, जैसे सामान होते हैं LED, डिस्क, पंखे वगैरह, लाइट का टोटल सामान, और सुधारते भी हैं, रिपेयरिंग करते हैं मेरे हस्बैंड आके, हम लेकर रख लेते हैं।
0: अच्छा, तो आपके हस्बैंड और आप दोनों मिलके इस दुकान को चलाते हैं?
1: जी हाँ।
0: तो जब आप दुकान संभालती हैं तो घर पे बच्चे भी अकेले आराम से रह लेते होंगे, क्योंकि इतने समझदार हो गए?
1: हाँ, काफी समझदार है। बड़ा लड़का 16 साल का हो चुका है, 15 में लग चुका है, और छोटा 12वें साल में लग चुका है, 12 का हो गया, 13 में लग चुका है।
0: शबाना जी, आप दुकान पर जब संभालती हैं तो उसी वक्त रेडियो भी सुनती हैं?
1: जी हाँ, रेडियो भी सुन लेते हैं, TV चला लेते हैं, TV में रेडियो चला लेते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओम शांति ओम फिल्म का दीवानगी दीवानगी का मैं गाना सुनना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: सहेली बताइए, कौन बात कर रही हैं हमसे?
1: हम नीता मिश्रा बात कर रहे हैं आपसे।
0: नीता मिश्रा
1: जी, आप कैसी हैं?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ नीता जी। मुझे बताइए कि आपने कहाँ से कॉल लगाया है?
1: ये हमने लगाया यूपी से, लखीमपुर खीरी से।
0: लखीमपुर खीरी से आप बात कर रही हैं। बताइए लखीमपुर खीरी का मौसम इस समय कैसा है?
1: यहाँ पे तो बहुत गर्मी हो रही है।
0: अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है?
1: नहीं, बहुत बूंदा बांदी हुई थी कल थोड़ी देर बस।
0: तो जब थोड़ी बूंदा बांदी होती है तो वो तो गर्मी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उमस बहुत हो जाती है।
1: बहुत ज्यादा।
0: तो बताइए आपके शौक क्या क्या हैं नीता जी?
1: हमारे शौक हैं गाने सुनना, किताबें पढ़ना,

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, हम किस सहेली से बात कर रहे हैं?
1: स्वाति विक्रम थोरात।
0: स्वाति जी, आप कहाँ रहती हैं? कहाँ से कॉल किया है आपने?
1: मैं जिला अहिल्या नगर से तालुका पारनेर है, वहाँ से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
1: मैडम मैं हाउसवाइफ हूँ, दो बच्चे हैं।
0: आपके बच्चे कितने बड़े हैं?
1: बड़ा बेटा 3री कक्षा में पढ़ता है और बेटी 4 साल की है।
0: तो उनके स्कूल शुरू हो गए हैं अभी?
1: स्कूल तो शुरू हो गए है अब।
0: और आप रेडियो सुनती हैं, तो कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: रेडियो तो सभी चैनल में सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: जब मौका मिलता है ना तभी सुन लेती हूँ।
0: अच्छा, तो बताइए आज कौन सा किताब सुनना चाहती हैं?
1: मैं बागबान फिल्म का मैं यहाँ तू वहाँ सुनना चाहती हूँ।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का बागबान फिल्म का गीत।

वक्त जैसे ठहर गया है यही, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तनहा है।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: बताइए, कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मधुर पारेख।
0: मधुर पारेख, मधुर पारेख, आप कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जयपुर, राजस्थान।
0: बड़ा सुंदर शहर है जयपुर।
1: बहुत सुंदर है।

0: यहाँ पर बहुत सारे किले हैं और बहुत सारे देखने वाली चीजें हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आप जयपुर में बचपन से ही हैं या अभी हाल ही में कभी रहने लगी हैं?
1: मैं पहले आगरा रहती थी और अब हम लोग जयपुर रहते हैं,
0: तो आपने आगरा में
1: मतलब
0: भी बहुत सारी चीजें देखी होंगी। आगरा का तो ताजमहल है।
1: जी बिल्कुल देखा है ताजमहल।
0: और जयपुर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जयपुर कोई घूमने आए, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहां हम जाकर आनंद उठा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बनाकर लौट सकते हैं?
1: जयपुर में बहुत अच्छे किले हैं, जैसे कि एक नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, आप वहाँ जा सकते हैं, बहुत सारी यादें बना सकते हैं, बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और सिटी पैलेस है जहाँ पे हमारे पुराने राजाओं की स्मृतियाँ हैं
0: जी।
1: और बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, जैसे कि गोविंद देव जी।
0: तो ये किलों की और मंदिरों की नगरी है एक तरह से जयपुर।
1: जी बिल्कुल
0: मधुर, आप खुद क्या करती हैं?
1: जी, मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ।
0: ये किंडरगार्टन टीचर क्या होता है? क्योंकि टीचर हमने सुना है, मतलब अध्यापिका हैं आप, लेकिन किंडरगार्टन टीचर क्या होता है?
1: किंडरगार्टन टीचर छोटे बच्चों की टीचर होती है दरअसल। ये 4 से 6 साल के बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उस वो जो देते हैं वो होती है किंडरगार्टन टीचर।
0: यानी हाल ही में जिन बच्चों ने अभी स्कूल में एडमिशन लिया है या जो पढ़ना
1: जी
0: लिखना सीख रहे हैं, तो इनके साथ किस तरह से आप डील करती हैं? क्योंकि वो बच्चे जो आज तक अभी 4 साल तक की उम्र तक घर पर थे और अब अपने माँ बाप को और अपने परिवार को छोड़कर वो पहली बार किसी सीढ़ी पर जो कदम रखते हैं, वो स्कूल की सीढ़ी है, तो वहाँ उन बच्चों को
1: जी
0: किस तरह संभालती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी?
1: जी बिल्कुल। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दरअसल बहुत ही अंदर से कुछ एंजाइटीज होती हैं, डर होते हैं कि हम किसी नए इंसान से मिलेंगे तो वो हमें हमें माँ के जैसे प्यार करेगा या ना करेगा। तो वही हम उन्हें एक मदर टच देते हैं, माँ वाली फीलिंग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो पाए, हम उनको कुछ नया सिखा पाए।
0: मधुर, आप ये जो काम है किंडर टीचर का, ये कितने समय से आप कर रही हैं?
1: जी, मैं 6 सालों से ये काम कर रही हूँ।
0: तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको।
1: जी बिल्कुल। और मुझे मेरा समय छोटे बच्चों के साथ बिताना बहुत पसंद है।
0: क्या बात है, छोटे बच्चों के साथ में कई बार हम अपनी जो एनजाइटी, तनाव या हमारी जो समस्याएं हैं ना, हम उन्हें भूल जाते हैं।
1: जी बिल्कुल
0: और परिवार का सहयोग मिलता है जब आप काम करने जाती हैं।
1: जी बिल्कुल, मुझे मेरे पूरे परिवार का सहयोग मिलता है।
0: मधुर जी, आप हमें ये बताइए, आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहती हूँ अभी ना जाओ छोड़कर, हम दोनों मूवी का।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: दी, ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका,
4: हाँ मेरा फेवरेट कलर
5: हमेशा शॉपिंग।
6: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
7: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
8: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
6: आई नो ना।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ बताइए, हम किन से बात कर रहे हैं इस समय, कौन सी सहेली लाइन पर है?
1: हम सविता शर्मा ग्वालियर से मैडम।
0: सविता शर्मा ग्वालियर से बात कर रही हैं।
1: जी मैडम।
0: बताइए सविता जी, क्या करती हैं आप?
1: हम खाना बनाते हैं मैडम।
0: खाना बनाना आपका प्रोफेशन है या घर में तो हर महिला खाना बनाती है, आप उस बारे में बता रही हैं हमें?
1: खाना बनाने जाती हूँ।
0: तो कौन कौन से खास खाने बनाती हैं ये बताइए।
1: देखो मैडम, हम जो नए नए फैशन के हैं वो तो कम बनाते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी पराठा आलू सूखी कटहल की सब्जी यही सब बनाते हैं।
0: और कटहल का अचार भी डाला जाता है खाने के अलावा, जो अलग स्पेशल चीजें होती है, अचार है, ये सब चीजें भी बनाती हैं आप?
1: हाँ बिल्कुल, अचार बनाते हैं कटहल उसके लिए मैडम छोटा वाला कटहल होना चाहिए, बीजा वाला नहीं होना चाहिए।
0: तो इन बातों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है।
1: हाँ, उसको उबाल कर उसे एक दिन सुखा लीजिए, थोड़ा सा उसका पानी निकल जाए, फिर इसके बाद में उसको ठंडा हो जाए तो उसमें उसका मसाला पूरा डालकर तेल डालकर मिलाकर उसे कांच के बर्नी में भर के रख दीजिए।
0: और ग्वालियर शहर का मौसम इस समय कैसा है, वहाँ बारिश शुरू हो चुकी है या अभी भी गर्मी है?
1: हाँ, ग्वालियर में बारिश भी हो रही, गर्मी भी हो रही है बहुत, और बारिश होती है तो बहुत ही सारा बारिश होती है,
0: मतलब मिला जुला सा मौसम चल रहा है, कभी गर्मी और कभी बारिश।
1: हाँ कभी गर्मी, इस समय तो बहुत धूप है मैडम।
0: अच्छा, तो ये बताइए कि धूप से आपको राहत मिल जाए, इस गर्मी में आपको ठंडक दे जाए, ऐसा कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हम तो सुनना चाहते हैं दम दम दिगा दिगा मौसम दिगा बिगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह की सुभान अल्लाह।
0: बहुत सुभान अल्लाह, आपकी बातें भी हैं और आपका गीत भी है, सुनवाते हैं आपको ये गीत। दम दम

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन सी सखी हमसे बात कर रही हैं?
1: जी मैं झांसी से बोल रही हूँ, रत्ना।
0: झांसी से रत्ना जी बात कर रही हैं।
1: जी
0: रत्ना जी, आप अपने बारे में हमें बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: बस मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: रचना जी, झांसी बड़ा सुंदर ऐतिहासिक शहर है।
1: जी मैम।
0: और आप कब से झांसी में रहती हैं?
1: जी मैम, ये तो 20 साल हो गए मेरी शादी को।
0: अच्छा, तो ब्याह कर आप झांसी शहर में आई थी?
1: जी मैं सागर की हूँ, अभी झांसी में शादी हुई, 20 साल हो गए, तो इधर ही रहती हूँ।
0: और आप बता दीजिए, आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे शादन फिल्म के गाना सुनना है, बहुत प्यार करती हूँ।

0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: सखियों, अंतराल हुआ पूरा और हम फिर से फोन लाइन के जरिए जुड़ जाते हैं अपनी सहेलियों के साथ। हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली।
1: आज कौन सी सहेली लाइन पर है जो हमसे बात कर रही हैं?
2: जी, मैं निकिता आरोटे पुणे से बात कर रही हूँ।
1: पुणे से निकिता बात कर रही हैं। निकिता, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप क्या करती हैं?
2: जी, मैं टीचर थी लेकिन अभी घर पे हूँ। मैं
1: जो पढ़ाने का काम करती थी वो छोड़ दिया है
2: अभी। हाँ, छोड़ा है मैंने अभी। मेरे बच्चे को टाइम नहीं मिलता था ना घर पे, इसलिए छोड़ा है।
1: ताकि आपके बच्चे को समय मिल सके तो आपने अपने काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लिया है।
2: हाँ हाँ जी।
1: तो अब आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया है?
2: अभी वो 12th में है।
1: 12th में है
2: जी, 12th में है अभी।
1: तो अब तो वो काफी बड़े हो चुके हैं। अभी आपको लगता है कि आपको उनके लिए काम छोड़ने की जरूरत है?
2: नहीं, वैसे तो जरूरत नहीं। उसे लगता है कि मैं काम पे जाऊँ तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता है अभी घर में कोई नहीं होता है, अकेला ही रहता है वो, तो ठीक है ना, उसके साथ रहूंगी मैं फिर। अभी क्या डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चों का बहुत ना इस एज में।
1: बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी उम्र होती है बच्चों की, किशोर वय जब होता है तो बच्चों में जो संस्कार पड़ते हैं, खास

0: वो किस तरह की सोहबत में उठते बैठते हैं, माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान उन पर अगर रहे तो वो किसी गलत भटकाव से बच सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: आपकी सोच अपनी जगह बहुत अच्छी है। तो अब ये बताइए कि जब आप खाली समय होता है, क्योंकि पहले तो आप एक अध्यापिका थी, अब खाली समय को किस तरह से आप गुजारती हैं?
1: हाँ, पहले तो मैं बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा है ना, तो स्ट्रेस में रहता है वो। घर में कुछ डेकोरेशन करना पसंद है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ।
0: इसके
1: अभी
0: अलावा और
1: गिटार सीखने लगी हूँ।
0: अच्छा, गिटार आप सीख रही हैं?
1: जी अभी स्टार्ट किया है, और राइडिंग भी बहुत पसंद है मुझे।
0: ये बड़ा कमाल का शौक है आपका, क्योंकि खास तौर पर महिलाएं हॉर्स राइडिंग से डरती हैं, क्योंकि घोड़े की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो उस पर चढ़ना ही अपने
1: हाँ
0: आप में बड़ा डरावना काम लगता है। तो ये काम आप कर रही हैं, तो कितने समय आपने हॉर्स राइडिंग सीखी?
1: सीखी नहीं, लेकिन बीच बीच में ऐसे टाइम निकल के जाती हूँ मैं। एक्चुअली मुझे वर्टिगो का बहुत इश्यू है, मतलब बहुत ज्यादा इश्यू है, लेकिन शौक बचपन से है, तो अभी करती हूँ, डेयरिंग करके जाती हूँ मैं। कभी हस्बैंड के साथ ऊपर चढ़ती हूँ हॉर्स पे, फिर उनको उतार देती हूँ।
0: रेडियो आप सुनती हैं तो कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली, वो तो सुनती हूँ, और मैं बचपन से रेडियो सुनती थी मैम।
0: निकिता जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि हम आपको आपकी पसंद का गीत सुन पाए। तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बेटा फिल्म का सॉन्ग सुनना है, सजना मैं तेरी तू मेरा।
0: सुनवाते हैं आपको बेटा फिल्म का, आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही हैं?
1: मैं पलक अहरवार बात कर रही हूँ।
0: पलक बात कर रही हैं। पलक, आपने कहाँ से कॉल
1: भुगावली।
0: लगाया? अपने शहर का नाम बताइए। बुगावड़ी।
1: यस मैम,
0: ये बुगावड़ी कहाँ पर आता है?
1: वो सागर जिले है मैम, वहीं तहसील खुरई पे साइड है भुगावली।
0: तो सागर जिले में आता है आपका गांव।
1: यस
0: तो आपका जो गांव है, वहां पर सुविधाएं कैसी हैं? स्कूल वगैरह है आसपास में लड़कियों के लिए?
1: स्कूल वगैरह है, एक पहली से 8वीं क्लास तक है।
0: 8वीं क्लास के बाद जब लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है तो कहाँ जाती हैं वो पढ़ने के लिए?
1: तो यहीं पे है पथरिया, तो वहीं पे पढ़ती हैं। साइकिल
0: वो आपके गांव से कितना दूर है?
1: 3 किलोमीटर दूर है।
0: तो 3 किलोमीटर जाने आने के लिए अधिकतर लड़कियों को पैदल जाना आना पड़ता है या कुछ सुविधा है जाने आने के
1: नहीं
0: लिए?
1: मैम, स्कूल से साइकिल मिलती है।
0: स्कूल से साइकिल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।
1: या मैम,
0: अच्छा, तो आप अभी कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
1: मैं 9th में आ गई हूँ।
0: 9th में आ गई हैं। कौन से विषय पसंद हैं आपको?
1: मुझे सोशल साइंस विषय पसंद है।
0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: हमारे परिवार में मैं माता पिता और हमारी 4 बहनें हैं और एक भाई है।
0: अभी सब बहनें पढ़ाई कर रही हैं।
1: हाँ मैम,
0: और आप रेडियो कौन सी उम्र से सुनना शुरू किया आपने?
1: अभी 1 साल पहले। यस
0: 1 साल पहले से आप रेडियो सुन रही हैं।
1: मैम।
0: कौन सा कार्यक्रम आपका फेवरेट है?
1: मैम आज की फनकार कार्यक्रम।
0: आज के फनकार कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद आता है आपको?
1: यस मैम।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: धड़क 2 का प्रीत गाना सुनना है।
0: पलक आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है, नाम बताइए अपना।
1: मैम पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, अपने शहर का जिस तरह से आपने परिचय दिया है ये अपने आप में बड़ा रोचक है।
1: जी मैम, आप ही लोगों को सुन सुन के मैम हमने भी बोलना सीखा है, और मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम, और
0: अपने
1: साथ में जानकारियां भी मिलती रहती हैं, और प्यारे प्यारे गीत भी सुनने को मिलते हैं मैम।
0: आप क्या करती हैं ये बताइए।
1: मैम मैं घर पे रहती हूँ, और घर पे रह के घर के काम भी करती हूँ, और साथ में आप लोगों से बातें भी करती रहती हूँ कॉल के माध्यम से। मैम
0: रायबरेली के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा शहर है रायबरेली।
1: रायबरेली तो ठीक ठाक शहर है, और मैं बताना चाहूंगी मैम, मेरा गांव सीवर के पास में पड़ता है, तो मेरे यहाँ जो सीवर है यहाँ पे एक राजा का महल है, जहाँ पर अक्सर फिल्मों की शूटिंग होती रहती है, गानों की शूटिंग रहती है, तो यहाँ पे मैम बहुत से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं, और यहाँ
0: आपने
1: पर मैम कोई टिकट वगैरह भी नहीं लगता है, आप फ्री में घूम सकते हो।
0: और आपके शौक क्या क्या हैं।
1: मैं मुझे तो सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा मुझे सॉन्ग सुनना, और मतलब सॉन्ग को गाना, मैम मैं अंदाज मूवी से सॉन्ग सुनना चाहूंगी, आज कहना जरूरी है।
0: अंदाज फिल्म का ये गीत आपको हम सुनवा रहे हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: कौन सी सहेली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम प्रतिभा रहानी है।
0: प्रतिभा।

0: रहाने जी, आप कहाँ रहती हैं? किस शहर से आप बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं पुणे से हूँ, राजगुरु नगर।
0: प्रतिभा जी, अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या करती हैं और आपके शौक क्या क्या हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे एक आश्रम है, शिव साधना योगाश्रम नाम से, वहाँ पे वॉलंटियरिंग भी करती हूँ।
0: वहाँ पे आप एज वॉलंटियर जाती हैं?
1: हाँ।
0: तो ये एक योग आश्रम है जैसा कि आप सुनने से हमें पता लगा, तो यहाँ पर आप
1: हाँ।
0: कुछ सिखाती हैं, करवाती हैं?
1: हाँ, वहाँ पे फ्री में योगा सिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर मैं सेवा देती हूँ। और वहाँ पे ध्यान शिविर भी होते हैं, जैसे कि विपश्यना ध्यान है, कुंडलिनी योग, क्रिया योग ध्यान है, और शरीर शुद्धि के लिए पंचकर्म, कायाकल्प, ऐसे भी शिविर होते हैं।
0: आप किस
1: और
0: तरह की सेवाएं यहाँ पर देती हैं?
1: मैं वहाँ पे योगा सिखाती हूँ, और जो शिविर होते हैं कायाकल्प पंचकर्म, वहाँ पे सेवा देती हूँ।
0: आपको पता है अभी 21 जून को योग दिवस आ रहा है,
1: हाँ।
0: तो हमारी सखियों को बताएं कि महिलाओं के लिए योग किस तरह उपयोगी है और उनके जीवन में ये क्यों जरूरी है?
1: हाँ, तो योगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: जी
1: जैसे हेल्थ के लिए तो, फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है ही, पर अभी हम जैसे देख रहे हैं कि डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है या मेंटल हेल्थ जिस तरह खराब होती जा रही है, तो हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसके लिए योगा थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, और अर्ली मॉर्निंग अगर हम थोड़ा योगा अभ्यास प्राणायाम करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इसमें।
0: क्या योग के जरिए कुछ समस्याएं हैं उनसे भी निजात हो पाती है?
1: हाँ, तो हमारा जो मेंटल स्टेट है जो अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया है, तो हम जब थोड़ा बहुत योग प्राणायाम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डिसीजन लेने का तरीका वो चेंज होने लगता है, मेंटल स्टेबिलिटी आने लगती है, क्लियरिटी आने लगती है, और अपने आप एहसास होने लगता है कि हम आनंद में रह सकते हैं, तो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जब हम खुशी में होते हैं तो अंदर से खुश होते हैं।
0: तो योग हमें ये सारी चीजें सिखाता है,
1: हाँ
0: और योग के साथ आप ध्यान के शिविर हैं उनमें भी हिस्सा लेती हैं और लोगों को उसका भी प्रशिक्षण देती हैं। और आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे स्वामी मोदी का पल भर में ये क्या हो गया, ये सॉन्ग सुनना है।
0: बड़ी खूबसूरत पसंद है आपकी, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का स्वामी फिल्म का गीत।

0: आज कॉल करने वाली सभी सखियों को धन्यवाद, और वे सखियां जिन्हें अभी और इंतजार करना है हेलो सहेली कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, वो निराश ना हो, अगली बार जरूर कोशिश कीजिएगा, क्या पता पहली बार में ही आपका कॉल कनेक्ट हो जाए। जिन सखियों ने आज हमसे बात की है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने तक हमें कॉल ना करें, ताकि वे सखियां जो इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहती हैं उन्हें भी मौका मिल सके। हमारे पुरुष श्रोता, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि मंगलवार को हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग के समय वो हमें कॉल ना करें, क्योंकि इससे लाइन व्यस्त हो जाती है और हमारी सखियों को कॉल कनेक्ट करने में परेशानी हो सकती है। सखियों, आपसे मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। सभी सुनने वालों को हम ये बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार को दिन में सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 400-24662, एक और नंबर है 28687088, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, दीजिए अपनी सखी चंचल वर्मा को इजाजत, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
4: गीतों भरी कहानी, आइए सुनते हैं निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी ज्वालामुखी। वाचन स्वर निवेदिता श्रीवास्तव का ही है।
5: ऑफिस जाने के लिए लैपटॉप बैग लंच बॉक्स संभालते हुए कार की चाबी लेने के लिए अनुभा ने हाथ बढ़ाया ही था कि दही शक्कर की कटोरी लिए अपनी माँ विभा को सामने देखते ही हंसी की सुनहरी चमक उनके चेहरे पर खिल उठी। अरे वाह माँ, आपको याद है कि आज मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और मुझे आपके इस आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। माँ के पूरे व्यक्तित्व में ही जैसे एक अलग ही तरह की संतुष्टि व्याप्त हो गई। बिटिया, मुझे तो आज भी तुम्हारे जन्म की वो घड़ी याद है जब मैं पूरे समय यही गाती थी।

अनुभा भी खिलखिला उठी। माँ अब मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मुंबई का ट्रैफिक मुझे मीटिंग के लिए देर ना करवा दे। शाम को आप तैयार रहिएगा, हम लोग मरीन ड्राइव चलेंगे और उधर से ही प्ले देखते हुए वापस आएंगे। और हाँ, हम लोग उधर से ही डिनर करते हुए आएंगे, इसलिए आज किचन की पूरी छुट्टी और आपका आज रेस्ट डे है। आज आपके लिए पार्लर में मसाज बुक कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। विभा मुस्कुरा उठी। बेटी तूने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, वरना। अनुभा ने माँ को गले से लगा लिया। माँ मुझको वो गाना याद आ रहा है जो आप अक्सर गुनगुनाती थी, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गुनगुनाते हुए ऑफिस से निकलने से पहले ही अनुभा ने माँ को फ़ोन करके तैयार रहने की याद दिला दी थी। घर के गेट पर बजते हॉर्न और फ़ोन पर लगातार बजती घंटी आज की शाम के लिए उसके उत्साह को जैसे रेखांकित कर गई। और माँ भी दरवाज़ों पर ताला लगाकर उसके बगल की सीट पर बैठ गई। माँ का बैठना था कि अनुभा सड़क के बेतहाशा बेलगाम ट्रैफिक से अपनी गाड़ी को पानी की तरह निकाल ले गई। मरीन ड्राइव पर कुछ बातें करते करते ही डूबते सूरज को देखती हुई विभा अचानक ही चुप हो गई। टोकने पर बोली कि सागर की लहरों के साथ बीत रही ये शाम उस शाम की याद दिला रही है जब हम सब साथ थे।

0: माँ के साथ ही अनुभा भी उन पुरानी छोड़ दी गई गलियों में पहुँच गई। बचपन से लेकर कॉलेज फेयरवेल तक के दिन हंसती खिलखिलाते मानो पंख लगाकर उड़ते चले गए थे। मम्मी पापा के साथ की बेशुमार खुशनुमा यादों से सज ना जाने कितने पल उसकी यादों के आसमान पर चांद तारों से झिलमिला उठे थे। दुर्गा पूजा की छुट्टियों में घर आई अनुभा रोज ही अपनी किसी न किसी सहेली अथवा पुराने स्कूल के शिक्षकों से मिलने निकल जाती थी। बचपन के दिनों और शरारतों को याद करते करते समय कितनी जल्दी बीत जाता था उन सबको पता ही नहीं चलता था।
1: बच्चे

0: अक्सर ही अनुभा अपनी माँ विभा को भी ले जाना चाहती थी, परंतु वह तो कभी किसी काम का तो कभी किसी अतिथि के आने का बहाना बनाकर टाल जाती थी। उसको तो लग रहा था कि आजकल माँ कुछ अनमनी सी हैं, परंतु घर परिवार और उनके दोस्तों में भी सब पूर्ववत व्यवस्थित प्रतीत होने से कोई कारण समझ नहीं आने पर वह उसको अपने मन का भ्रम समझ अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हो जाती थी। एक शाम घर जल्दी वापस आने पर अनुभा ने देखा कि उसकी माँ विभा तकिए में मुंह छुपाकर अपनी मुखर होती सिसकियों को दबाने का प्रयास कर रही थी, पर उनके वेग से हिलता हुआ शरीर असलियत की चुगली दे रहा था। अनुभा से रहा नहीं गया और उसने माँ के कंधों पर हाथ रख दिया। माँ, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? विभा खुद को समेटते हुए उठने का प्रयास करते करते जैसे टूटे हुए बांध सी बिखर गई। क्या करूं बिट्टो, मैं क्या करूं? लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस लम्हे से निकल ही नहीं पा रही हूं। अनुभा एकदम चौंक गई और कुछ भी नहीं समझ पाने की स्तब्ध मनस्थिति में उनका हाथ थामे बैठी बस सांत्वना देती पीठ ही सहलाती चली गई। मरुथल की वीरानी समेटे सा खारापन उन दोनों माँ बेटी की आंखों से बहता हुआ ना जाने कहाँ जज्ब होता चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी अनुभा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके इन कुछ महीनों के ही हॉस्टल प्रवास में ऐसा क्या घट गया जिसने उसकी इतनी दृढ़ मना माँ को इतनी बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह टूटे हुए कांच की किरचों जैसी बिखर गई हैं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

उसने खुद को संभालते हुए माँ का मुंह धुलवाया और उनको शांत करती वहीं पास ही बैठ गई। माँ, सबसे पहले तो आप शांत हो जाइए और धैर्य रखिए कि आप अकेली नहीं हैं। आपने अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाया है कि वह चीज़ों को समझ और सुलझा सकें। आप स्वयं को संभालिए और सारी बातें बिना किसी झिझक के एकदम स्पष्ट बताइए कि समस्या है क्या। ऐसा क्या अघटनीय घट गया जो आपकी आंखों में इतने आंसू दे गया है? आपकी आंखों से बहते ये आंसू मुझको भी भिगो रहे हैं। विवा के मन में जैसे विचारों के बवंडर उठ रहे थे, मानो वह सोच रही हो कि क्या बताएं और कैसे बताएं। कभी उससे अपना रिश्ता सामने खड़ा हो संकोच की बाढ़ खड़ी कर देता, तो कभी सामाजिकता चोटिल कदमों को और भी घाव मिलने की आशंका दे जाती। खुद की बेबसी का अनुभव करती उसने कुछ नहीं के भाव में सिर को हिला दिया, मानो वह उस पल को हटाना चाहती हो। शायद बेबसी की भाषा खामोशी के वीरान सन्नाटे में होते हुए भी बहुत कुछ अनकहा भी कह जाती है। अनुभा ने उसके हाथों को पकड़कर अपने विश्वास और सामर्थ्य की ऊर्जा सी उनमें भरी। नहीं माँ, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको मुझको तो बताना ही पड़ेगा। आइए बातें करते हैं और उससे ही आपकी इस पीड़ा का कुछ हल निकालते हैं। बेटी के स्नेहिल स्पर्श की ऊर्जा पाकर विभा जैसे दुगने वेग से फपक पड़ी। तू ही बता कि अब तुझको या किसी को भी बता के क्या होगा, और क्यों ही बताऊं, क्या कर लेगा कोई भी, क्या कर लेगी तू भी ये जानकर कि मेरा दम घुटता है इस घर में। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ, पर मैं अब उम्र के इस मोड़ पर जाऊँ कहाँ, सिर्फ अपने लिए कोई अलग सा स्थान भी तो नहीं बनाया कभी। अब तो तेरे नाना जी और नानी माँ भी नहीं रहे कि उनके पास ही चली जाऊँ। कुछ पल उखड़ती सांसों को अपनी चुप्पी से थामने का प्रयास करती हुई विभा फिर से सिसक पड़ी। जब मैं भी अपने लिए कुछ कर सकती थी या इस समाज में स्वयं को स्थापित कर सकती थी, तब तो मैं इस घर को संभालती रही और अब तेरे पापा के दिए इस धोखे को संभाल रही हूँ।

तो मानो अचानक आए सैलाब में उसके सब्र का बांध टूट गया और वो पिछले महीनों की सारी बातें बताती चली गई। उसके पापा के वॉशरूम में होने के समय लगातार बजती फ़ोन की घंटी और मैसेज के नोटिफिकेशन से किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने उनका फ़ोन उठा लिया था और सब देखते ही मानो उसकी विश्वास की दुनिया बिखरती ही चली गई। साथ में ही अपने फ़ोन में सुरक्षित उसके पापा अरुण की उस दूसरी स्त्री के साथ की सारी फ़ोटो और उनके फ़ोन की चैट की स्क्रीनशॉट भी दिखाने लगी। ये सब सुनकर अनुभा एकदम स्तब्ध रह गई। स्वयं को मजबूत करती उसने माँ को समेट लिया। माँ, सबसे पहली बात यह है कि आप स्वयं में ही बहुत सशक्त हैं। आप ना तो मजबूर हो सकती हैं और ना ही कमजोर। आप में तो इतनी सामर्थ्य है कि 1.5-3 किलो के वजन को स्नेह से अपने गर्भ में वहन करती रहीं और उस अबोध शिशु को अपने स्नेह और संस्कारों से इतना सामर्थ्यवान कर दिया है कि वो अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के साथ ही दूसरों का भी सहारा बन सके। वह कुछ सोचती सी मानो एक पल में ही किसी निश्चय पर पहुंच गई। सबसे पहले आप खुद को बेचारी और बेसहारा समझना और मानना बिल्कुल बंद कीजिए, और कमज़ोर तो आप पढ़ ही नहीं सकती हैं। आप इस घर में नहीं रहना चाहती तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। क्या हुआ अगर नाना जी और नानी माँ नहीं रहे? आपकी बेटी, आपकी प्रतिछाया, मैं तो हूँ ना आपके साथ, आपके पास हरदम। अनुभा ने अपनी हथेलियों में माँ की आंखों से बहने वाले आंसुओं को चुन लिया। आप अभी मेरे साथ चलेंगी और आपको आपके पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी और वादा मेरा है, पर माँ, मुझे एक बार पापा से भी सवाल करने ही हैं। वो अपने किए से मुक्त नहीं हो सकते। बस आज की शाम का समय मुझे दे दीजिए। विभा की पलकें एक बार फिर बह चली। अब जब कुछ बचा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा उनसे बातें करने का, और क्या बात करनी है? मेरे पूछने पर उन्होंने कह ही दिया है कि जो भी करना हो वह करने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। अब वो अपनी मर्जी से जीवन जिएंगे। मुझको दिक्कत हो तो जहाँ जाना हो चली जाऊँ, नहीं तो उनकी सेवा करती हुई यहीं पड़ी रहूँ।

विधवा ने रोती हुई विभा के कंधों पर हाथ रख दिए। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ बातों के जवाब तो पापा को देने ही पड़ेंगे। आपको चाहे नहीं, परंतु मुझको तो चाहिए उनके जवाब। विभा ने अपनी सहेली देवी को फोन करके बुलाया और अनुभा को उनके साथ उनकी सहेली शशि मौसी के पास भेज दिया और अपने पापा अरुण का इंतज़ार करने लग गई। अरुण ने देर शाम को ऑफिस से आते ही अपना बैग और लंच बॉक्स दरवाजे पर ही छोड़ दिया कि विभा आकर सब वहां से हटाकर सही जगह व्यवस्थित कर ही लेगी। फ्रेश होकर आने के बाद भी उसने बैग को दरवाजे पर ही पड़ा देख आक्रोशित होकर विभा को आवाज़ देने लगे, विभा विभा कहाँ हो तुम? तुमने सब सामान अभी तक हटाया क्यों नहीं और पानी तक ला कर नहीं दिया? अनुभा जो पास के कमरे से सब देख रही थी वहां आ गई। क्या हुआ पापा, इतनी तेज आवाज में क्यों बोल रहे हैं? अनुभा की बात से सकपकाते हुए से अरुण ने विभा के बारे में पूछा, पर उसने उसकी बात का जवाब न देकर पूछ लिया, आपसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना चाहती हूँ, आपके पास समय है क्या? अरुण चिंतित हो उठा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या तुमको? मुझसे तो कभी भी कुछ भी बात कर सकती हो, इसके लिए पूछने की क्या आवश्यकता है?

अनुभा उसके सामने इत्मीनान से बैठ गई। घर परिवार समाज सभी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा चुकी स्त्री को यदि उसका पति धोखा दे तो उसको क्या करना चाहिए। अरुण ने एक सुकून महसूस किया और बोला, ये तो गलत है, उसके पति को ऐसा तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन मिल गया तुमको। अनुभा ने स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखते हुए बोलती चली गई कि पति की गलत आदतों और समय समय पर टोकने के बाद भी जीवन की हर चुनौती पर हर सुख दुख में उसका साथ देने पर उम्र के इस ढलान वाले दौर में उसकी सहेली के पापा का किसी अन्य स्त्री से संबंध है, ऐसे में सहेली की माँ को क्या करना चाहिए। अरुण ने जवाब दिया, विश्वास की हत्या करने वाले ऐसे पति को तुरंत तलाक दे देना चाहिए। ऐसा धोखेबाज पति जिंदगी के किसी भी मोड़ पर और भी बड़ा धोखा दे सकता है, शायद तब तुम्हारी उस सहेली की माँ के पास संभलने का समय ही नहीं होगा। अरुण ने देखा कि अनुभा कुछ सोचती सी गुमसुम होकर बैठी रह गई। वह आकर उसके पास बैठ गया। बेटे, सहेली के बारे में सोचकर परेशान मत हो, क्योंकि परेशान होना तो किसी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अनुभा उनकी ओर देखती हुई बोली, नहीं पापा, मैं सहेली के बारे में नहीं, उसकी माँ के बारे में सोच रही हूँ कि अपने जीवन के इतने अनमोल और खूबसूरत साथ देने के बाद भी उनको धोखा क्यों मिला। क्या ईमानदारी से घर का ध्यान रखना और परिवार के प्रति समर्पित रहना गलत होता है? आखिर उन्होंने अपने लिए कुछ करने की अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ा, तभी तो घर के सभी सदस्य इतने निश्चिंत होकर जिंदगी में खुद को कुछ साबित कर पाए। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि वो गलत कहाँ थी।

0: आया सिंह अनुभव की आवाज़ में एक आक्रोश उभरने लगा था। पापा, ये सब देखकर मुझे लगता है कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए। नहीं जीना मुझे एक संशय के विश्वासघात के माहौल में। कहीं बाहर जाकर नौकरी न करने की एक बात छोड़ दें तो मेरी सहेली की माँ रूप, व्यवहार, गृह कौशल, सामाजिकता निभाने वगैरह सभी बातों में अव्वल थी, जबकि मैं तो ऑफिस में काम करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती। तब मेरा साथ कोई क्यों देगा? अरुण तड़पकर उसके सिर पर हाथ फिरने लग गया। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मैं कभी कुछ गलत होने ही नहीं दूंगा। अनुभा शांत भाव से उसको देख रही थी। अमर होकर तो इस धरती पर कोई नहीं आया है, फिर जब आप नहीं रहे तब मेरे धोखे का सामना मैं कैसे करूंगी? अरुण उसके मन की उलझनों को समझता हुआ बोला, बेटे कोई भी कभी भी एकदम अकेला नहीं होता, कोई न कोई अवश्य होता है साथ देने को। ईश्वर ना करे, परंतु यदि कभी ऐसा हुआ भी तब भी कोई ना कोई तो तुम्हारा साथ देगा ही, जैसा अभी मैं तुम्हारी सहेली की माँ का साथ दूंगा। लाओ मुझे उसके पापा का फोन नंबर दो, मैं बात करता हूँ। पूरे जीवन साथ देने वाली पत्नी के साथ वह इतना गलत काम कैसे कर सकते हैं? अनुभा ने एक सुकून की सांस भरी। हाँ पापा, आप जरूर बात कीजिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। उसके नंबर मिलाते ही उसके फोन पर अरुण का ही नाम चमकने लगा। वह चौंक गया, अरे तुमने तो गलती से मेरा ही नंबर मिला दिया, उसके पापा को कॉल करो ना। अनुभा खड़ी हो गई। नहीं पापा, मैंने नंबर सही मिलाया है, मैं आपकी और मम्मी की ही बात कर रही थी।
1: सुन

चौंक गया। क्या कहना चाहती हो, तुम्हारी मम्मी ने कुछ कहा है क्या? अनुभा की आवाज में तल्खी आ गई। अभी भी आपने यह नहीं कहा कि यह बात गलत है या मैं क्या बकवास कर रही हूं, बल्कि आप यह प्रश्न कर रहे हैं कि मम्मी ने कुछ कहा है, क्या समझूं इससे? अरुण की आवाज लड़खड़ा गई। मैं तो चौंक गया था कि यह तुमको क्या हुआ है, कैसी बातें कर रही हो, इसलिए। ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। अनुभा के पूरे अस्तित्व से मानो घृणा क्रोध बनकर बरसती जा रही थी। आप झूठ मत बोलिए, मैंने आपके सारे फोटो और चैट सब देख लिए हैं। पड़ोसियों ने तो पहले भी एक आध बार इशारे में कहा था कि जब मम्मी कहीं शहर के बाहर होती हैं तो कोई आपके साथ ही घर आती थी, और तब आप कार बाहर खड़ी नहीं करते थे, कार सीधे अंदर पोर्टिको में ही खड़ी करते थे। और अरुण यह सुनते ही बौखला गया। क्या बकवास कर रही हो, तुमको होश भी है कि क्या बोल रही हो, वो भी अपने ही पापा को? कोई कुछ भी बोल देगा तो तुम सच मान लोगी? आत्मवंचना मानो उसके शब्दों में मूर्तमान हो उठी। आपसे ज्यादा गुस्सा मुझको आया था, और उन डांटी से लड़कर मैंने बोलना ही छोड़ दिया था कि वो आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। पर आज अफसोस हो रहा है कि मैंने उनकी बातों पर भरोसा करके उसी समय आपका कॉलर क्यों नहीं पकड़ा। काश मैंने पूछा होता तो मम्मी को इतनी पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता।

अरुण को लगा कि जिस पल की आशंका से वह सब छुपाने का प्रयास कर रहा था, वही पल सामने आ खड़ा हो गया है। उसने स्वयं को स्थिरचित्त कर लिया। तुम्हारी माँ को कभी कोई कमी होने दी थी क्या? उसकी कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? समाज में उसके प्रतिष्ठा में कभी कोई कमी नहीं आने दी? फिर वो आखिर चाहती क्या है? क्या कुछ पल अपने मन से नहीं जी सकता मैं? अनुभा चीखी तो पड़ी थी, आखिर आ ही गई आपकी असलियत सामने। कुछ पल अपने मन से यदि ऐसा ही जीवन उन्होंने जिया होता, तब क्या करते आप और आपकी आधुनिकता? अरुण का क्रोध विस्फोट कर उठा। तुम होश में हो? अपने पिता से तुम कैसी बातें कर रही? तुम्हारी हिम्मत कैसे? अनुभा उनके सामने सीधी खड़ी हो गई। मेरी हिम्मत तो आप अब देखिएगा। और हाँ, जिस बात को आप सुन भी नहीं पा रहे हैं, उस सच के साथ मेरी माँ को अपना पूरा जीवन जीना है। इतना विश्वास दिलाती हूँ कि टूटने तो उनको बिल्कुल नहीं दूंगी, ना तो मैं और ना ही भाई। बस वो भी पहुँचता ही होगा। अनुभा की आवाज़ को दबाने के प्रयास में उसका पौरुषीय अहंकार मानो उसके मर्म को चोटिल करने के लिए चिंघाड़ उठा। जिस सामर्थ्य की धमकी दे रही हो, उसको पाने की फीस की रकम मैंने ही भरी है। अनुभा पलटकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह सब बोलने का साहस और अभी भी आपको आप बोलने का संस्कार मम्मी ने दिया है। आप यह मत सोचिएगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। हम वापस यहीं आएंगे और रहेंगे। अपना सामान समेटकर गेस्ट रूम को अपने हिसाब से ठीक कर लीजिएगा। वह क्रोध में पागल ही होता जा रहा था। हम घूमने जा रहे हैं, तुम लोगों को घर पर ताला बंद मिलेगा। अनुभा पीड़ा में भी हंस पड़ी। अब तो समझ जाइए कि मुझको ताला तोड़ना भी आता है और

दरवाजे की ओर बढ़ते बढ़ते वह अचानक से उसकी ओर घूम गई। और हाँ, सुबह दादाजी और दादी माँ आ रहे हैं यहाँ, उनको सुनाने के लिए कोई कहानी तैयार रखिएगा। अरुण के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। तुम्हारे दादाजी और दादी माँ, उन लोगों से क्या कह दिया तुमने? उस पीड़ा में भी अपने पिता की हड़बड़ाहट देखकर अनुभा हंस पड़ी। कुछ खास नहीं, बस जो सच है वही कहा है। और यह तो आप भी जानते हैं कि माता पिता अवश्य वो आपके हैं, परंतु आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो अपनी बहू यानी मेरी माँ से करते हैं। पिता की स्तब्ध करती शक्ल देखकर वह बोल उठी, आपको शायद गलतफहमी हो गई थी कि नाना जी और नानी माँ के ना रहने से माँ एकदम अकेली और असहाय हैं। उनके साथ हम सब हैं जो उनकी तरफ उठने वाली हर उंगली को तोड़ना भी जानते हैं और आपकी सच्चाई को खोलना भी। वह दृढ़ कदमों से बाहर निकल गई, पर अरुण की उलझने मानो उसको न जाने की अंधेरी कंदरा में ले जा रही थी।

ज्वालामुखी। अभी आप सुन रहे थे निवेदिता श्रीवास्तव की लिखी गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

आप सुन रहे थे विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 101.9 MHz पर। यह है FM रेडियो लेक्सिटी। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू युवाणी। मैं हूं वैदेही और मेरे साथ है मानस। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर बहुत सारे टॉपिक्स। युवा और औद्योगिकरण के अंतर्गत बात करेंगे लाइमस्टोन सेक्टर की। शौर्य गाथा में सुनेंगे वीर गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ की अदम्य साहस और वीरता की कहानी।
1: मनोरंजन जगत में जुड़ेंगे, ताजा खबरों में होगी बॉलीवुड और ओटीटी की नई रिलीज की चर्चा। साथ ही अभिनेत्री काजल अग्रवाल के फिल्म सफर पर भी डालेंगे एक नज़र। साथ ही आज 19 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के महत्व को भी समझेंगे।
0: इसके अलावा जानेंगे प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, बहुमुखी अभिनेता आशीष विद्यार्थी और प्रख्यात फिल्मकार जलांध्या के जीवन और योगदान के बारे में। कार्यक्रम में होंगे आज का इतिहास, खेल जगत की ताज़ा खबरें और शेयर बाजार का हाल भी।
1: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आपका इंतजार कर रही है ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर एक शानदार प्रस्तुति।

0: जब भी दुनिया में युद्ध और संघर्ष की बात होती है तो हमारी आंखों के सामने सीमाओं पर लड़ते सैनिकों और हथियारों की तस्वीर उभरती है। लेकिन इन संघर्षों के बीच कुछ ऐसी दर्द भरी कहानियां भी होती हैं जिनकी आवाज अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती।
1: युद्ध और संघर्ष केवल सीमाओं को नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को भी प्रभावित करता है। इन परिस्थितियों में होने वाले जो यौन हिंसा मानवता पर एक ऐसा कलंक है जो पीड़ितों के जीवन पर गहरा घाव छोड़ जाते हैं। आज का यह दिन है उसी के नाम, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस।
0: हर वर्ष आज ही के दिन 19 जून को यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। यह तारीख 19 जून 2008 को पारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1820 को मान्यता देती है, जिसमें युद्ध और संघर्ष की रणनीति के रूप में यौन हिंसा के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और हिंसक परिस्थितियों के दौरान होने वाली यौन हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों के प्रति सम्मान और समर्थन व्यक्त करना तथा इस गंभीर अपराध के विरुद्ध वैश्विक स्तर पर आवाज उठाना है।
1: यौन हिंसा केवल किसी व्यक्ति के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसके मन, आत्मसम्मान और पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। संघर्ष की परिस्थितियों में यह हिंसा जो अक्सर भय फैलाने वाले, समुदाय को तोड़ने वाले और मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले के काम करती है।
0: यह दिवस हमें याद दिलाता है कि पीड़ितों को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता होती है। साथ ही यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाएं और मानव गरिमा तथा समानता के मूल्यों को मजबूत करें।
1: इस वर्ष की थीम की बात करें तो 2026 की थीम है ब्रेकिंग द साइकिल, हीलिंग द स्कार्स, एड्रेसिंग द इंटरनेशनल इफेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि हिंसा के चक्र को तोड़ना और घावों को भरना।
0: यह थीम हमें याद दिलाती है कि संघर्ष के दौरान होने वाली यौन हिंसा का दर्द केवल पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है।
1: तो आइए इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम हिंसा के हर रूप का विरोध करेंगे, पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे और एक ऐसे समाज का निर्माण में योगदान देंगे जहां हर व्यक्ति सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता के साथ जीवन जी सके।

0: किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी यूथ होती है और उसकी प्रगति का आधार इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब युवाओं की ऊर्जा, इनोवेशन और स्किल्स उद्योगों से जुड़ती है तो विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती है। आज हम बात करेंगे यूथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में लाइमस्टोन सेक्टर की।
1: लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका यूज सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसी भी देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी भी देश का जो लाइमस्टोन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: भारत में लाइमस्टोन सेक्टर रोजगार और आर्थिक विकास का एक बड़ा स्रोत है। इस क्षेत्र में माइनिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग जैसी अनेक गतिविधियां शामिल है जो युवाओं के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकती हैं।
1: आज के युवा इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके माइनिंग ऑपरेशंस को अधिक एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना रहे हैं। साथ ही युवा एंटरप्रेन्योर्स नए आइडियाज और इनोवेशंस के माध्यम से इस सेक्टर को नई दिशा भी दे रहे हैं।
0: हालांकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी उतना ही आवश्यक है, इसीलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करें।
1: जी हां, माइनिंग एक्टिविटीज का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आज आवश्यक है कि रिस्पॉन्सिबल माइनिंग और सस्टेनेबल रिसोर्सेज प्रैक्टिसेस को अपनाने का। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, भूमि पुनर्वास तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे जो प्रयास है वो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच एक संतुलित स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति में निहित है। यदि युवा अपनी प्रतिभा, कौशल, इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जोड़ें तो वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। लाइमस्टोन सेक्टर इसी दिशा में अवसरों का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है।
1: तो चलिए हम सभी संकल्प लें कि औद्योगिक विकास, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए एक आत्मनिर्भर, विकसित और सतत भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

0: वीरता केवल युद्धभूमि में ही नहीं दिखाई जाती, बल्कि वह हर उस क्षण में प्रकट होती है जब कोई व्यक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हो जाए। ऐसी ही अद्वितीय वीरता का उदाहरण है विष्णु श्रेष्ठ, जिनकी बहादुरी आज भी हमारे जो साहस और मानवता की मिसाल मानी जाती है।
1: जी हाँ, विष्णु श्रेष्ठ भारतीय सेना की प्रसिद्ध घोरकार रेजिमेंट के एक बहादुर सैनिक थे। सेना में वर्षों तक सेवा देने के बाद वे सेवानिवृत्त हो चुके थे। वर्ष 2010 में वे अपने घर लौट रहे थे। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है।
0: 2 सितंबर 2010 की रात वे मौर्य एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन पश्चिम बंगाल के एक जंगल क्षेत्र से गुजर रही थी और अचानक लगभग 30 से 40 हथियारबंद डकैतों ने ट्रेन के डिब्बे पर हमला कर दिया। डकैत यात्रियों को धमका कर उनके पैसे, गहने और अन्य कीमती जो सामान था वो लूटने लगे। पूरे डिब्बे में भय और अफरा तफरी का माहौल बन चुका था।
1: इसी दौरान डकैतों की नजर एक युवा लड़की पर पड़ी। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार करने और उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। भयभीत यात्री कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। हर कोई अपनी जान बचा

0: आने में लगा था।
1: लेकिन विष्णु श्रेष्ठ यह दृश्य देख नहीं सके। उनके भीतर का जो सैनिक था वह जाग उठा। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे आज जो कुछ भी हो जाए वे उस लड़की की रक्षा करेंगे। उनके पास उनकी पारंपरिक खुरकी थी जो कि गोरखा सैनिकों की खास पहचान मानी जाती है। अकेले होने के बावजूद उन्होंने साहस के साथ डकैतों का सामना किया। उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए डकैतों पर धावा बोल दिया।
0: अचानक हुए इस प्रतिरोध से डकैत घबरा गए। संघर्ष के दौरान कई डकैत घायल हो गए और विष्णु श्रेष्ठ स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हुए। उनके शरीर पर कई चोटें आईं और काफी रक्त भी बहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी वीरता देखकर अन्य यात्रियों का भी साहस बढ़ा और डकैतों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और वो भाग खड़े हुए। इस प्रकार विष्णु श्रेष्ठ ने न केवल उस युवती की अस्मिता की रक्षा की बल्कि सैकड़ों यात्रियों को भी एक बड़ी त्रासदी से बचाया।
1: घटना के बाद जब लोगों ने उनके बहादुरी की प्रशंसा की तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, सामान तो लूटना जो है वो फिर से भी वापस किया जा सकता है, लेकिन किसी की इज्जत एक बार चली जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यह कथन उनके जो चरित्र है, संवेदनशीलता है और मानवता को है वो दर्शाता है।
0: जी हाँ, उनके अद्वितीय साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी पूरे देश में प्रेरणा का स्रोत बन गई। विष्णु श्रेष्ठ ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता। उसका साहस, कर्तव्य और देशभक्ति जीवन भर उसके साथ रहती है। उनके असाधारण व्यवहार के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र भी प्रदान किया गया।
1: विष्णु श्रेष्ठ की यह जो शौर्य गाथा है ये हमें यह संदेश देती है कि अन्याय के जो सामने मौन रहना भी एक प्रकार की कमजोरी है। यदि हमें साहस, आत्मविश्वास और मानवता की भावना हो तो हम किसी भी कठिनाई से अपनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।

0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज हम आज के इस खास सेगमेंट जिसमें हम मूवीज़ की बात करने वाले हैं उसमें आपको बताने वाले हैं कि आज के दिन आखिर कौन सी मूवीज़ रिलीज़ हुई है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कॉकटेल 2 की। जी हाँ, शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंधाना की जो यह फिल्म है 2012 की लोकप्रिय फिल्म कॉकटेल की सीक्वल है। रोमांस, दोस्ती और रिश्तों की उलझनों पर आधारित यह फिल्म यूथ के बीच चर्चा में है और कभी हमने देखा है कि जो सीक्वल 1 होता है उसके जो पार्ट 2 जब आने वाला होता है तो काफ़ी एक्साइटमेंट होता है, तो वही एक्साइटमेंट हमें यूथ में इस साल देखने को मिला है इस मूवी कॉकटेल 2 के लिए। और साथ ही हम बात करते हैं अगली रिलीज हुई फिल्म बालन द बॉय की, और इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह फिल्म एक किशोर लड़के बालन की कहानी है जो अपनी लापता माँ की तलाश में निकलता है। अपनी इस यात्रा के दौरान उसे अपने अतीत के कई ऐसे सच पता चलते हैं जो उसके जीवन को बदल देते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर और इमोशनल ड्रामा है जिसे दर्शकों और समीक्षकों के शुरुआती सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ जो है वो मिल रही है ट्रेलर देख देख कर, और अब देखते हैं कि आखिर उनका रिस्पॉन्स इस मूवी पर कैसा आता है।
1: अब बात करते हैं द वॉइस ऑफ हिंद रिजर्व की। तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित भावात्मक और मर्मिक फिल्म है। फिल्म 5 वर्षीय फिलिस्तानी बच्ची हिंद रजब की कहानी को पर्दे पर लाती है जो कि गाजा संघर्ष के दौरान भयावह परिस्थितियों में फंस गई थी। प्रसिद्ध ट्यूशनाई निर्देशक काउथर बेन हानिया द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराहना मिली है और यह ऑस्कर नामांकन की दौड़ में भी शामिल रही है।
0: जी हाँ, तो ये तो बात हुई आपसे थिएटर्स में जो मूवीज़ रिलीज़ हुई है उनकी, और अब आपको बता देते हैं कि आखिर OTT पे आज कौन सी मूवीज़ जो है वो रिलीज़ हुई है। तो आलिया बासु गायब है, ये एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है जो रिलीज़ हुआ है। साथ ही दृश्यम 3 भी आज ही के दिन रिलीज़ हुआ है।
1: ठुकरा के मेरा प्यार का सीजन 2 और शुगर का भी सीजन 2 आज ही रिलीज़ हुआ है।
0: साथ ही साथ ओसिस और सेव द टाइगर सीजन 3।
1: हस्बैंड्स इन एक्शन वॉइसमेल ऑफ इजाबेले भी आज ही रिलीज़ हुआ है।
0: जी हाँ, तो चलिए अब देर किस बात की, जाइए और इन्जॉय कीजिए इन सभी मूवीज़ को, ड्रामाज़ को, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ सारे ड्रामाज और मूवीज़ हैं। और चलिए इसी के साथ अब आपको बताते हैं अभिनेत्री काजल अग्रवाल के बारे में। सपनों की उड़ान जब मेहनत के पंखों से मिलती है तब जन्म लेती है सफलता की एक नई कहानी। आज की कहानी है खूबसूरती, प्रतिभा और सफलता का पर्याय बन चुकी अभिनेत्री काजल अग्रवाल की।
1: 19 जून 1985 को मुंबई में जन्मी काजल अग्रवाल, जिन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा एंड बॉलीवुड दोनों में अपनी शानदार पहचान बनाई है। उनको अपने बचपन से ही अभिनय और फैशन की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी।
0: जी हाँ, 2004 में काजल ने हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उसकी असली जो सफलता है वो साउथ इंडियन फिल्म से आई।
1: 2007 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म चंदा मामा में उन्हें असली पहचान दिलाई, लेकिन 2009 की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म मगधीरा ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्हें का जो अभिनय और था वो दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा। इसके बाद काजल ने एक से बढ़कर एक कई सारी बेहतर फिल्म्स दी और कई काम किया। उनकी जो प्रमुख फिल्मों में डार्लिंग, वृंदानामा, मिस्टर परफेक्ट, बिजनेसमैन, नायक, थुपक की, जिला, मरसल और विवेकम शामिल है।
0: और इन फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया और काजल को साउथ सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल किया। बॉलीवुड में भी काजल ने अपनी अलग पहचान बनाई है। 2011 में रिलीज हुई अजय देवगन स्टारर फिल्म सिंघम में उन्होंने काव्या भोंसले का रोल किया जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया।
1: इसके अलावा स्पेशल 26 में अक्षय कुमार के साथ उनकी जो जोड़ी थी वो काफ़ी सराहना मिली। काजल अग्रवाल केवल एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस ही नहीं है बल्कि वे एक बड़ी ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। उनकी जो सिंप्लिसिटी है, पोलाइटनेस है और प्रोफेशनलिज्म है वो इस इंडस्ट्री में उन्हें खास बनाता है।
0: काजल अग्रवाल की जर्नी हमें सिखाती है कि सक्सेस केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से हासिल होती है। यही कारण है कि आज वे लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।

साहित्य की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपनी कलम से सिर्फ कहानियां नहीं लिखते, बल्कि समाज, इतिहास और इंसानी सोच को एक नया

0: नज़रिया देते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही मशहूर लेखक सलमान रुश्दी की, जिनका आज बर्थडे भी है।
1: सलमान रुश्दी एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री, कल्चर और राजनीति को लिटरेचर के वर्ल्ड में एक नया मंच दिया है। इनकी रचनाएं जितनी प्रशंसित हुई है उतनी ही कई बार विवादों में भी रही है।
0: जी हाँ, सलमान रुश्दी का जन्म आज ही के दिन 19 जून 1947 को मुंबई के एक कश्मीरी परिवार में हुआ था। पिता वकील थे और माता शिक्षिका, इसीलिए बचपन से ही पढ़ाई से जुड़े रहे। अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से प्राप्त की और अपनी हायर स्टडीज के लिए यूनाइटेड किंगडम गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इतिहास की पढ़ाई की।
1: रुश्दी को मॉडर्न लिटरेचर के सबसे चर्चित और प्रभावशाली लेखकों में से भी गिना जाता है। इनके लेखन में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कल्चर और मैजिकल रियलिज्म के साथ में कई सामाजिक मुद्दों का जो मिश्रण है वो देखने को मिलता है। ग्रीमस इनका पहला उपन्यास रहा जो कि साल 1975 में प्रकाशित हुआ।
0: लेकिन उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलैरिटी मिली उनके दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन से। यह रुश्दी की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, जिसकी कहानी भारत की आज़ादी और उसके बाद के दौर पर आधारित है। इसमें भारत के पॉलिटिक्स और सामाजिक बदलावों का मेल भी बताया गया है।
1: विवाद भरे उपन्यास की बात करें तो द सैटेनिक वर्सेस की है, जो कि वर्ष 1988 को प्रकाशित हुआ था और इतना विवाद में रहा था कि कई देशों में इसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ। आयतुल्लाह खमेनी ने तो फतवा तक जारी कर दिया था, जिसके बाद कई वर्षों तक इन्हें सुरक्षा के बीच रहना पड़ा।
0: अगस्त 2022 में अमेरिका में चाउटाकुआ इंस्टीट्यूशन में एक कार्यक्रम के दौरान सलमान पर हमला भी हुआ, जिसमें गंभीर चोटें भी आई। इसके बाद उन्होंने अपने अनुभव पर आधारित नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर लिखा।
1: रुश्दी को कई बड़े जो साहित्यिक सम्मान हैं वो भी मिले। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए उन्हें 1981 में बुकर प्राइज मिला, गोल्डन पेन अवार्ड मिला, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मिला। साहित्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में योगदान देने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए।
0: कहते हैं कि विज्ञान की असली पहचान सिर्फ खोज से नहीं होती, बल्कि उस खोज से बदलने वाली जिंदगियों से होती है। साहित्यकार के बाद अब आगे बात कर रहे हैं हम एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट की, जिन्होंने प्रतिभा और मेहनत से भारत को IVF के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की।
1: इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम IVF के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग करके दुनिया के दूसरे और भारत के पहले बच्चे कनुप्रिया अग्रवाल दुर्गा को जन्म दिया। UK में जो IVF से जन्मी पहली बच्ची थी, उसके जन्म से ठीक 70 दिन बाद भारत में IVF से विश्व के दूसरे बच्चे का जन्म हुआ।
0: डॉक्टर मुखोपाध्याय की को जो है कई चुनौतियों और उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस समय भारत के पास मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स नहीं थे। उन्होंने सीमित संसाधनों में अपनी रिसर्च पूरी की।
1: उनके जो रिजल्ट से उस पर कई बार ऑफिसर्स को डाउट रहता था। इसके चलते एक सरकारी समिति ने तो उनके दावे को स्वीकार तक नहीं किया और ऐसे ही कारणों के चलते उन्हें अपने शोध को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं मिली। बार बार प्रशासनिक और पेशेवर बाधाओं का भी सामना करना पड़ा।
0: लगातार उपेक्षा, आलोचना और मेंटल स्ट्रेस के कारण डॉक्टर मुखोपाध्याय काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए और 1981 में आज ही के दिन उन्होंने 50 ईयर्स की एज में आत्महत्या कर ली और उनकी मृत्यु भारतीय वैज्ञानिक इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है।
1: मृत्यु के वर्षों बाद वैज्ञानिकों के समुदाय ने उनके जो शोध था उसका रिवॉल्यूशन किया और तब TC आनंद कुमार और दूसरे साइंटिस्ट ने स्वीकार किया कि डॉक्टर सुभाष का जो कार्य था वो वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सही था और अब आज उन्हें भारत में IVF तकनीक का जनक माना जाता है
0: और अब उनका नाम भारतीय चिकित्सा में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी उपलब्धि ने भारत में बांझपन के उपचार के लिए नए द्वार खोले।
1: उनका जीवन इसी बात का उदाहरण है कि कई बार व्यक्ति को अपने किसी महान कार्य के लिए अपने समय पर पहचान नहीं मिलती, लेकिन इतिहास उनके योगदान को आज नहीं तो कल अवश्य स्वीकार कर उन्हें सम्मान जरूर देता है।

0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं तेलुगु सिनेमा के महान निर्देशक, लेखक और नाटककार जंध्याला सुब्रह्मण्य शास्त्री की ओर, जिन्हें दुनिया हास्य ब्रह्मा के नाम से जानती है, क्योंकि इन्होंने फैमिली कॉमेडी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
1: कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने कई सफल नाटक लिखे और मंचित भी किए। 1976 में जंध्याला ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया। शुरुआत में जो संवाद लेखक और पटकथा लेखक के रूप में उन्होंने काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे।
0: उनकी राइटिंग स्किल्स इजी, सिंपल और नेचुरल थी, जो लोगों के दिलों से जुड़ जाती थी। इसके चलते उनके कई संवाद काफी पॉपुलर भी रहे,
1: जैसे कि शंकर भरणम, सागर संगम, सप्तपड़ी, स्वाति किरणम। जंध्याला ने लगभग 40 से भी ज्यादा फिल्मों में जो है अपना निर्देशन किया और 300 से भी ज्यादा फिल्मों में उनका जो लेखन का कार्य किया।
0: इनकी फिल्मों में कॉमेडी के साथ फैमिली रिलेशंस और सामाजिक मुद्दों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है।
1: आनंदा भैरवी, श्रीवई, प्रेमलखा, चंटाबाई, पद्मावती, संध्या रागम, ये सभी इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फिल्मों में से रही है।
0: इन्होंने कई नए कलाकारों को भी करियर की दिशा दी है, जैसे ब्रह्मानंदम, राजेंद्र प्रसाद, नरेश और कोटा श्रीनिवास राव।
1: अपने इतने उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 3 बार नंदी पुरस्कार भी मिला है, एज अ बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी राइटर और बेस्ट डायलॉग राइटर के रूप में। साथ ही एज अ बेस्ट डायरेक्टर के रूप में उन्हें तेलुगु फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुआ है।
0: बात करते हैं अब इंडियन सिनेमा के जाने माने अभिनेता, मोटिवेशनल स्पीकर, कहानीकार और यूट्यूबर आशीष विद्यार्थी की, जो

0: आज 19 जून को अपना बर्थडे मना रहे हैं।
1: यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुके हैं और इन्हें विशेष रूप से खलनायक और चरित्र भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है।
0: आशीष बचपन से ही अभिनय में रुचि रखते थे। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत थिएटर से की और बाद में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़कर एक्टिंग में ट्रेनिंग ली।
1: और अगर 1990 की बात करें तो उस दशक में उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और शुरुआत चर्चित फिल्मों में ध्रुवकाल, 1942 लव स्टोरी, कहो ना प्यार है, इस रात की सुबह नहीं जैसी फिल्में रही।
0: इन्होंने अपने करियर में 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हर तरह का किरदार निभाने के बाद बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी एक्टर में शामिल हो गए।
1: आशीष को 1995 में आई फिल्म ध्रुवकाल के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हेल्पिंग एक्टर का जो अवार्ड भी मिला और उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक इसे माना जाता है।
0: उनकी दमदार आवाज़, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सशक्त अभिनय ने उन्हें ऑडियंस के बीच अलग पहचान दिलाई। 1990 और 2000 के दशक में वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक में से एक बन गए।
1: फिल्मों के अलावा आशीष मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वे लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और पॉजिटिव थिंकिंग पर बात करते हैं।
0: उनका YouTube पर खुद का चैनल भी है जिस पर वे फूड, ट्रैवलिंग और लाइफ एक्सपीरियंसेस पर व्लॉग बनाते हैं।

0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए खेल जगत की अपडेट्स हम आपको दे देते हैं। क्रिकेट से शुरुआत करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच चल रही वनडे श्रृंखला में तेज गेंदबाज हर्षित राणा की भारतीय टीम में वापसी हुई है। आगामी मुकाबले के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है।
1: और आज रात के मुकाबले की बात करें तो 11 बजे से आयरलैंड वुमेन और न्यूजीलैंड के वुमेन के बीच में खेला जाने वाला है। महिला क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जारी है, जो कि आज न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच में महत्वपूर्ण मुकाबला ये खेला जाने वाला है।
0: जी हाँ, साथ ही साथ फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो इस मुकाबलों का जो रोमांच है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर आज के स्कोरबोर्ड की हम बात करें तो पहला मुकाबला ग्रुप बी का स्विट्जरलैंड बनाम बोस्निया रहा, जिसमें स्विट्जरलैंड ने 4 गोल कर जीत हासिल की।
1: अगला मुकाबले की बात करें तो कनाडा और कतर के बीच में रहा, जिसमें कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया।
0: साथ ही साथ हॉकी की बात करें तो प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हराया। इसमें भारतीय मिडफील्डर हार्दिक सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

0: 19 जून का दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलावों का गवाह रहा है। इसी दिन दुनिया ने आजादी, सम्मान और सामाजिक बदलाव से जुड़ी कई अहम घटनाओं को देखा, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है।
1: 1865 की बात करें तो जुनिथ की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका के टेक्सास में गुलाम बनाए गए लोगों को उनकी आजादी की आधिकारिक जानकारी दी गई थी।
0: 19 जून 1910 की अगर हम बात करें तो फादर्स डे का पहला आधिकारिक आयोजन जो है आज के दिन 1910 को स्पोकेन में हुआ था। इसे पिता और उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
1: और 1997 की बात करें तो माइकल जॉर्डन ने अपने करियर की शुरुआती दौर के एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी और महानतम खिलाड़ियों में से एक बने।
0: जी हाँ, ये तो बात हुई आज आपसे इतिहास की, और इसी के साथ अब हम आज के इस युवाणी कार्यक्रम में आपसे लेंगे विदा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त वैदेही और मेरे साथ हैं
1: मानस।
0: नमस्कार।

युवा साथियों के लिए अभी युवाणी कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था। 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है FM रेडियो लेक्सिटी। शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से अब समाचार लिए जाएंगे।

अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं।

में उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्धनों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुँचाने के कार्यों को पूरा किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। भारत की विदेश नीति ने देश को विश्व बंधु के रूप में स्थापित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुशल स्टेशन प्रबंधन के लिए स्टेशन मास्टरों को सशक्त बनाने संबंधी व्यापक उपायों की समीक्षा की है। रेल मंत्री ने कल वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में स्टेशन मास्टरों के प्रतिदिन के कार्य और उनके प्रबंधन को सशक्त बनाने पर व्यापक चर्चा की गई। इसमें मल्टी ट्रैक और उच्च घनत्व के खंडों में अतिरिक्त स्टेशन मास्टरों के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। अश्मिता चालिहा मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। सेमीफाइनल में कल अश्मिता का सामना कोरिया की पार्क गायून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9 MHz पर आप हैं FM रेडियो लेक्सिटी के साथ। आइए सुने फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी के गाए फिल्म निशान के इस गीत से। गीत को लिखा है जावेद अनवर ने, संगीत उषा खन्ना का।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनमोलमती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत रवि का था। आइए आप सुने मुकेश ककाया चंद्रमुखी फिल्म का ये गाना। गीत के बोल भरत व्यास के और धुन SN त्रिपाठी की।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में यह गाना था फिल्म आशिक से। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। यह गाना फिल्म घटना से है।

0: 101.9 MHz पर FM रेडियो लेक्सिटी से। अगला गीत इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

ये गाना था फिल्म चंदन का पलना से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था आर डी बर्मन ने और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म नई रोशनी से, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और धुन रवि की।

तेरे घर के सामने। इस फिल्म का यह गीत था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल थे हसरत जयपुरी के और संगीत सचिन देवी बर्मन का था। लीजिए अब सुनिए मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया साथी फिल्म का यह गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

फिल्म जंगल का गीत अब आपको सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में यह गाना था फिल्म प्रेम पुजारी से। नीरज ने इस गीत को लिखा था, संगीत सचिन देव बर्मन का था। ये गीत फिल्म पहाड़ों की मंजिल से, लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मोहम्मद रफी का गाया बेटी बेटे फिल्म का यह गीत। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। 101.9 MHz पर यह है FM रेडियो लेक्सिटी। अब विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
1: जान सकते हैं आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम जयमाला बस कुछ ही पलों में।

0: ये स्वर थे लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के। फिल्म का नाम था एक ही रास्ता। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना ये गीत। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर है कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: भारतीय सेना। अभी आप सुन रहे थे ये गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर था कैलाश खेर का।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है,

0: जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में आप सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का गाना। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलशन बाबरा का लिखा गीत था ये और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के थे फिल्म जंजीर के लिए।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर फिल्म अभिमान के लिए गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: ये स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार की थी फिल्म अभिमान के लिए।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जयमाला कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।

इस अंतराल के बाद आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। ये स्वर है आशा भोंसले और किशोर कुमार के, फिल्म का नाम शरीफ बदमाश, रचना आनंद बख्शी की, धुन राहुल देव बर्मन की।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जयमाला कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, किशोर कुमार की आवाज और फिल्म का नाम ब्लैकमेल।

0: लीजिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए सईद राही का कलाम, गायक स्वर राजकुमार रिजवी का।
1: अच्छी

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंद्रधनुष के तहत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए झलकी पुरातत्व के तत्व। लेखिका है नाज़नीन और निर्देशन है चंद्र प्रभा भटनागर का।
1: क्या है आप
2: दुकान लग गई?
1: हाँ दुकान तो लगा दी मैंने। तू चाय लाया?
2: हाँ उस्ताद।
1: अरे तो देना।
2: बड़ी गर्म है। बड़ी फर्स्ट क्लास चाय बनवा कर लाया हूँ।
3: अबे ये क्या हो रहा है? हाँ ये क्या हो रहा है? क्या सवाल?
4: अरे मुंशी जी आइए आइए।
3: क्या? अबे ये क्या है साहब?
2: ये कुछ नहीं बस ऐसे ही
3: ऐसे।

0: जी।
1: अबे आधा फुटपाथ घेर रखा है और कहता कुछ नहीं। अब ये कैसा खटरा फैला रखा ये क्या?
0: दरअसल दरअसल हम लोग पुराना माल बेच रहे हैं
2: जी।
1: पुराना माल समझा बेटे?
2: बात ये है कि ये तो बात को हमेशा घुमा फिरा कर बोलता है। वैसे हम लोग डेकोरेशन पीसेस बेच रहे हैं
1: जी। डेकोरेशन? अबे ये क्या होता है?
0: डेकोरेशन पीसेस यानी सजावट के टुकड़े।
2: अबे तुम कुछ देर अपनी चोंच बंद रखो।
0: ठीक है
2: मुंशी जी। ये चीजें ड्राइंग रूम वगैरह में सजाने के काम आते हैं।
1: अच्छा तो बेटा तू क्या मुझे नया समझता है?
2: जी नहीं।
1: अबे 24 साल से पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ 24 साल से। अरे लोग भूतान सीन सीनरी कैलेंडर घर में सजाते या ये कबाड़ है?
2: कबाड़? क्या कह रहे हो मुंशी जी? अरे भाई ये पुराने जमाने की अनमोल चीजें हैं।
1: चल चल अच्छा अनमोल ही सही है मगर कौन रखेगा अपने वो क्या कहते हैं ड्राइंग रूम में?
2: अब लीजिए। अरे अमीर लोग और कौन है? अरे दूसरों पर रौब मारने के लिए ये लोग इन्हें अपने घर में रखते हैं भाई,
0: ताकि सोसाइटी की नाक ऊंची रहे।
2: अब आप इस घड़े को देखिए, देख रहे हैं ना?
1: पुराना है
2: जी। हाँ देखने में मामूली है मगर हजारों साल पुराना है।
1: बे क्या का हजारों साल?
2: जी हाँ, मोहन जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकला था।
1: ये क्या?
0: और इस संदूक को पहचानते हैं? इससे वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपने साथ लाया था।
1: अच्छा अच्छा सुन
2: जी,
1: बहुत बुकराजी छाड़ चुके हैं, आप सीधे हो जाओ। सीधे हो जाओ।
2: सीधे
1: ठीक कर दूंगा।
2: हाँ
1: ये डंडा देखा है? अबे ये डंडा देखा है?
2: जी हाँ।
1: ये चंगेज खां का है, चंगेज खां का, जिससे उसने बड़े बड़ों को सीधा कर दिया है। लेकिन अब मैं तुम दोनों को सीधा कर दूंगा। हाँ बता देता हूँ
2: मुंशी जी। हाँ ये वाकई चंगेज खां का डंडा है।
0: ऐसा कीजिए मुंशी जी,
1: क्या
0: ये डंडा हम लोगों को दे दीजिए।
1: क्या?
2: जी हाँ, हम इसे अच्छे दामों में बेच देंगे।
1: मैं कहता हूँ
2: जी
1: उठाओ, ये उठाओ, उबक तुबक उठाओ यहाँ से।
0: मुंशी जी
1: अबे सरकार ने फुटपाथ लोगों को चलने के लिए बनाया है, न कि एक कबाड़ फैलाने के लिए। अबे बड़ा दुकान, बड़ा दुकान, मैं कहता हूँ बढ़ाओ। चलो कम हो यहाँ, कम हो जाओ, कम हो जाओ।
0: मैं कहता हूँ देखिए नहीं, हमको हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे।
1: अबे खाल में रहे, खाल में बहुत चबड़ चबड़ न कर। नेतागिरी छाड़ी ना तो एक ही धंधे में बेजा खोपड़ी से निकाल कर वो पार्क में वहाँ भेज दूंगा। समझे?
2: जाने दीजिए दारोगा जी, बच्चा है अभी।
1: वाह बेटा मक्खन लगा रहा है, दारोगा कहकर मेरा ओहदा बढ़ा रहा। अबे तू क्या समझता है? अबे क्या समझता है? तेरे इतना कहने में मैं पसी जाऊंगा।
2: अरे दारोगा, दारोगा क्या, आप तो हमारे लिए थानेदार से भी बढ़कर हैं। क्यों चले?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हमारी सरकार हैं,
2: माई बाप हैं।
1: बात बात बात बकवास बंद, ज्यादा जवानी मक्खनबाजी नहीं चाहिए। कुछ वो
2: ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो
3: जिसे को समझा देना।
2: हाँ बिल्कुल,
3: मुंह से ढंग से जरा बात किया करें।
2: हाँ जी हाँ बिल्कुल। और क्या? अरे मैं कहता हूँ तू आदमी है या शामियाने का बाप है? अबे क्या जरूरत थी उसे?
0: क्या बताए क्या बताए, उसने कानून बघारा तो मुझे गुस्सा आ गया।
2: अबे वो पुलिस वाला है, वो तो कानून की बात करेगा ही।
0: भूल हो गई, अब से ऐसी पंगेबाजी से दूर।
2: शाबाश, तरक्की करोगे आगे चलकर बेटा, अगर मेरी बात मानोगे।
0: ये समस्या तो हल हो
2: गई।
0: अब समस्या है ग्राहकों की भीड़ जुटाने की।
2: अरे चेले वो भी हल हो जाएगी, बस थोड़ी बतौलेबाजी करनी पड़ेगी।
0: बतौलेबाजी?
2: अबे हाँ, भीड़ इकट्ठा करने के लिए पहले कुछ अलूल जलूल किससे कहानियां सुनाना पड़ता है ना, क्या समझे?
0: समझ गया समझ गया। और जब भीड़ जमा हो जाए तो असली धंधे पर आ जाओ।
2: अबे चेले हो जा तैयार है तो मेहरबान अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दस मलुका कह गए सत्य नाराज। अरे सब करे जिसको काला कई पहर वो जिए, और जुल्फ नागिन का डसा मांग कर पानी न पिए।

0: तो जाने वाले देख ले मुंह अपना फेर कर। अरे राह में हम भी खड़े हैं रास्ते को
1: फेर कर।
0: हाँ तो मेहरबान साहिबान कद्रदान लगा कर सुनिए ध्यान। कहते हैं कि किसी जमाने में थे एक हकीम लुकमान जिनकी थी एक बोलती हुई दवाओं की दुकान। लेकिन मेहरबान ना तो अब रहे हकीम लुकमान और न रही उनकी वो बोलती हुई दुकान। ए लड़के बैठ जा। मगर मेहरबान कदरदान आपके इस हसीन शहर में खुल गई अनमोल चीजों की एक बेहतरीन दुकान।
2: गुरु ये क्या कह रहे हो? इस कबाड़ को अनमोल बता रहे हो?
3: अभी चीले तू है अभी बच्चा, अकल का है कच्चा। तू अपनी चोंच बंद रख। अबे जिसे तू कबाड़ कह रहा है वो है बहुत कीमती और नायाब।
4: अबे चराग लेकर ढूंढने से भी नहीं होगा कामयाब।
5: अरे कुछ बताओ तो सही, आखिर ये है क्या?
0: इस पर गौर फरमाइए। देखने में है ये मिट्टी का ढेला, मगर इसमें छिपी है इतिहास की तीन जंगें। जी हाँ, ये पानीपत के मैदान की मिट्टी है मेहरबान। इसकी सुर्ख रंगत इस बात का सबूत है कि इस पर न जाने कितने सुरमाओं ने अपना लहू बहाया।
5: ऐसी मिट्टी लखनऊ में हर जगह।
6: और क्या किन्नी परम की जो परम के पास जाओ मिट्टी को बोलो, अरे पीक से लाल ऐसी मिट्टी मिल जाएगी।
0: और साहिबान साहिबान जरा इस पैजामे पे निगाह डालिए।
6: पैजामा?
0: ये वही पैजामा है जिसे महामूर्ख शेख चिल्ली
7: पहनते। पैजामा छोड़ो, इस प्याले का इतिहास तो बताओ।
3: अबे अभी बताता हूँ चिले।
0: हाँ तो साहिबान ये देखिए, ये प्याला है, ये देख रहे हैं ना आप? है तो मामूली मगर है खूनी।
6: खूनी?
0: जी हाँ, इसी प्याले में मशहूर फिलोसफर सुकरात को जहर दिया गया था।
8: नखास के खरीदे हुए गूदड़ और इतिहास का।
0: अरे सुनिए तो साहिबान, सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। मेहरबान कदरदान
9: तेरे सारे ग्राहक चले गए, पल्ले का 2 रुपए भी पुलिस वाला ले गया। अब क्या होगा उस्ताद?
0: घबरा मत चेले।
3: वो देख अभी अंदर थी एक उधर
9: हीरो की कद्र करने वाला जौहरी आ रहा है।
7: उस्ताद देखने में तो नवाब नजर आ रहा है।
3: अब बेटे अपना तजुर्बा कह रहा है कि ये जरूर कुछ ना कुछ कर रहा है।
7: कुछ भी हो उस्ताद इसे गिरा लो, बिल्कुल जाने न पाए।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
9: आइए आइए आइए हुजूर।
10: आधा मर्दे भाई क्या बेच रहे हो मियां?
3: किबला एक से एक नायाब चीजें हैं, ये देखिए।
10: माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में तो।
9: अरे हजूर इनके रूप रंग पर मत जाइए,
3: सबकी सब ऐतिहासिक यानी कि तारीखी हैसियत रखती
10: है। फरमाया तारीखी हैसियत?
9: जी हाँ जैसे कि हुजूर अब ये देखिए, ये पर्दा मुलाजा फरमाइए, मुलाजा फरमाइए। अपने वक्त की मशहूर तबायफ उमराव जान के उस कमरे का है जहाँ वो मुजरा किया करती थी।
10: हाय क्या पूछते हो हाले दिले जार है अदा, आवाजगी में हमने जमाने की सैर की।
9: क्या बात है,
10: बहुत खूब।
7: और बन्ना परवर, ये रही आमों की गुठलियाँ।
10: आमों की गुठलियाँ?
3: गुठलियाँ हुजूर,
10: क्या ये भी तारीखी हैसियत रखती है?
9: जी जी हुजूर, अरे इन्हें नहीं जानते आप? इन्हें चचा गालिब ने चूस चूस कर फेंका था।
10: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, भाई मिर्जा गालिब आमों को बड़े शौकीन थे।
7: और हुजूर इस चराग को देखिए,
10: लगता है ये अलाउद्दीन का।

0: चिराग है।
1: बजा फरमाया हुजूर, ये वही चिराग है।
0: अरे तो मियां जरा घिसकर जिनको बुलाइए तो।
2: हुजूर गुस्ताखी माफ हो, जिन तो ना आ सकेगा।
1: क्यों भाई क्यों? क्या है नवाब साहब कि जिन ने इस चिराग को छोड़कर 10 किलो वाट के बल्ब में बसेरा कर लिया है।
0: अच्छा अच्छा, वो क्या चीज है?
2: वो पानी भरने वाली मशक है।
0: माशाल्लाह भाई, इसको तारीख की किस अजीब हस्ती ने इस्तेमाल किया था?
1: लीजिए, अरे आप नहीं जानते हुजूर, ये मशक उस भिष्टी की है जिसने एक बार मुगल बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी। हुजूर
0: याद आया, हाँ। हुमायूं ने खुश होकर उसे एक दिन के लिए बादशाह भी तो बना दिया।
2: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और बादशाह बनते ही उसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए थे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मुझे तो ये मशक बहुत पसंद आई। इस नायाब शय को मैं अपने गरीब खाने की जीनत बनाऊंगा।
3: हुजूर हुजूर,
0: भाई क्या कीमत है इसकी?
1: अब आपसे मोल भाव क्या करना हुजूर, सिर्फ 50 रुपए इनायत फरमाइए।
0: अमा 50 रुपए? बस इतनी नायाब चीज की इतनी कम कीमत? ये लीजिए थैली संभाल।
1: शुक्रिया।
0: 50 से भी ज्यादा की रकम है।
1: शुक्रिया हुजूर शुक्रिया।
0: अच्छा भाई तो मैं चलता
1: हूँ,
0: खुदा हाफिज।
3: अबे देखा चेले, मैं न कहता था कि हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है।
2: सही कह रहे हो उस्ताद, पूरी थैली ही थमा गया।
1: काफी भारी है, माल भी बहुत होगा।
2: उस्ताद खोल कर तो देखो।
3: हाँ अभी खोलता हूँ।
1: ये लो। अरे ये क्या? चमड़े के टुकड़े
2: नहीं उस्ताद, मुझे तो लगता है ये चमड़े के सिक्के हैं।
3: चमड़े के सिक्के?
2: उसी भिष्टी के दौर के सिक्के।
3: अबे मर गए, यानी के धोखा
2: उस्ताद। धोखा क्यों गुरु, ड्राइंग रूम सजाने के लिए तारी

पुरातत्व के तत्व अभी आप सुन रहे थे नाजरीन की लिखी ये झलकी, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का था। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: दी
1: हाँ ये देख
0: कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: दीदी नौकरी लग गई
9: अरे वाह बधाई हो तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग
8: हाँ दी नया मोबाइल
9: अरे रुको शहजादे सैलरी से पहले खर्चे
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो
8: पर दीप
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम
8: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा
9: अच्छा
10: RBI कहता है
11: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
12: गीतकार समीर है संगीतकार हिमेश रेशमिया।

0: हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में अभी आपने समीर का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। फिल्म का नाम था तेरे नाम।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुधाकर शर्मा का लिखा गीत अभी आपने हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुना। स्वर कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों के थे। फिल्म का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथी फिल्म का नाम जब प्यार किसी से होता है। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है जतिन ललित ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अनुमलिक का संगीत है, जावेद अख्तर के बोल, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें फिल्म रिफ्यूजी के लिए।

सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सुना। जावेद अख्तर के बोल थे और अनु मलिक का संगीत। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21

0: 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर

0: इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
1: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
6: This is the country.
7: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींग

0: ये हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय रात्रि के ठीक 9 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपके लिए।

इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा गीत, स्वर जसपाल सिंह का, और फिल्म का नाम है श्याम तेरे कितने नाम।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ, फिल्म का नाम है आंधी। गीत रचना गुलजार साहब की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही गाया हुआ। फिल्म का नाम है महाचोर। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत राहुल देव बर्मन का है।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था लैला मजनू। और आइए कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को फिल्म चरस में। शब्दकार आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

इस युगलगान के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर, बस थोड़ी ही देर में।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था, तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारेलाल,
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था, तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक के कहा।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने जमा दिलों की धड़कनों पर राज किया, वो अभिनेता जिनके साथ लोग खूब फिरके।

दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम है गौरांग चक्रवर्ती। बंगाल के बारिसाल में उनका जन्म 16 जून 1952 को हुआ था। ये वही जगह है जहां मशहूर संगीतकार अनिल विश्वास भी पैदा हुए थे। बहरहाल, पिता बसंत चक्रवर्ती, माँ शांतिमयी चक्रवर्ती। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पर कॉलेज के दिनों में वो बगावती हो गए, नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। अचानक भाई की एक हादसे में मौत होने के बाद मिथुन वापस लौट आए। सन 1972 में मिथुन चक्रवर्ती ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। 1974 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एक्टिंग का डिप्लोमा हासिल किया। उन दिनों वो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पढ़ाते भी रहे। यहाँ से मिथुन मुंबई आ गए, पर काम आसानी से उन्हें नहीं मिला। गुजारा करने के लिए वो अभिनेत्री हेलेन की डांस टोली में डांसर बन गए थे। ये उनके संघर्ष के दिन थे। कभी फुटपाथ पर सोना पड़ता उन्हें, कभी टैक्सी में सोना पड़ता। यहाँ तक कि एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दे डाली थी, पर मिथुन नहीं माने, वे डटे रहे।

दोस्तों, ये वो दिन थे जब मशहूर निर्देशक मृणाल सेन अपनी फिल्म मृगया के लिए कलाकार तलाश रहे थे। मिथुन को चुन लिया गया। सन 1976 में मिथुन को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सब चकित रह गए। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड, पर इसके बावजूद काम में इजाफा नहीं हुआ। दो अनजाने फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, मेरा रक्षक जैसी फिल्में आईं और गईं, पर मिथुन हताश नहीं हुए। उन्हें पता था कि एक दौर उनका आएगा, वो दौर होगा जब दुनिया उनके पीछे भागेगी। कामयाबी का पहला स्वाद मिथुन ने तब चखा जब जाने माने कैमरामैन और निर्देशक रविकांत नागाइच ने उन्हें फिल्म सुरक्षा में कास्ट किया। बस फिर क्या था, गन मास्टर 69 लोगों के जहन पर छा गया। जिस मिथुन चक्रवर्ती को लोग नजरअंदाज करते थे, उसे पलट कर देखने लगे। सुरक्षा की कामयाबी को देखते हुए इसका सीक्वल तैयार किया गया, जिसका नाम था वारदात।

इस फिल्म के बाद कामयाबी के कुछ तमगे मिथुन चक्रवर्ती के दामन में आ चुके थे। मिथुन 80 के दशक के युवाओं के नायक बने, आम इंसान के नायक बने। बॉक्स ऑफिस पर आम जनता उनकी फिल्में देखने के लिए उमड़ती रही। सन 1979 में आई राष्ट्रीय पिक्चर्स की तराना, जिसके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बरसात के इस मौसम में, बरसात हो या न हो, आइए इस गाने के जरिए भीगते हैं बरसात में।

0: मिथुन की कामयाबी में उनकी फिल्मों के संगीत का भी हाथ रहा है। सन 1980 में आई फिल्म हम पांच बड़े मशहूर सितारों के अभिनय से सजी इस फिल्म में उन्होंने बाजी मारी। लोगों ने खूब पसंद किया ये गाना और ये फिल्म भी।
1: का जानू मैं सजनिया, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया।

दोस्तों 80 का दशक डिस्को क्रांति के लिए जाना जाता है। पश्चिम से डिस्को की एक आंधी आई और इसने पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लिया। भारत में इस क्रांति का परचम बतौर नायक मिथुन चक्रवर्ती ने लहराया और बतौर संगीतकार बप्पी लहरी ने।

दोस्तों डिस्को गीतों से सजी फिल्मों के अलावा मिथुन रोमांटिक फिल्में भी कर रहे थे और पारिवारिक फिल्में भी। उनकी सब फिल्मों की बातें करना यहाँ तो संभव नहीं, पर उनके करियर का एक बड़ा लैंडमार्क बनी सन 1985 में आई फिल्म प्यार झुकता नहीं। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सुनिए ये गाना।

0: सन 1990 में मिथुन चक्रवर्ती के करियर की एक और फिल्म आई अग्निपथ, मुकुल आनंद की अग्निपथ। इस फिल्म में उन्होंने कृष्ण अय्यर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: कृष्णन अय्यर यम ये के इतने सारे नाम,
2: तूने क्यों मुझे बचाया?
1: बस अपना फर्ज निभाया।
2: क्या तू कुछ भी कर जाता?
1: कर जाती।
2: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
1: अच्छा अच्छा, कर जाता।
2: मेरे लिए मर जाता?
1: हाँ मर जाता।
2: ओह माय गॉड, यू आर इन लव।
1: हाँ, यू आर इन लव।
0: दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती भले ही कमर्शियल सिनेमा करते रहे, लेकिन जब भी मौका आया उन्होंने सार्थक सिनेमा भी किया। सन 1992 में बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्म ताहा देर कोथा की इस फिल्म के लिए मिथुन को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1998 में मिथुन ने फिल्म स्वामी विवेकानंद में रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभाई और उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार। इन तमाम फिल्मों के साथ साथ मिथुन कमर्शियल सिनेमा का भी दामन थामे रहे। सन 1993 में आई फिल्म दलाल।

दोस्तों, तकरीबन 500 फिल्मों में काम करने वाले मिथुन चक्रवर्ती जनता के पसंदीदा अभिनेता रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में मिथुन हाउसफुल 2, कांची, खिलाड़ी 786 जैसी फिल्में की हैं मिथुन ने। वे बीच बीच में टेलीविजन पर भी नजर आते रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी एक आम आदमी के रजत पट पर आने और छा जाने की कहानी है।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर। शोध, आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का। अब कहते हैं नमस्कार।

0: तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दिन भर।
1: आज के फनकार।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं विक्को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: विकोटर मरे।

छायागीत के सुनने वालों को राजुल का नमस्कार। ये रात की चादर में छिपी आसमान से झरती हुई चांदनी का लहजा, ये रुक रुक कर चलती हवाओं के झोंकों की महक, चाहतों के नीड़ में कुछ बुने कुछ अधबुने से ख्वाब, और उनमें कुछ लरसते जज्बातों की मीठी सी चहक, कहती है वो दिल की जुबां जिस पर कुर्बान है ये सारा जहां।

साथ जिसके होने से वीराने भी गुलजार हो जाते हैं, दिल में महक उठते हैं कितने अरमा, और खुशबू आंखों में उतर आती है। बातों के सिलसिले में अक्सर वो एक नाम बार बार आता है और जिंदगी कितनी खूबसूरत नजर आती है।

एक वादा धड़कनों में सुनाई देता है, एक इल्तिजा बांधी है सांसों की डोर से। तुम्हारी खुशबू आती है हवाओं में, तुम्हारा नाम गूंजता है फिजाओं में।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

रात हर रोज सजाती है एक नया ख्वाब, और इन आँखों ने किया है सिर्फ उस रात का इंतज़ार, जिसके ख्वाबों में हो बस तेरा ख्याल, धीरे से बयां हो जाए वो शबनमी एहसास। आज तो वही मन्नतों की रात आई है, संग उन्हें कदमों की आहट लाई है।

मोहब्बत वो पाक जज्बा जिसके कदमों में झुक जाता है आसमां, यही है वो सबसे अजीम लफ्ज जिसमें सातों समंदर और ये पूरी दुनिया समा जाती है। अगर सिमट जाए तो एक नन्हा सा दिल काफी है जिसकी हर धड़कन पर लिखा हो तो सिर्फ मोहब्बत।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे विक्को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये था विविद भारती का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और

0: मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। आईएक्स पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हूज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rai Rangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including